मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के अश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 57 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। इस सभा के कार्यक्रमों के साथ मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। शुभ प्रभात।

0: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का शुभारंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में देशगान से।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं हरिओम शरण व साथियों के स्वर में ये गणपति स्तुति।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना अब यहीं पर संपन्न हुई। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, आधुनिक जीवन शैली। इस विषय पर आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय शर्मा का आलेख। वाचक है यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: मानव जीवन बड़ा अमूल्य है। संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने सोचने, समझने और हंसने का गुण दिया है। इसलिए उसकी जीवन शैली उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। जीवन शैली का अर्थ है जीवन जीने का तरीका या ढंग। व्यक्ति चाहे तो अपनी जीवन शैली से अपने जीवन को वरदान बना ले या चाहे तो उसे अभिशाप बना ले। आज जिस प्रकार भौतिक सुखों की ओर मानव अंधाधुंध दौड़ लगा रहा है, उससे वो साधन संपन्न तो बन रहा है, किंतु उसका स्वास्थ्य और हृदय कोश प्रभावित हो रहा है। भौतिकता हमें बिस्तर तो दे सकती है, लेकिन सुकून की नींद नहीं दे सकती। इस प्रकार की जीवन शैली हमारे मन एवं शरीर को सुदृढ़ करने की बजाय हमें मानसिक और शारीरिक रोगी बना सकती है। सही जीवन शैली हमारे मन को ऊर्जावान बनाती है और हमारे शरीर को शक्तिशाली। आज हम, विशेष रूप से हमारे युवा, पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। शारीरिक श्रम के स्थान पर भोग की संस्कृति के परिणाम स्वरूप शरीर को कूड़ादान बना दिया गया है, जिसका परिणाम मधुमेह, उक्त रक्तचाप, कैंसर जैसी बीमारियों के रूप में दिख रहा है। भारतीय संस्कृति श्रम और त्याग पर आधारित थी। उसको भूलकर हम आराम पसंद और स्वार्थी बन गए हैं। श्रम करते भी हैं तो केवल डॉक्टरों के कहने पर या सुंदर मसल्स बनाने के लिए। पर्याप्त नींद, स्वच्छता, नित्य क्रियाओं के पर्याप्त समय, शारीरिक श्रम, ध्यान, उपासना, संतुलित भोजन आदि को अपने जीवन से जैसे हमने अलग कर दिया है, रात दिन केवल भौतिक सुखों को संग्रह करने में लगे हुए हैं। कार्यों की अधिक

0: प्यार जैसे भावों में वृद्धि होती जा रही है। ये ठीक है कि तकनीकी विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं, परंतु मोबाइल इंटरनेट जैसे साधनों से संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। घर का प्रत्येक सदस्य अपनी निजी जिंदगी जीना चाहता है। हमारी जीवन शैली में तकनीक ने इतनी गहरी पैठ बना ली है कि अपनी संपूर्ण क्षमताओं का ज्ञान भी हम भूल गए हैं। सच्चाई तो ये है कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध व सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ही हम अपने जीवन का 80% प्राण लगा देते हैं और शेष 20% यों ही बर्बाद हो जाता है। यदि हमें मनुष्य जीवन को समझना है तो अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। जीवन शैली को हमें अपने लक्ष्य में बाधा नहीं बनाना है, वरन सहयोगी बनाना है। शरीर के साथ साथ मन का भी ध्यान रखना है, इसके लिए समय प्रबंधन सबसे बड़ी ज़रूरत है। तकनीक हमें सुख सुविधाएं देती है तो जीवन शैली हमें जीना सिखाती है, हमारी गलतियों, भूलों व आदतों से परिचित कराती है। और यदि शरीर और मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर इन सब सुखों और भोगों को हम भोगेंगे कैसे? इसलिए हमें अपनी जीवन शैली के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आधुनिक जीवन शैली, इस विषय पर डॉक्टर विजय शर्मा का आलेख, वाचक थे यतीन्द्र चतुर्वेदी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज इस कार्यक्रम में सामयिक चर्चा का विषय है जल संग्रहण की आधुनिक विधियां। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह।
1: जल का संरक्षण वर्तमान की महती आवश्यकता है। हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध कुल 1384 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी में 97% पानी खारा है, जो कि समुद्रों में है एवं हमारे लिए अनुपयोगी है, एवं कुल 2.6% पानी पीने योग्य उपयोगी है। इसमें भूगर्भीय जल 0.58%, ध्रुवीय बर्फ के रूप में 2.01%, नदियों एवं झीलों में 0.016% शामिल है। भारत में पीने योग्य पानी का 77% भाग सिंचाई में, 4.6% भाग घरेलू उपयोग में, 12% उद्योगों में एवं 11.4% अन्य विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त हो रहा है। दिनों दिन बढ़ रही जनसंख्या एवं गिरते वनाच्छादित क्षेत्र से जल उपलब्धता का संकट हम सभी के सामने है। ऐसी स्थिति में हम सभी का दायित्व है कि जल का अपव्यय न करें एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों। वर्षा जल का यदि हमने संरक्षण कर लिया तो एक ओर भूमि कटाव या मृदा अपरदन की समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी ओर गिरते भू जल स्तर को सुधारने में हमें सफलता मिलेगी। ग्रामों में पानी रोकने और संग्रहण के लिए जो संरचनाएं बनाई जाती हैं उन्हें रिच टू वैली यानी ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर कार्यान्वित करें। खेतों में भी जल संग्रहण किसान भाई कर सकते हैं। इसमें कुंडी का निर्माण, डबरी, डगआउट पॉन्ड का निर्माण और कुइया खेत तालाब योजना, इनका लाभ लेते हुए किसान भाई इन संरचनाओं का निर्माण अपने खेतों में कर सकते हैं। और खेत में ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जो कि खेत के ढलान वाले स्थान पर हो, वहां पर खेत तालाब कुंडी डबरी इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। इससे फसल को भी जल उपलब्धता सुनिश्चित होती है और साथ ही भूमि जल का संवर्धन भी होता है और जो हमारे ट्यूबवेल और कुएं जो सूख रहे हैं उनमें पानी का बहाव प्रारंभ होता है, पानी में अभिवृद्धि होती है। नदी नालों पर पानी रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण भी किया जाता है जिसमें नाला बंधान, बोरी बंधान, नाला बियर, मिट्टी बंधान, स्टॉप डैम, भूमिगत बंधान जैसे डाइक कहते हैं और चेक डैम, इनका निर्माण जो नदी नाले जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं उस पानी को हम यूं ही बहने नहीं देते बल्कि उनको हम अवरुद्ध कर पानी को रोकने

0: का प्रयास करते हैं। काफी सहायक संरचनाएं होती हैं। बोरी बंधान बहुत ही सस्ता आसानी से अपनाया जाने वाला संरचना है। इस संरचना में बोरियां होती हैं, प्लास्टिक की बोरी हो या जूट की बोरी हो, इसमें आप रेत इत्यादि को भरकर जहां पानी का बहाव है उसके अवरुद्ध एक दीवार की तरह नीचे से ऊपर की ओर आते हुए जमा दी जाती है। इससे पानी का बहाव अवरुद्ध होता है और नाले के ऊपरी भाग में पानी एकत्रित होने लग जाता है। इस पानी का उपयोग हम फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और साथ ही इसके बनने से पानी जो भरा रहता है उसकी वजह से भूमि का जल संवर्धन होता है। कृत्रिम जल भरण हेतु संरचनाएं भी आजकल हमारे क्षेत्रों में अपनाई जाना चाहिए। उनमें एक तो गर्त या कूपक विधि है, दूसरा खाई का निर्माण है, फिर नलकूप रिचार्ज और कुएं द्वारा जल भू जल रिचार्ज एवं सोखता गड्ढा, ये प्रमुख विधियां हैं जिनके माध्यम से हम कृत्रिम रूप से मृदा के अंदर या भूमि के अंदर जल का संवर्धन कर सकते हैं। और ऐसी जल संवर्धन संरचनाओं के बनने से हमारी भूमि में जल स्तर में सुधार होता है। कृत्रिम जल भरण संरचनाओं में कुओं में भू जल रिचार्ज, सोखता गड्ढा निर्माण और नलकूप रिचार्ज अत्यंत महत्वपूर्ण है जिन्हें ग्रामीणों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। कुओं में भू जल रिचार्ज के लिए वर्षा जल को मोड़कर कुएं के पास लाया जाता है। कुएं से लगभग 3 मीटर दूर जमीन में हम 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर तली में लगभग 1 मीटर मोटी बोल्डर की परत, उसके ऊपर बजरी 0.75 मीटर पौन मीटर के आसपास हम बजरी की परत लगाएंगे। उसके बाद रेत की परत 0.6 मीटर बिछाई जाती है। इससे छने हुए वर्षा जल को गड्ढे की तली से एक पाइप की मदद से कुएं के अंदर प्रवेश कराकर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार यह जल भू जल भंडारों को संवर्धित करता है। एक और तकनीक है नलकूप रिचार्ज। इसके लिए नलकूप के चारों ओर 27 घन मीटर या सुविधाजनक अन्य साइज का गड्ढा बनाया जाता है। इसमें नारियल रस्सी लिपटा छिद्रित केसिंग पाइप डालकर उसके चारों ओर नीचे से ऊपर क्रमशः बोल्डर या पेबल और बजरी एवं उसके बाद रेत बिछाई जाती है, जिससे वर्षा जल का रिसाव फिल्टर होने के बाद आसानी से होता है व भू जल की वृद्धि होती है। आओ हम सब मिलकर करें जतन, क्योंकि जल है अनमोल रतन।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था जल संरक्षण की आधुनिक विधियां। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। श्रोताओं लीजिए पहले सुनिए ये सूचना। नगर निगम में बिना जुर्माने के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख आज 30 सितंबर है। इसके बाद 1 अक्टूबर से यानी कल से बकाया संपत्ति कर पर नियमानुसार 2.5% प्रतिमाह पेनल्टी वसूल की जाएगी। करदाताओं की सुविधा के लिए 30 सितंबर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपत्ति कर जमा किया जा सकेगा। नगर निगम ने करदाताओं से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना बकाया संपत्ति कर जमा करने की अपील की है। करदाता क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी कर जमा कर सकते हैं।
2: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: श्रोताओं एक और सूचना आपके लिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4 अक्टूबर से सेवा सेतु अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगर निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान में पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने सेवा सेतु अभियान के तहत सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सभी अफसरों को शिविर के तहत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और शिविर में आने वाले हितग्राहियों के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
3: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल

से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: श्रोताओं, ये था सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का आज का अंक। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। हिंदी में समाचार प्रातः 7 और संस्कृत में समाचार अब से कुछ ही क्षणों में दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या अनिश्चिततया भौगोलिक सामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिक चिन्तनम् आकस्मिक परिस्थितीनां कृते योजना निर्माणं च अभिन्नौ अंगौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना सैन्याध्यक्ष सम्मेलनं संबोधयन् श्री सिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं ऊर्जा सुरक्षा अभियानं पुनरपि देशस्य ऊर्जापूर्तिव्यवस्थायाः राष्ट्रियहितानां च संरक्षणे भारतीय नौसेनायाः व्यावसायिक दक्षतां परिचालन सज्जतां च प्रदर्शितवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन युवमतदातॄणाम् अधिकतमपञ्जीकरणस्य उद्देश्येन दिल्लीस्थेषु विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च विशेष शिबिराणि आयोजितानि सन्ति। आयोगेन सूचितं यत् एतानि शिबिराणि अद्यपर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ति। आयोगेन उक्तं यत् बहुसंख्यकाः विद्यार्थिनः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य संबंध सूचनां प्राप्तुं तथा प्रपत्राणि प्राप्तुं समर्पयितुं वा एतेषां शिबिराणाम् अवलोकनं कृतवन्तः। आयोगेन सूचितं यत् एतेषु शिबिरेषु उपस्थितैः मतदान केन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः विद्यार्थिभ्यः प्रपत्रपूर्तौ मार्गदर्शनं कृतम्। पूरितानां प्रपत्राणां संगृहीतानि तथा विशेषगहन पुनरीक्षणसम्बन्धानां तेषां प्रश्नानां समाधानमपि कृतम्। आगामि मासस्य 7-8 च दिनाङ्के विशेषशिबिराणां पुनरपि एकं चरणम् आयोजयिष्यते। अथ च 4-11 च दिनाङ्के सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु अपि विशेषशिबिराणि आयोजितानि भविष्यन्ति। श्रम आजीविका मंत्रालयेन नवदिल्ल्यां श्रम संवाद मंडल स्तरीय क्षमता निर्माण जागरूकता कार्यक्रम आयोजितः। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इत्यस्य एकस्य निजी विधि संस्थानस्य च सहयोगेन एतत् आयोजितम् आसीत्।

0: अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नियोक्तृषु उद्योगस्य हितधारकेषु च जागरूकतायाः निर्माणम् आसीत्। केन्द्रसंस्कृतिपर्यटनमन्त्री गजेन्द्रसिंहशेखावतः ह्यः नवदिल्ल्यां 65वीं राष्ट्रियकलाप्रदर्शन्यां 20 पुरस्कारविजेतॄन् कलाकारान् पुरस्कृतवान्। ललितकला अकादम्या अस्य प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतमासीत्। सभां सम्बोधयन् श्रीशेखावतः सृजनात्मकतायाः सुस्थिरतायाः च संयोजनस्य महत्त्वं सुदृढतया प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसावसरे आयोजितः सेवा हि संस्कृति इति उपक्रमः कथं सृजनात्मकता सेवाभावः च अर्थपूर्णरूपेण एकत्र भवितुमर्हन्ति इति प्रदर्शयति। रक्षा उद्योगानां तथा आपूर्तिव्यवस्था सहकारस्य विषये दशमं भारत कोरिया गणराज्यस्य JCM इति संयुक्त समिति सम्मेलनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। गतरात्रौ जम्मूकश्मीरस्य बडगाम जनपदस्य उच्चक्षेत्रेषु सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे लश्कर ए तैयबा इत्यस्य एकः प्रमुखः आतंकी मृतः। यद्यपि भारतीयसेनायाः कश्मीरस्थितस्य चिनारकोरे इत्यनेन मृतस्य भयोत्पादकस्य परिचयः न प्रकटितः, तथापि अधिकारिणः तं सुलेमान शाह अथ मूसा इति नाम्ना अभिज्ञातवन्तः, यः पाकिस्तानस्थस्य लश्करे तैयबा इत्यस्य अत्यन्तम् अपेक्षितः भयोत्पादकः आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले चिनारकोरे इत्यनेन उक्तं यत् बडगामनगरस्य यूस्मर्ग इत्यस्य समीपे कोराक्षेत्रे ऑपरेशन कोराग संचालितम् आसीत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हम तैयारियां इतनी मजबूत कर लें कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहुर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उपमंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं। प्रातः 7:20 पर आप सुनेंगे सीमा जैन से उनकी कहानी नन्ही हथेलियों में। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं प्रातः 7:30 से। प्रातः 8:00 समाचार प्रभात और प्रातः 8:15 मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 8:30 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज कलाकार होंगे महेश सिंह राजपूत। आप सुनेंगे इनके गाए भजन। प्रातः 8:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। प्रातः 9:00 ये समय होता है सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का। प्रातः 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आप सुनेंगे इनका सारंगी पर बजाया राग मियां की तोड़ी। प्रातः 10:00 जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। सुबह 10:58 से सभा की समाप्ति तक इस सभा के शेष सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे, जिनके अंतर्गत दिन में 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, दिन में 12:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, दिन में 12:30 सुनेंगे आप कार्यक्रम संग्रहालय से, दिन में 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा। इसमें चर्चा के विषय होंगे कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक पितृपक्ष, साथ ही चर्चा होगी भाषा की सीमा मिटाता अनुवाद। कहानी होगी डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी की दाल का तड़का, साथ ही चर्चा होगी व्यर्थ न जाए अन्न। दिन में 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगा, जिसमें आज कलाकार होंगे मेहरवान सिंह कुशवाहा। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत आप सुनेंगे, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की ही प्रस्तुति होगा। कलाकार होंगी प्रियंका शर्मा।

आप सुनेंगे इनके गाए भजन। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। इस सभा के सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही प्रसारित किए जाएंगे, जिसमें शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की ही प्रस्तुति होगा, जिसमें चर्चा होगी वर्तमान समय में करियर के बढ़ते हुए अवसर इस विषय पर। शाम 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है। शाम 6:30 फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसे आप हमारे केंद्र से सुनेंगे, जिसमें चर्चा के विषय होंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। साथ ही चर्चा होगी ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मांगी लाल मरमिट का काव्य पाठ। साथ ही आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह भी आपको दी जाएगी। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नाटक। रात्रि 10:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। प्रदेश कैबिनेट ने 24,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को दी मंजूरी। अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर भोपाल में गोपालक सम्मेलन में होंगे शामिल। और इंदौर, भोपाल और उज्जैन को केंद्र सरकार की प्रगति 50 पहल के तहत देश के 50 मॉडल शहरों में शामिल किया गया। अब समाचार विस्तार से। एशियाई गेम्स में महिलाओं की ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय एथलीट पूजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2 दशक से ज्यादा समय बाद इस स्पर्धा में भारत को पदक मिला है, जो यादगार उपलब्धि है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारतीय एथलेटिक्स के लिए गर्व का क्षण बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में करीब 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बड़ी राशि मंजूर हुई, जिसमें अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए अगले 5 साल में 5,329 करोड़ और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,245 करोड़ से ज्यादा राशि शामिल है। वहीं युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक की भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया,
1: अग्निवीरों को आरक्षण देकर के युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसमें वन विभाग के आरक्षक, इसके अलावा गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल के प्रहरी तथा आबकारी के आरक्षक, इन 5 विभागों

0: में 20% का आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। यह एक मध्य प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत है और मैं ऐसा मानता हूं कि यह युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है।
1: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होने के साथ वे न्याय संहिता पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद भौरी के पास IISER परिसर का शिलान्यास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उज्जैन में 255 करोड़ रूपये के डेयरी प्लांट सहित दुग्ध संयंत्र और गुणवत्ता जांच लैब जैसी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान 2026 को प्रदेश में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कल अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आगे भी रचनात्मक कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिए। अभियान के तहत अब तक 3,87,00,000 से ज्यादा दीप जलाए गए हैं, जबकि चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। आने वाले दिनों में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु, 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा और 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को युवाओं को नशे से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरों के नशे के हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ाने और हर जिले में हर महीने नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा बैठक करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और आबकारी विभाग को जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के तहत कल मतदान संपन्न हुआ। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 75.96% और पंचायत उपचुनाव में 56.62% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश में 4,235 पदों पर उपचुनाव होना था, जिनमें से 604 पदों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष, 4 पंच और 79 सरपंच और 5 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए मतदान हुआ। इन चुनावों की मतगणना 3 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि पंच और जिला पंचायत सदस्य के नतीजे 5 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में ही सेवा सेतु अभियान सरकार आपके द्वार के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके नजदीक ही दिलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को ग्रामीण और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सेवा शिविर लगेंगे। इन शिविरों में राजस्व सेवाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन को केंद्र सरकार की प्रगति 50 पहल के तहत मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत इन शहरों में स्वच्छता, सैनिटेशन और ठोस तरल कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तीनों शहरों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड में काम किया जाएगा। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ को देखते हुए शिप्रा नदी, घाटों और सार्वजनिक सुविधाओं की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रहेगा। नई दिल्ली में यूट्यूब इम्पैक्ट समिट में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने क्रिएटर इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि AI रचनाकारों का विकल्प नहीं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने का साधन बनना चाहिए और इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। श्री मुरुगन ने युवा रचनाकारों से भारतीय भाषाओं, संस्कृति और कहानियों को डिजिटल माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने की भी अपील की। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश बीज संघ को अमूल, इफको और क्रिबको की तर्ज पर मजबूत सहकारी संस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 5 साल में बीज संघ को देश के प्रमुख बीज संस्थानों में शामिल करने के लिए उत्पादन, अनुसंधान, तकनीक और मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की हर विधानसभा में अब सीएम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जहां बच्चों

युवाओं को कई खेलों के साथ फिटनेस और प्रशिक्षण की सुविधाएं भी मिलेंगी। एशियन गेम्स में प्रदेश की राज्य शूटिंग अकादमी की नीरू टाडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया और इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। वहीं राज्य एथलेटिक्स अकादमी के देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 5.50 मीटर की छलांग लगाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। हालांकि वे सातवें स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा में कुलदीप कुमार 5.35 मीटर के साथ 10वें स्थान पर रहे। और अब बात मौसम की। प्रदेश से इसी हफ्ते मानसून की विदाई शुरू होने वाली है। सबसे पहले उज्जैन और ग्वालियर संभाग से मानसून लौटेगा। इसके बाद इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और सागर संभाग से भी इसकी वापसी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। वहीं 3 अक्टूबर तक प्रदेश से बारिश के बादल पूरी तरह छट जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वडनगर से वाराणसी जा रही सेवा संकल्प यात्रा के तहत मंडला पहुंची बाइकर्स यात्रा का ग्राम चारकी में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। कटनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण के तहत कल निर्वाचन सदन पहुंचकर ईवीएम वेयरहाउस और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। शिवपुरी में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय शिवपुरी में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में साइन लैंग्वेज वीक के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ईडीआर सेंटर में अनुगूंज से उद्घोष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक राजीव श्रीवास्तव ने कल सुबह खंडवा रेलवे स्टेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में कल जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा साइन लैंग्वेज वीक के अवसर पर अनुगूंज से उद्घोष विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सीमा जैन से उनकी कहानी नन्ही हथेलियों में।
1: बरखा जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। महादेवी माई की महिमा को आपने बड़े मन से प्रस्तुत किया। आपके यह शब्द मैं भूल नहीं पाऊंगा। हमारे शरीर में 70% पानी है। एक तरह से महादेवी हमारे भीतर भी है, या मैं भी महादेवी हूँ। मेरे शब्दों को दोहराते हुए उसने मेरी आंखों में झांका था। बस एक पल भी नहीं लगा और मैं उसकी आंखों की गहराई में डूब चुकी थी। डूबने का कारण उसकी आवाज़ थी, या गहरी हरी भरी आँखें, या उसकी और मेरी एक सी सोच, पता नहीं क्या था। पर जो भी था, वही पल हमारे प्रेम का कारण बना था। प्रेम पहली निगाह में ही होता है, यह शाश्वत सत्य है। जब कुछ महीनों के बाद मैंने कुंतल दादाल से कहा कि मुझे गौतम से प्रेम हो गया है, मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, तब दादा ने कहा था, इतनी जल्दी इस रिश्ते को प्रेम का नाम मत दो बेटा। दादा, गौतम बिल्कुल मेरे जैसा है। बहुत समय हो चुका है उससे मिलते हुए। अब हम कहते कहते मैं रुक गई थी। गौतम जिन शब्दों के साथ मेरे दिल में उतरे थे, बस उन्हीं की डोर थाम कर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। जिस दिन प्रेम का इकरार हुआ था, उसी दिन को हमने शादी के लिए चुना था। आज शादी के 7 साल बाद उसी डोर को एक झटका लगा अब यह टूट जाएगी। शाम के समय हम अपने बगीचे में थे। मानव एक पौधे की पत्तियों को तोड़कर उनसे खेलने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, पर वह नहीं माना। जब मैं उस पर चिल्ला उठी तो गौतम ने मुझसे कहा, बरखा तुम ये क्या कर रही हो, मानव को कैसे डांट रही हो, बच्चे पर कौन ऐसे चिल्लाता है। देखो गौतम, मानव कैसे पत्तियां और फूलों को तोड़कर फेंक रहा है, ये बहुत जिद्दी होता जा रहा है। बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, यह इसका हर दिन का खेल हो गया है। अपने गार्डन में मेरे बेटे का जो मन कहे वो करे, उसे अपने ढंग से खेलने दो ना। दो चार पत्तियों के टूट जाने से गार्डन में क्या कमी आ जाएगी। 2 बेडरूम के फ्लैट से

एक बंगले तक का सफ़र हमने तय किया था। इस रास्ते में गौतम बहुत बदल चुके थे। गौतम, इनमें भी जान है, अब इसे समझना चाहिए। पानी की बर्बादी पर इसे रोक नहीं सकते। कोको को सताए, उसकी पूंछ पर पैर रखे, उसे परेशान करे, पानी पीते या खाते हुए उसके बर्तन हटा दे, ये सब क्या है गौतम? और तुम कहते हो कि यह खेल रहा है। तितलियों को पकड़कर मार दे या एक दिन में एक पेंसिल शार्प करके ख़त्म कर दे, तुम्हें यह सब ठीक लगता है? गौतम, तुम्हारी शह से यह गैर जिम्मेदार हो रहा है। यार, छोटे बच्चे पे कौन इतनी पाबंदियाँ लगाता है? अब हम अपने बेटे को प्यार से, इसे प्यार नहीं प्यार में बिगाड़ना। बरखा, छोड़ो यार, मैं अपने बेटे को, तुम्हारा नहीं हमारा बेटा, ठीक है, हमारा बेटा, हमारा बेटा वैसे ही पलेगा जैसे मैं। फिर मुझे सोचना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। यहाँ बात सिर्फ मैं की नहीं हो सकती है। मतलब तुम शायद भूल चुके हो कि हमारे मिलने का कारण महादेवी माई थी। मैं आज भी प्रकृति और पर्यावरण के लिए उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितनी कल थी। तुम शायद बदल रहे हो। अपनी संतान और पर्यावरण को बचाना ही मेरी जिम्मेदारी। बरखा, कैसी बातें कर रही हो? संतान को बचाना माने क्या? एक छोटी सी बात को कितना तूल दे रही हो? अपने बेटे के भविष्य और इसके भविष्य के लिए यह पृथ्वी, इन दोनों को नहीं सहेजा तो क्या किया? यह सब अपने ही हाथों से नष्ट होते देखना बहुत पीड़ादायक। कहते कहते मेरी आंखें भर आई थी। बच्चे की मस्ती में तुम्हें क्या नष्ट होते हुए दिख रहा है, मैं नहीं समझ पाऊंगा। तुम आज भी अपना काम पूरी शिद्दत से कर रही हो। मैं भी तुम्हें जितना दे सकता हूँ कवरेज दे ही देता हूँ। कहते हुए गौतम मानव का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। मैं वहीं रुक गई। गौतम का फोन आया। बरखा, रात हो गई है, अंदर आओ, खाना खा लो। मानव तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा रहा है। तुम खाना खा लो, मैं दादा के पास जा रही हूँ। कैब में बैठते हुए मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और मैं गाड़ी में बैठ गई। आज पहली बार यह ख्याल करने का मन नहीं हुआ कि मानव मेरे बगैर कैसे रहेगा या गौतम अकेले उसे कैसे संभालेंगे। जब जमीन पर पसरी घायल डाली को गौतम ने रुक कर पेड़ के सहारे खड़ा किया था तो उसके साथ मेरे पैर ही नहीं मन भी ठिठक गया था। कितने लोग उस डाली को कुचलकर आगे बढ़ चुके थे जिसे गौतम ने हटाया था। वह समंदर किनारे जूते हाथ में लेकर ही चलता था। पूछने पर वह बोला, किसी केकड़े की मौत की जिम्मेदारी मुझे नहीं लेना है, यह उनकी और कौओं के बीच की लड़ाई है। उस दिन मैंने गौतम से कहा था, मुझे बात तो तुम्हारी बहुत सही लगी, तो क्या अब मैं भी जूते उठा के चलूँ? हाँ, चाहो तो तुम्हारे जूते मैं उठा लूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने बच्चों की तरह जूते उतार दिए। जूते हाथ में उठाकर चलने वाली मेरी अनकही कश्मकश को समझने वाले मेरे साथी ने झुककर जब मेरे जूते उठाए थे तो मेरा मन उसकी ओर पूरी तरह झुक गया था। मेरी आँखों में पानी भर आया था जिसे उसने देख लिया था पर कहा कुछ नहीं। आंसुओं को ध्वनि की ज़रूरत भी कब हुई है, पर यह खारा पानी ही तो जीवन की डोर है। एक पल को ठहरी उसकी आंखों को देखते ही मैंने सब सुन लिया था। मौन प्रेम को अनंत गहराई दे देता है, यह उस दिन महसूस किया था। उसके हाथ को पकड़कर चलते हुए उस दिन लगा कि मेरे पैर रेत पर नहीं बादलों पर पड़ रहे हैं। इच्छा हुई थी कि यहीं ठहर जाऊं, उसे एक लंबे आलिंगन में बांध लूं। सागर किनारे की भीड़ में मैं ऐसा नहीं कर पाई थी, पर उन पलों को याद करके मैंने उसे अनगिनत बार बाहों में भरा था। हम प्रेमियों के जीवन में प्रेम के जितने पल होते हैं ना, उससे ज़्यादा उनकी यादों के पल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेमी प्रेम में डूबे रहते हैं। एक दिन मेरे जूड़े में फूलों को सजाते हुए उसने शरारत से कहा था, यह सब चुने हैं, तोड़े नहीं हैं। उस दिन फूलों की महक मेरे तन ही नहीं मन को भी महका गई थी। कितनी यादें और कितनी बातें हैं, कैसे इस इंसान को याद दिलाऊं कि यह कितना बदल चुका है। दादा ने सच ही कहा था कि इंसान का मन बदलने में देर नहीं लगती। बरखा के जाने के बाद आज पहली बार गौतम को लगा कि यह सारे काम बरखा कितनी सहजता से कर लेती, वह भी अपने एनजीओ और डांस क्लास के साथ। क्या हम उसकी कद्र करते हैं? यह सवाल उसने अपने आप से किया था। क्या हम उसकी सोच का सम्मान देते हैं या सफलता और दौलत के नशे में सब भूल जाते हैं? गौतम ने जब भी बरखा को फ़ोन लगाया उसका फ़ोन बंद ही था। कुंतल दादा ने उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। आज पाँचवें दिन तो मानव अपनी माँ की याद में सिसकने लगा। मुझे माँ के पास जाना है, वह हम दोनों से नाराज है। क्यों? हम उनका कहना नहीं मानते हैं। मैंने क्या नहीं माना? तुम कोको को तंग करते हो, मैं तो उसके साथ खेलता हूँ। नहीं बेटा, किसी को दुख देकर हम कैसे खुश हो सकते हैं? माँ तुमको मना करती थी ना? हाँ, पर आप तो मेरी साइड लेते थे, मानव ने बड़े प्यार से कहा, जिसे सुनकर गौतम आश्चर्य से भर गया कि उसकी शह को छोटा बच्चा कैसे पकड़ लेता है। फिर तो मैंने भी गलती की।

0: बगीचे में पत्तियां तोड़ते हो, उससे क्या हुआ? पेड़ जिंदा हैं, उनको दर्द होता है। दर्द कैसे होगा? वो बोल नहीं सकते हैं। जो बढ़ते हैं वो सब जिंदा हैं, चाहे बोल नहीं सकते हों। तुम्हारी माँ से मेरी दोस्ती पक्की हो गई थी जब मैंने उनके बालों में चुने हुए फूल लगाए थे। चुने हुए माने सिलेक्ट किए हुए? नहीं बेटे, जो ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें हम तोड़ते नहीं हैं। उसके भोलेपन पर वह मुस्कुरा उठा था। गौतम को लगा कि अनजाने ही उसने मानव के भीतर की संवेदना को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आज ये बच्चा कोको को प्यार से सहला सकता था, पौधों को पानी दे सकता था, या किसी तितली को देखकर खुश होता, मगर उसे पकड़कर मार कैसे सकता था? इसके मन में संवेदना का संचार होना था। जब बरखा अपने दादा के पास पहुंची तो अपने आप को रोक नहीं पाई। उनको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादा ने उसे छूकर पूछा, क्या हुआ बेटा, घर में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है, सब बिखर रहा है। गौतम की दौलत की चमक में सब धुंधला रहा है। दादा, यदि मैं अपने बच्चे को संस्कार ही नहीं दे पाई तो यह सफलता किस काम की? पिछले 5 दिनों से उसने दादा से भी कोई बात नहीं की। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की सोच, उसने यह सब मानव को सिखाना चाहा तो क्या गलत किया? मैं गलत नहीं थी, इस निष्कर्ष ने उसे शांति दी। आज सुबह उसने सोचा कि वह दादा को बताएगी कि उसने क्या सोचा है। इतने में बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मानव भागता हुआ उसके पास आया और उसने उसे बाहों में भर लिया। उसे चूमते हुए वह सब कुछ भूल गई। मानव भी सहमा सा उससे लिपटा हुआ था। गौतम चुपचाप एक ओर खड़ा था। किसी को ध्यान ही नहीं था कि क्या कहना है। इस उदासी को तोड़ते हुए कुंतल दादा ने ही कहा, अरे मानव, अपने मामा से बात नहीं करोगे? नहीं, कहते हुए उसने बरखा को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। आराम से मिल लो अपनी माँ से, फिर हमसे बात कर लेना, कहकर उन्होंने मानव के सर पर हाथ फेरा। बाद में पीछे आंगन में चिड़िया के बच्चे को देखना। क्या चिड़िया के बच्चे? अभी चलो ना मामा, कहते हुए बरखा की गोदी से उतर गया। बरखा, हम पीछे से आते हैं, तब तक तुम खाना लगा दो, कहते हुए कुंतल आगे बढ़ गए। वे चाहते थे कि ये तीनों एक दूसरे के महत्व को अच्छी तरह से समझ लें। इन 5 दिनों में उन्होंने क्या महसूस किया है, उस पर उनका निर्णय टिका है। पर उस निर्णय को पूरा समय मिल जाए, कोई हड़बड़ी न हो, यही उनकी इच्छा थी। गौतम भी बरखा के साथ रसोई में चला गया। बरखा, तुम अपना कोई निर्णय दो, उससे पहले मुझे कुछ कहना है, बोलो। अब वह पूरी तरह से तैयार थी जीवन के इस फैसले को सुनने के लिए। बरखा, मानव को एक जिम्मेदार इंसान बनाना ज़रूरी है। हमारे बच्चे के संस्कार या उसकी संवेदनशीलता ही हमारी दौलत है, इसे दौलत से तोलना बहुत बड़ी भूल होगी, कहते हुए उसने आज फिर बरखा की आँखों में झाँका। उसकी आँखों में एक विस्मय था और वह शायद गौतम को समझने की कोशिश कर रही थी। हमारी लापरवाहियों का भुगतान या पृथ्वी और हमारे बच्चे सबको करना, अब शब्द बरखा के कानों में नहीं जा रहे थे। कान तो आंखों के साथ मिल चुके थे और अब सिर्फ धुंधलापन था। अचानक मानव की आवाज़ से बरखा अपने धुंधलेपन से बाहर आई। माँ, देखो मैंने यह फूल चुने हैं, तोड़े नहीं हैं, कहते हुए जब मानव ने हर सिंगार के फूलों से भरी हुई अपनी नन्ही हथेलियों को आगे किया तो बरखा ने झुककर मानव की हथेलियों को चूम लिया और घुटनों के बल बैठकर उसे बाहों में भर लिया। वह सिसक उठी। पास खड़ी 4 आंखों में भी पानी भर आया, वही पानी जो महादेवी माई में है या जो हम सब में भी रमता है।
1: अभी आप सुन रहे थे सीमा जैन से उनकी कहानी नन्ही हथेलियों में। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक शॉन के गाए कुछ यादगार गीत, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। श्रोताओं, शॉन, जिनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी, 30 सितंबर सन 1972 को मुंबई के एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके दादा जहार मुखर्जी एक जाने माने रचनाकार थे और इनके पिता मानस मुखर्जी एक संगीतकार थे। यही वजह रही कि शॉन को संगीत वसीयत के तौर पर मिला। इनकी बहन सागरिका भी बतौर गायिका अपनी पहचान बना चुकी हैं। श्रोताओं, बात संगीत के सफ़र की करें तो शॉन ने अपने संगीत के सफ़र की शुरुआत की विज्ञापनों में आवाज़ देकर और जिंगल्स गाकर। सन 1987 में इनका पहला एल्बम रिलीज हुआ, लेकिन 2000 में रिलीज एल्बम तन्हा दिल ने इन्हें पहचान दी। इस एल्बम के टाइटल सॉन्ग

1999 में आई फिल्म प्यार में कभी कभी से इन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी फिल्म के इस गीत के साथ करते हैं, जिसमें संगीत दिया है विशाल ददलानी और शिराज भट्टाचार्य सम्राट ने, बोल है राज कौशल और विशाल ददलानी के। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये

0: रुका कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भाई, एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
5: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
4: मतलब?
5: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से एचआईवी एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
4: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
6: आप भी सतर्कता अपनाएं और एचआईवी के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने पार्श्व गायक शॉन के गाए कुछ यादगार फिल्मी गीत आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। श्रोताओं, इनके गाए लगभग सभी गीत हिट गीतों की सूची में हैं, लेकिन इनके गाए फिल्म फना और सावरिया के गीत के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें फिल्म फेयर अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड शामिल हैं। तो आइए कार्यक्रम में इन्हीं गीतों को सुनते हैं। पहले सुनते हैं फिल्म सांवरिया के इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना से इस गीत को। श्रोताओं, आज फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं शॉन के गाए कुछ यादगार फिल्मी गीत, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर। श्रोताओं, बात यदि अवार्ड विनिंग गीतों की करें तो एक और गीत है जो फिल्म 2009 थी, थ्री इडियट, इस फिल्म से था और इस गीत के लिए भी इन्हें आईफा और GIMA अवार्ड से नवाजा गया। तो आइए इस यादगार गीत को सुनते हैं।

और आइए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म पीके से। आवाज़ें हैं शॉन और श्रेया घोषाल की। गीत स्वानंद किरकिरे का है और संगीत निर्देशन शांतनु मोइत्रा का।

0: पार्श्व गायक शॉन को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप

0: अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्ययोजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभूबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबेल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1970

0: 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुँच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोऊ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहिया पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल। लिखा, NCERT की नई किताब में मेवाड़

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं महेश सिंह राजपूत के गाए भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भजन।

इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। आज के कार्यक्रम में कलाकार थे महेश सिंह राजपूत, आप सुन रहे थे इनके गाए भजन। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8:58 होने को इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए सूचनाओं और जानकारियों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपका रेडियो मित्र विशाल। हौसलों की उड़ान रख, दिल में विश्वास रख, मुश्किलों से न डर, खुद पर तू आस रख। राहें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, कदम बढ़ाता चल, जीत का एहसास रख। और श्रोताओं, इन्हीं बुलंद हौसलों के साथ एशियाड में भारतीय दल ने शानदार जीत दर्ज कर 2 गोल्ड अपने नाम किए हैं कल के दिन। तो ये एक बहुत ही खुशी का अवसर है हम सभी के लिए। श्रोताओं, भारत को कल का दिन का पहला गोल्ड महिलाओं की व्यक्तिगत टैप स्पर्धा में नीरू ढांडा ने दिलाया। नीरू ने आशिमा अहलावत मनीषा कीर संघ महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत को रजत दिलाया। वहीं भारत का दूसरा व 8 साल बाद पहला स्वर्ण महिलाओं की 400 मीटर रिले में मिला। श्रोताओं, बात यदि हम नीरू ढांडा की करें तो एशियन गेम्स में अपने इवेंट से महज 10 दिन पहले नीरू ढांडा अस्पताल में भर्ती थी। तेज बुखार और गंभीर फ्लू के कारण 5 दिन ठीक से खाना तक नहीं खा सकी। खेल पाएंगी या नहीं, इस पर भी संशय था, लेकिन बीमारी और कमजोरी को पीछे छोड़कर नीरू जापान पहुंची और मंगलवार को महिला ट्रैप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। श्रोता, मूलतः जींद हरियाणा की 26 वर्षीय नीरू भारतीय सेना में नायब सूबेदार हैं, पर 7 साल से परिवार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ही रह रहा है। बारिश और कम दृश्यता के बीच फाइनल में नीरू ने 30 में से 28 निशाने लगाए, चीन की सुन युनोंग को हराया। नीरू ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में सिल्वर भी जीता। नीरू भोपाल में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी भी हैं। वहीं बात यदि हम दूसरे गोल्ड की करें तो एशियन गेम्स में किरण पुवम्मा, प्राची और विद्या की चौकड़ी ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में एथलेटिक्स का पहला गोल्ड जीता। उन्होंने 3:29.69 में रेस पूरी की, जबकि पुरुषों और मिक्स्ड रिले टीमों ने इसी दौड़ में ब्रॉन्ज जीते हैं। वहीं गुलवीर ने पदकों की हैट्रिक बनाई है। उन्होंने 1500 और 10,000 मीटर के बाद अब 5,000 मीटर में भी ब्रॉन्ज जीता है। पूजा सिंह ने ऊंची कूद में ब्रॉन्ज जीता है। वहीं भारत के 6 गोल्ड के साथ 53 मेडल अब हैं और अब हम टॉप 10 में शामिल हैं, जबकि चीन 143 गोल्ड के साथ टॉप पर है। श्रोताओं, बात यदि जीत की करें, गोल्ड मेडल्स की करें, तो आज हमारा देश हर जगह अपना परचम लहरा रहा है और इसी जीत को आज हम एंजॉय करते हैं अपने इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ही अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन की। आज 30 सितंबर है और आज हम मना रहे हैं विश्व अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। श्रोताओं, ये दिन दुनिया भर में अनुवादकों, दुभाषियों और भाषा विशेषज्ञों के योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम इस दिन के इतिहास की बात करें तो श्रोताओं, 30 सितंबर को मनाए जाने का संबंध

संत जेरोम से है, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान और अनुवादक थे। उन्होंने बाइबल का लैटिन भाषा में अनुवाद किया था। इसी कारण उन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत यानी पैट्रॉन सेंट ऑफ ट्रांसलेशन माना जाता है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में 30 सितंबर को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे यानी विश्व अनुवाद दिवस घोषित किया। इसके बाद से ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में शामिल हुआ। बात अनुवाद की हो तो श्रोताओं, एक भाषा में व्यक्त विचार, जानकारी, साहित्य या भावनाओं को जब दूसरी भाषा में अर्थ और भाव को बनाए रखते हुए प्रस्तुत करता है, उसे ही अनुवाद कहते हैं। और हम इसके महत्व से तो भली भांति परिचित ही हैं। बात शिक्षा की हो तो अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों और अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अनुवाद मदद करता है। आप समझ सकते हैं कि कई सारे शोध आज विश्व स्तर पर होते हैं, और यदि वो शोध किसी एक देश तक ही सीमित होंगे तो उसका लाभ अन्य देश नहीं ले पाएंगे। और जब उन्हीं शोध उन्हीं आविष्कारों का जब ट्रांसलेशन आता है तो वो पूरे विश्व भर में सभी के पास पहुंचता है, और जिससे उस अनुसंधान का लाभ हर देश में पहुंच पाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं यदि साहित्य की बात करें तो विभिन्न देशों की कहानियाँ, कविताएँ और उपन्यास दूसरी भाषाओं के पाठकों तक पहुँचते हैं, जिससे आपसी जो सामंजस्य है बढ़ता है। हम अपने जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे अन्य प्रांत हैं, उनकी संस्कृतियों से रूबरू होते हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी अनुवाद का महत्व है। वहीं व्यापार के क्षेत्र की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कंपनियों के बीच संवाद को आसान बनाता है अनुवाद। संस्कृति की बात करें तो एक देश की परंपराओं, विचारों और साहित्य को जब दूसरे देशों तक पहुंचाना होता है तो अनुवाद का ही सहारा लिया जाता है। और फिर जैसा कि आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सामग्री को अनेक भाषाओं में उपलब्ध कराने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम कह सकते हैं कि अनुवाद कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में। और हमारे देश की हम बात करें तो हमारा देश बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, इसलिए भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद का विशेष महत्व है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य का परस्पर अनुवाद लोगों को एक दूसरे की भाषा और संस्कृति समझने में सहायता करता है। इससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलता है। श्रोताओं, भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन भावनाएं और विचार मानवता को जोड़ते हैं। अनुवाद इन्हीं विचारों और भावनाओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। हम बात कर रहे थे आज की, तो आज हम याद कर रहे हैं एक जाने माने निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी जी को, आज उनकी जयंती है। श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में एक ऐसे फिल्म मेकर के रूप में वे विख्यात हैं जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया। यही कारण है कि उनकी फिल्में सत्यकाम

आशीर्वाद चुपके चुपके आनंद आज भी बेहद पसंद की जाती हैं। श्रोताओं, ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक संबंधों की बारीकियों को बखूबी पेश करती हैं। उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया भादुड़ी जैसे स्टार अभिनेता और अभिनेत्री अपना स्टारडम भूलकर पात्रों से बिल्कुल घुल मिल जाते हैं। 30 सितंबर सन 1922 को कोलकाता में जन्मे ऋषिकेश मुखर्जी फिल्मों में आने से पूर्व गणित और विज्ञान का अध्यापन करते थे। साथ ही उन्हें शतरंज खेलने का भी शौक था। फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें कोलकाता के न्यू थिएटर से मिले। उनकी प्रतिभा को सही आकार देने में प्रसिद्ध निर्देशक विमल रॉय का बड़ा हाथ था। ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1951 में फिल्म दो बीघा जमीन फिल्म में विमल राय के सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने सन 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अगली फिल्म अनाड़ी उनके साथ ही बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म निर्माण की प्रतिभा का लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। ये फिल्म राज कपूर के सधे हुए अभिनय और मुखर्जी के कसे हुए निर्देशन के कारण अपने दौर में काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके बाद मुखर्जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी ऑफबीट फिल्मों का भी निर्देशन किया। ऋषिकेश मुखर्जी ने 4 दशक के अपने फिल्मी जीवन में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषिदा की अंतिम फिल्म 1998 की झूठ बोले कौआ काटे थी। उन्होंने टेलीविज़न के लिए तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले की और जैसे धारावाहिक भी बनाए। यदि बात पुरस्कारों की करें तो सन 1961 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1972 में उनकी फिल्म आनंद को सर्वश्रेष्ठ कहानी के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उनकी फिल्म को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें 1956 की फिल्म नौकरी, 1959 की फिल्म मधुमति और 1972 की आनंद शामिल है। उन्हें 1999 में भारतीय फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया और साल 2001 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। श्रोताओं, अभिनय ही नहीं, गानों के फिल्मांकन के मामले में भी ऋषिदा बेजोड़ थे। अनाड़ी फिल्म का गीत हो या आनंद का गीत या फिर अभिमान का गीत या फिल्म गोलमाल का गीत आज भी हमें बेहद आकर्षित करता है। ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना कहीं अधिक मुश्किल कार्य है, इसलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूँ। मैं अपनी फिल्मों में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि इसकी मिठास कहीं कड़वी न हो जाए। और श्रोताओं, आज भी उनकी फिल्में जब हम देखते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ी हुई हैं। तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सलाम करते हैं और आइए सुनते हैं उन्हीं की एक फिल्म से इस यादगार गीत को।

श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हमारे पास जीवन है, समय है, रिश्ते हैं, खुशियां हैं, फिर भी हम अक्सर खुश क्यों नहीं रह पाते? शायद इसलिए कि हमारा शरीर जहां होता है, हमारा मन वहां नहीं होता। हम खाना खा रहे होते हैं और दिमाग ऑफिस में होता है, परिवार के साथ बैठे होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है। बच्चा अपनी कोई बात सुनाना चाहता है, हम उसकी बात सुनते सुनते अपने अगले काम के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी हम जिंदगी में मौजूद तो होते हैं पर पूरी तरह उपस्थित नहीं होते। पूरा दिन जीते हैं पर कई बार पूरे दिन का एक भी पल सचमुच में नहीं जीते। श्रोताओं, मानसिक सजगता का अर्थ जीवन के हर कार्यकाल में पूरी तरह उपस्थित होना है। यदि आप चाय पी रहे हैं तो इलायची की खुशबू, प्याले से उठती भाप को महसूस करें। यदि बच्चे से बात कर रहे हैं तो उसकी सुने, चल रहे हैं तो अपनी आहट सुने, अपनी ही सांसों को महसूस करें। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप अपने हर पल को पूरी जिंदादिली के साथ आनंद लेते रहेंगे, फिलहाल वक्त की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि आज के इस कार्यक्रम को यहीं

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल मजीद खान। आइए सुनते हैं इनका सारंगी पर बजाया राग मियाँ की तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अब्दुल मजीद खान का सारंगी पर बजाया राग मियां की तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: प्लास्टिक पॉलिथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलिथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें।
0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
3: OTT app now and watch for free.

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट से लेके चिट्ठी, आलेख श्रीनिवास चौधरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात एक खास यात्रा की। वडनगर से वाराणसी जल जन और सेवा संकल्प यात्रा 28 सितंबर को बैहर पहुंची। यहां यात्रियों ने सफाई कर्मियों से संवाद किया। इस दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों से हिंसा प्रभावित लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि हालात में बदलाव के बाद अब गांवों में सुरक्षा के साथ विकास और सुविधाओं का विस्तार भी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर मलाजगढ़ नगर पालिका ने सेवा संकल्प अभियान और सफाई मित्र सुरक्षा पहल के तहत सफाई कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाया। इसमें रक्तचाप, शुगर और हीमोग्लोबिन समेत सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए शहरवासियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में हुई 25वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में बालाघाट के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 5 पदक अपने नाम किए। कलेक्टर कुमार सत्यम ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी सेहत की सराहना की। अब किसानों से जुड़ी खबर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए किसान पंजीयन 15 सितम्बर से शुरू हो चुका है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। जिले में इसके लिए 112 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। किसान सीएससी क्योस्क, एमपी ऑनलाइन और साइबर कैफे के जरिए ₹50 शुल्क देकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए लांजी के भोले गांव में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर लगाया गया। यहाँ ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और आवेदनों के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी पहल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 से 15 साल की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। बालाघाट अर्बन क्षेत्र के फोकल पॉइंट पर भी बालिकाओं का टीकाकरण किया गया। और अब बात विकास कार्यों की। बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी ने किरनापुर के देवगांव में करीब 77 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सेवा संकल्प अभियान के तहत कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जांच और सिकल सेल एनीमिया जांच शिविर लगाया गया। 355 छात्राओं की सामान्य स्वास्थ्य हीमोग्लोबिन जांच हुई, जबकि 155 छात्राओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई। इनमें 35 छात्राएं सिकल सेल ट्रेट पॉजिटिव मिली, जिन्हें आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस पर बालाघाट में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सुरक्षित गर्भपात से जुड़े कानूनी प्रावधान, निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी गई। अब बात सरकार आपके द्वार की। बालाघाट में 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में मेगा सेवा सेतु शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सरकारी योजनाओं के साथ राजस्व से जुड़ी सेवाओं के मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। बिरसा के बैगा बहुल गांव और दुल्हापुर में जन समस्या निवारण शिविर लगाकर ग्रामीणों को गांव में ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में जाति प्रमाण पत्र के 90 आवेदन मिले और पहले से तैयार 175 प्रमाण पत्र बांटे गए। इसके अलावा 26 नए आधार कार्ड बनाए गए, 28 अपडेट किए गए और संबल समेत पेंशन और राशन से जुड़े आवेदन भी लिए गए। ग्रामीण इलाकों में साफ पानी पहुंचाने के लिए भी काम जारी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टीम ने बिरसा और बैहर के कई गांवों में हैंडपंपों का क्लोरिनेशन और जरूरी सुधार किया। अब पंचायत चुनाव की खबर। बालाघाट की 3 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए हुए मतदान में कुल 62.48% वोटिंग हुई। भरवेली में 55.31, खुरपुड़ी में 89.39 और अकोड़ी में 71.73% मतदान दर्ज किया गया। इन चुनावों के नतीजों के लिए मतगणना 3 अक्टूबर को संबंधित विकासखंड मुख्यालयों पर होगी। और आखिर में बात खेती किसानी में हो रहे शोध की। राजा भोज कृषि महाविद्यालय में देश विदेश के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान परियोजना का निरीक्षण किया। IRIR फिलीपींस और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल अनुसंधान प्रक्षेत्र में चल रहे काम को देखा। इस दौरान फसल विविधीकरण और नई कृषि तकनीकों को लेकर भी चर्चा हुई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख था श्रीनिवास चौधरी का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10:05

मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र विशाल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप और इनके मित्रजन। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके मित्रजन। कुम्हार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुम्हार। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म हीरा पन्ना से इस गीत को।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सत्ते पे सत्ता से। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत राहुल देव वर्मन का और आवाजें हैं किशोर कुमार और एनिट की। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये सभी श्रोता मित्र, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप, संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी, दीपक चांदनी यादव, सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सोहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म सत्ते पे सत्ता से इस गीत को।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कटी पतंग से स्वर किशोर कुमार का है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत राहुल देव वर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, अंजलि बाला साहब करवा, जयश्री महत्रे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबूल और पी वी कुलथे, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून और इकबाल मस्तान, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद और परमानंद आर्य, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म कटी पतंग से इस गीत को।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आप तो ऐसे न थे से। स्वर मोहम्मद रफ़ी का है, गीत निदा फाजली का और संगीत निर्देशन उषा खन्ना का। पसंद हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की है। ग्राम पजौलिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जेते विरक और मीका विरक। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी और शिवन्या गोस्वामी। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापाजी नानक चंद्र मल्होत्रा। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे न थे से इस गीत को।

0: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश, जो हमारे सभी श्रोता मित्रों की है। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समेरा आजमीन गुड़िया। उमाली महाराष्ट्र से अनूप कुमार, उद्भव पाटिल, पलसी से वी एस शेगोकार, डॉक्टर जयश्री। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, गुरवंश सिंह जोड़ा। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमेध कुमार, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर और श्लोक दीपाली। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक नज़र से इस गीत को, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हर गुरुवार सुबह 8:30 से 9 बजे सुनिए स्वराज संस्थान भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म निकाह से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और सलमा आगा की, गीत हसन कमाल का है और संगीत रवि का। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा है आप सभी ने। ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु एवं रोनिका यादव ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज ठाकुर, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। बरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या और जय हागे। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म निकाह से इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जावां से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और सपना की। गीत इंदिवर का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। पसंद हमारे इन सभी श्रोता मित्रों की। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि चित्ररेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा। मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलाणी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बानू मी और बादशाह मुलाणी, साथ ही पूरा मुलाणी परिवार। धनोरी तेलीवाला से निसार नौशाद, बेबी आलिया और अयान बाबू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत और कमल सहानी। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जावां से इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं, यदि आप इस कार्यक्रम से के माध्यम से अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9425702768। नंबर एक बार फिर से 9425702768। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार सुबह 10:05 से 10:58 तक। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप पर भेजिए और अपने पसंदीदा गीत सुनिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल हम लेते हैं आज का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म पुलिस पब्लिक से। गीत असद भोपाली का है, संगीत राम लक्ष्मण का, स्वर है लता मंगेशकर और अमित कुमार का। पसंद आप सभी की है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। मोगा पंजाब से जगदीश मठाड़ू और वीरपाल। पश्चिम सिंहभूप चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। सनावद मध्य प्रदेश से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी लाल साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनके मित्रजन। येलांडू कोठा गोदेम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, चिन्ना पासी, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज, भानु राज और अमित खन्ना। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोता मित्रों की पसंद पर फिल्म पुलिस पब्लिक से इस गीत को।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश अब यहीं पर समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।
1: पाल केंद्र है, समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने या कमीशन करने की योजना है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भील दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश को दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच जैसी लैब से जुड़ी हुई सौगातें मिलेंगी। इनमें उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला डेयरी प्लांट और भोपाल का फॉर्मेटेड प्रोडक्ट दूध प्लांट शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत शुरू की गई प्रगति 50 पहल में देश के चयनित 50 शहरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और उज्जैन को शामिल किया गया है। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत जारी गतिविधियों की कड़ी में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु, 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा और 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में आज जापान में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 दिवसीय पुरुष क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान और जो हमारे श्रोता हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया नए हमारे श्रोताओं को मौका दीजिए। और जो हमारे नए श्रोता हैं हम उनको अपना नंबर बता देते हैं 2660902। जी हाँ, 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो, कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
4: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गाँव का नाम अंशमहल बुगला।
3: क्या बात है, राजस्थान से बात कर रहे हैं?
4: जी सर, जयपुर से बात कर रहा हूँ सर।
3: अच्छा, तो अब देखिए आपने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उस कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने, तो लाजमी है कि आपने कोई सा गाना सोच के रखा होगा।
4: जी, गाना तो सोच के रखा है सर। आपसे काफी दिनों के बाद हो रही है तो पहले ये बताओ कि आप कैसे हो?
3: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और आप कैसे हैं ये भी बता दीजिए।
4: जी, मैं भी आपकी आवाज सुन के और भी अच्छा हो गया सर।
3: वाह क्या बात है, देखिए एक दूसरे की खुशी में जब हम शामिल होते हैं तो अपने आप ये समझ लीजिए कि हम स्वस्थ हो जाते हैं, खुश रहने लगते हैं, है ना?
4: जी।
3: तो हमने बड़े लोगों से सुना है, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हमेशा वेलकम के यानी कि स्वागत के उसमें मिलना चाहिए, किसी से भी मिलो तो खुशी के साथ मिलना चाहिए।
4: हाँ जी सर,
3: है ना, तो ऐसे ही बात करना चाहिए जिससे कि सामने वाला भी खुश हो। चलिए आप बताइए कि कौन सा गाना।
4: फिल्म का नाम रहेगा अंश।
3: जी हाँ,
4: और उसमें गाने के बोले हम अपनी तरफ से तुम्हें चाहते हैं मगर आपका कोई भरोसा नहीं
3: है। गाना हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक की और कुमार सानू की, ये आवाज है समीर का लिखा हुआ है, नदीम शर्मा का संगीत है। तो सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गाना।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: जी नमस्कार, आदरणीय सर, कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से।
0: कैलाश जी, क्या हाल चाल है?
1: बस सर एकदम ठीक है सर, आप बताइए आप कैसे सर?
0: बिल्कुल शानदार, सदाबहार।
1: और बताना चाहेंगे, आपसे बात हो गई तो और बिल्कुल एकदम मस्त हो गए हम।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए हमें भी बहुत खुशी होती है कि जब आप हमें कॉल करते हैं।
1: जी जी जी बताए, बहुत अच्छा लगता है सर भोपाल का आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम,
0: अरे वाह, क्या
1: नियमित रूप से सुनते भी रहते हैं।
0: अच्छा कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: जी सर ज्यादातर तो मुझे फोन पसंद, और बताना चाहेंगे बहुत बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं, सुनते तो जितना समय मिल जाता है सुनते तो सारे कार्यक्रम हमें बिल्कुल बराबर।
0: तो आप सुनते रहिए कार्यक्रम। अब ये बताइए कि आपने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया उस कार्यक्रम का नाम है फोन करेंगे सुने।
1: जी जी सर,
0: तो फोन तो आपने कर लिया, आप गीत भी सुन लीजिए। बताइए कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: गीत सुना दीजिए सर, फिल्म दो रास्ते का है।
0: दो रास्ते का कौन सा गाना?
1: जी जी इसका कोई सा भी लगा दीजिएगा।
0: अच्छा ऐसा?
1: जी
0: सभी गाने बहुत
1: अच्छे हैं इसमें सर।
0: अच्छा देखिए इसमें यह है, ये रेशमी जुल्फें।
1: जी
0: यही गाना सुनवा दें हम आपको?
1: हाँ यही सुनवा दीजिएगा सर, और आपके लिए भी सुनवाएंगे ये सॉन्ग।
0: चलिए सुनिएगा दो रास्ते फिल्म का ये गाना, लिखा आनंद बख्शी ने है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और ये आवाज है मोहम्मद रफी की। सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करेगी सुने, और अब देखते हैं हमारे अगले श्रोता कॉल आ गया है। हेलो, फोन करेगी सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते सर, जावेद सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं? वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ, बरेला से।
0: वंदना जी, क्या हाल चाल है?
1: पिछली बार आपसे ही बात हुई थी, इसके पहले भी आपसे बात हुई थी।
0: कितने दिन हो गए उस फोन को?
1: मेरे को हो गए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। 17 तारीख को किया था मैंने।
0: 17 को किया था, चलिए। तो आपने कॉल किया,
1: बात हुई थी मेरी।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिये, और सबसे
1: अच्छी सर,
0: बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बताइए वंदना जी, कैसी है आप?
1: मैं भी ठीक हूँ, बस मैं भी ट्राई कर रही थी कि चलो लगाती हूँ, लग जाएगा तो बात हो जाएगी।
0: वाह, क्या बात है। देखिए, जब कोशिश करते हैं ना, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है।
1: कोशिशों के पेड़ पर कामयाबी के फल लगते हैं।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: बस ये रेडियो से सीखा है अच्छा बोलना, मतलब बहुत सी चीजें, बात करने का जो वो रहता तरीका, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे तो रेडियो के माध्यम से।
0: वाकई सही बात है कि रेडियो से हम भी बहुत सीखते
1: बहुत
0: हैं और सीखे।
1: बहुत कुछ, मेरा तो इतना अच्छा सहारा है, किसी से मतलब नहीं, अपना रेडियो सुनो, बढ़िया काम करो, अपना जो वो करो, जल्दी से काम भी हो जाता और मन भी अच्छा लगा रहता।
0: रेडियो की अच्छी बात यह है कि हम सारे काम करते रहते हैं और रेडियो चलता रहता है और हम सुनते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जबकि टीवी या दूसरे मीडिया के साथ में, सोशल मीडिया के साथ समस्या ये है कि सब काम छोड़कर हम उसमें लग जाते हैं। चलिए, खैर, ये तो हो गई बात।
1: देख करके रेडियो ज्यादा बेहतर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मुझे तो गाना आप सुना दीजिए, वो छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करेगी सुने, और हमारे जो नए श्रोता हैं हम उनको एक बार नंबर फिर बता देते हैं 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करेगी सुने। अगले श्रोता
1: शिवा लोहट एमपी विदिशा से आपका जाना पहचाना श्रोता बात कर रहा हूँ सर। जब हमारी मेहनत रंग लाती है तो सुकून तो मिलता ही है सर।
0: क्या बात, इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कहाँ से सीखते हैं
1: सर जी? रेडियो ही माध्यम है और रेडियो ही साधन है हम जैसे लोगों के लिए।
0: हाँ,
1: तो बस जो भी ज्ञान मिलता है आप लोगों से ही मिलता है सर।
0: हम आप लोगों से सीखते हैं, यही हमारा सीखने का तरीका है, और हम रेडियो से भी सीखते हैं और आप लोगों से भी सीखते हैं। आकाशवाणी हम सभी के गुरु की तरह काम करती है। तो आपने कॉल किया है तो लाजमी है कि आपके दिमाग में कोई गाना होगा जिसको आप सुनना चाहते हैं।
1: सर जी मूवी का नाम है अजनबी।
0: अजनबी
1: जी।
0: तो अजनबी का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: सर टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।
0: ऐसा तो बिल्कुल हम आपको सुनवाते हैं, सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: हेलो,
1: हेलो
0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: जी सर, आदाब
0: आदाब, कौन बोल रहे हैं?
1: सर, मैं आयुष्मान मंसूरी बात कर रहा था
0: मंसूरी साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर। मैं भोपाल कोला रोड से बात कर रहा था सर। मैं
0: तो मंसूरी साहब भोपाल से कॉल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आपका बहुत दिनों के बाद में कॉल लगा है।
1: सर, मेरा कॉल हेलो फरमान से पहली बार लगा है सर, 15 साल के बाद।
0: क्या बात कर रहे हैं, 15 साल के बाद?
1: जी सर, 15 साल पहले 2005 से सर, और 2010-11 तक मैंने बहुत फोन लगाया भोपाल आकाशवाणी और FM में।
0: अच्छा, चलिए, तो अब ये तो हो गई, अपनी बात हो गई। अब ये बताइए कि आपने जब कॉल किया है तो लाजमी है कि आपके जहन में कोई गाना होगा जिसे आप सुनना चाहते होंगे।
1: सर पहले तो कह दूं सर, आपकी आवाज बहुत प्यारी है सर, और मैं सुनता हूँ आपको, कुछ दिनों सुन रहा हूँ। मैं अभी क्या बीच छोड़ दिया था मैंने,
0: जी, तो जरा
1: और
0: नवाजी
1: अब
0: के
1: सुन रहा
0: लिए,
1: हूँ सर। आपकी आवाज बहुत प्यारी है और आपका अंदाज चेक करने का बहुत अच्छा है सर।
0: जरा नवाजी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हमें आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। जब कोई हमें कॉल करता है फोन के करके और गाना सुनना चाहता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो अब आप ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे, कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगे?
1: सर मूवी का नाम है कहीं दिन कहीं रात, ने के बोल कुछ इस तरह है, तुम्हारे चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरी, है
0: तो अच्छा,
1: ना सर
0: ये
1: ऐसे?
0: हाँ, महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ है, SH बिहारी
1: जी,
0: का लिखा
1: महेंद्र
0: हुआ
1: कपूर की
0: है,
1: आवाज
0: OP
1: में।
0: नैयर का संगीत है, तो हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनिए अपने दोस्तों के साथ में,

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: जी, सुशील सेंधवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ सर।
0: देवीदास जी, क्या हालचाल हैं?
1: बढ़िया हालचाल है सर, आपके क्या हालचाल है?
0: बेहतरीन, शानदार, सदाबहार।
1: सदा खुश रहो सर।
0: अरे धन्यवाद, आपने दुआ दी इसके लिए हम आपके मशहूर हैं, हम आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने कॉल किया है तो लाजमी है कि आपके जहन में कोई गाना होगा, दिमाग में कोई गाना होगा जो आप सुनना चाहते हैं।
1: का नाम है सरगम।
0: आहा, क्या बात है, सरगम का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हम तो चले परदेश।
0: आहा, क्या बात है, बहुत ही शानदार गाना है सरगम का, हम तो चले परदेश। रफी साहब की आवाज है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: लिटरेचर बात कर रहा हूँ।
1: वाह क्या बात है। आपने मतलब यही कि जो हिंदुस्तान की तस्वीर है जिसमें सभी धर्म शामिल
0: जी,
1: हैं
0: मेरे
1: आपने।
0: गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट से श्रीभूमि, आसाम से ताल्लुकात है।
1: अच्छा आसाम से बोल रहे हैं यार, वाह क्या बात है।
0: जी, आसाम से बात कर रहा हूँ।
1: तो आपने, मेरा ख्याल है कि कई साल के बाद में आपको कॉल लगा है।
0: जी, मैंने एक भूल ही गया, मेरा एक क्या बोले, मेरा मतलब मेरा एक दोस्त ने बताया आज भोपाल में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो रिकॉर्डिंग कीजिए, तो एकदम आखिरी में मेरा फोन लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: वाह क्या बात है, आपने कॉल किया इसके लिए। हम
0: जी
1: ये
0: जी तो
1: चाहेंगे बार बार आप 15 दिन के बाद में, 8-10 दिन के बाद में फिर कॉल करें, लगातार हमारे श्रोता बने
0: जी
1: रहें।
0: जी जी तो एक बात कहूँ आपको,
1: जी
0: मुट्ठी भर की मोहब्बत
1: वाह
0: क्यों ढूंढे हम इस जमाने में, जबकि मोहब्बत का समंदर तो खुद है हमारे आशियाने में, है
1: क्या
0: ना।
1: बात है, वाह वाह वाह वाह
0: रिकॉर्डिंग कार्यक्रम दोनों अच्छा लगता है,
1: वाह क्या बात।
0: लेकिन क्या होता है मंत्राल के बाद जब हम फोन करते हैं तो बहुत बेहद पसंदीदा होता है।
1: चलिए ये तो हो गई बात, अब ये बताइए कि आप कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे।
0: जी आज गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है ये देश परदेश,
1: देश परदेश।
0: देश परदेश, देश परदेश, गाने का बोले से हे खुशियाँ यही पे मिलेंगी हो मेरे, अपना है अपना।

0: मैं जरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
1: योगेश जी, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है, अच्छे हैं।
1: बस अच्छे रहें, यही हमारी कामना है। तो योगेश जी, आपने छत्तीसगढ़ से कॉल किया है तो लाजमी आपके दिमाग में कोई गाना होगा, अच्छा बेहतरीन सा।
0: बिल्कुल भैया, हम गाना के लिए ही फोन किए हैं।
1: अच्छा बताइए, कौन सी फिल्म का है?
0: फिल्म जाबाज है, अनिल कपूर वाली।
1: हाँ,
0: उसी में एक प्यारा सा गीत है, तेरा साथ है कितना प्यारा,
1: क्या बात है,
0: कम लगता है जीवन सारा।
1: आए हाय,
0: काफी
1: क्या
0: अच्छा
1: बात,
0: गीत है।
1: तेरा साथ है कितना प्यारा, बहुत अच्छा गाना है ये। किशोर कुमार और सपना अवस्थी की आवाज़ें,
0: जी,
1: और बहुत अच्छा गाना है, लाजमी इंदीवर ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। सुनवाते हैं हम आपको ये गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में अगले श्रोता।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ श्रीमान जी, जब आपसे बात हो गई है ये आठवां कॉल होगा शायद आपके यहाँ।
0: चलिए आप फिल्म का नाम बता दीजिए मुझे जल्दी से।
1: हाँ सर जी, बात हो जाने दो क्योंकि बात करने के लिए मैं तड़प रहा था, काफी दिन हो गए सर श्रीमान जी
0: जी,
1: तो इसलिए मैं बता दूं कि पहले आप अपना नाम बता दो गुरु जी।
0: मेरा नाम जावेद खान है।
1: अरे अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब और इलू इलू। सर जी मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से हिंदुस्तानी कलाकार चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना ईडन गार्डन अशोक वाटिका से बोल रहा हूँ। श्रीमान जी आपसे बड़ी मेहरबानी होगी फोन शामिल कर लेना, नहीं तो मैं दिल टोटे टोटे हो जाएंगे श्रीमान जी।
0: नहीं आपने इलू इलू बोल दिया तो अब तो मैं आपका फोन जरूर शामिल करूंगा।
1: अगर आपसे दिल लगाया ना होता, आपसे दिल लगाया ना होता तो आप जैसे दोस्त हमने कभी पाया ना होता श्रीमान जी।
0: वाह क्या बात है।
1: मान के चलिए कि जिंदगी में जीते जीते हंसना जरूर था और आप मिल गए तो प्यार करना जरूर था श्रीमान जी। जावेद भैया आप मिल गए तो समझ लो बाहर आ गए, पूरे आकाशवाणी परिवार को दिल से नमस्कार कर रहा हूँ। मैं सतना जिले से इकलौता चांद मोहम्मद खान बोल रहा हूँ सर जी, और सदियों के बाद ऐसा लग रहा है कि सदियों के बाद मुझे नई जिंदगी मिल गई सर जी। और अब गाना भी बता रहा हूँ और थोड़ी सी भाभी जान से बात कर लो नहीं तो बेउदास हो जाएंगे श्रीमान जी।
0: बिल्कुल, फिल्म का नाम।
2: नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार, आप भी अपना नाम बता दीजिए।
2: जी भाई साहब हमारा सितारा नाम है।
0: अच्छा क्या बात है, तो चांद और सितारा मतलब घर में पूरा आसमान मौजूद है।
1: और मजनू और लैला कहते हैं गांव के लोग सर जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो ये देखिए
1: सत्य है सर, सत्य है बिल्कुल श्रीमान जी। हमारा नाम था चांद मोहम्मद, इनका सितारा खान, तो फिर मजनू कहने लगे हमें और इन्हें लैला।
0: अरे वाह क्या बात है, ये भी लकब बड़ा शानदार है, ये उपनाम जो होते हैं ये बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। चलिए अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे अब आप?
1: गजब की बात करते हैं श्रीमान जी, आप बाढ़ आ जाती है बाहर आ जाती है।
0: जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया
1: हो जाती है श्रीमान जी,
0: जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब ये बता दीजिए मुझे कौन सा गाना सुनेंगे?
1: हाँ श्रीमान जी अब गाना बता दें, हम दोनों लोग गुनगुना लेंगे सर जी। फिल्म का नाम है रोटी।
0: रोटी क्या बात है।
1: हाँ रोटी और रोजी रोटी यानी।
0: हाँ हाँ तो रोज रोटी फिल्म का कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर,
0: ये गाना है किशोर कुमार लता मंगेशकर जी।
1: में ढल जाएगा इतना ढल जाएगा।
0: बहुत अच्छा, तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं अपने रेडियो सेट पर, जरूर सुनिएगा।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद होगा।
1: न सनसनी न सनसनी न सनसनी न उत्तेजना न उत्तेजना न शोर दिन रात न शोर दिन रात न शोर न ही अहंकार केवल मनोरंजन ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: Kajwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भील दशहरा मैदान भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश को दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच लैब से जुड़ी कई सौगातें मिलेंगी। कार्यक्रम में 11 जिलों के 35,000 से ज्यादा गौपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक कुल 64,644 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। इनके खातों में 440 करोड़ 40 लाख से अधिक की राशि सब्सिडी के रूप में जमा कराई जा चुकी है। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जाएगा। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत जारी गतिविधियों की कड़ी में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु, 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा और 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेलों में आज जापान में भारतीय मिश्रित कंपाउंड पुरुष तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 8 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 54 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 दिवसीय पुरुष क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बारासपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं वक्त फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है मन्ना डे ने, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना, संगीत है रवि का। पसंद आप सब श्रोताओं की। डबरी पारा से ये पत्र हमें मिला है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र, गजेंद्र और जयंती मरकाम का। बिजनौर से पत्र लिख भेजा है हमें वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू और साजदा रानी के साथ हिना कौसर ने। तो आइए सुनते हैं वक्त फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है रवि का। पसंद आप सब श्रोताओं की संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया का पत्र हमें मिला है घंटा घर चौक खंडवा से। इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोताओं ने भी। ये हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और पिपरिया से पत्र हमें मिला है दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू और इनके परिवार के सदस्यों का। इसी गीत को पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ के श्रोताओं ने। पंजाब से ये पत्र भेजा है हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जय तेग बिरक और मीका बिरक ने। एक और पत्र हमें दिखाई दे रहा है, ये पत्र लिखने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो हैं भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ और परी के साथ रंजना ललिता नारायण खर्चे ने ये गीत सुनना चाहा है। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर आंखें फिल्म का ये नगमा।

0: रात कभी कभी।
1: और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आंधी फिल्म का वो नगमा, जिसे लिखा है गुलजार ने, तर्ज बनाई है आरडी बर्मन ने, पसंद आप सब श्रोताओं की है। भाटापारा दतरिंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बठेना से पत्र लिख भेजा है हमें बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और रेखा धनेश्वरी वर्मा ने। सारा गांव से पत्र मिला है हमें सुजान वर्मा और सुहाद्रा वर्मा का, इनका साथ दिया है आयुषी और कृत वर्मा ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से पत्र लिख भेजा है हमें शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज ने, इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। थाना रोड बक्सर के श्रोता भी, ये हैं जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता, इसी गीत को बुरहानपुर के श्रोता भी सुनना चाहते हैं। ये हैं मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन तैमूर और रीना के साथ रोजूबाई और सनी बाबू और समस्त तड़वी परिवार। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर आंधी फिल्म का ये नगमा।

और अब आपको सुनवा रहे हैं आया सावन झूम के, इस फिल्म का नगमा आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये नगमा है, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। आस्था रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोताओं ने हमें पत्र लिख भेजा है। आप हैं अभिजीत गवाड़कर राही, सरिता गवाड़कर, प्रिंस, एकांश और इनके परिवार के सदस्य। बदलापुर मुंबई के श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुकटुक और श्वेता सुमित गवाड़कर। बहादुरा नागपुर के श्रोताओं ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। ये हैं वैशाली शैलेश गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर और इनके परिवार के सभी सदस्य। गोला बाजार बक्सर के श्रोता भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता, संजना और इनके परिवार के सभी सदस्य। छाबड़ा राजस्थान के श्रोताओं ने हाथ से लिखा हुआ

बड़ा ही खूबसूरत पत्र हमें भेजा है। पत्र में इन्होंने सितारे भी चिपकाए हैं। और आपको बता दें, पसंद करने वाले श्रोता हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो। तो आपकी सबकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनवा रहे हैं अजनबी फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है अदनान सामी और सुनिधि चौहान ने। समीर के बोल हैं अनु मलिक का संगीत। पसंद आप सब श्रोताओं की है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा और विपिन गुप्ता, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके परिवार के सदस्य भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित इसी गीत के लिए पत्र लिख रहे हैं और फरमाइश पूरी करवाना चाहते हैं। गौरीनगर इंदौर के श्रोता भी इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। ये हैं गौरीनगर इंदौर के आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। डबरीपारा छत्तीसगढ़ के श्रोताओं का भी पत्र हमें मिला है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह और इनके परिवार के सदस्य।

अजनबी फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद होगा।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ, मनोरंजन समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति।

0: कन्फ्यूशियस की, गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की, सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की।
1: दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां साधु संत और महापुरुषों ने जन्म न लिया हो। समाज के सामाजिक विनियमन और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए धरती पर इनका अवतरित होना उसी की तरह अनिवार्य है जिस तरह जीवन के लिए प्रकाश, हवा और पानी।
2: व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में परिष्कार एवं परिमार्जन की प्रक्रिया को सतत जारी रखने के लिए साधु संतों की शीतल छांव की सदैव आवश्यकता रहती है।
1: ईश्वरीय शक्तियों को धारण करने वालों में साधु संत जहां एक ओर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को उसका सही लक्ष्य बताते हैं, वहीं दूसरी ओर उस लक्ष्य तक पहुंचाने का पर्याप्त ज्ञान तथा बल भी प्रदान करते हैं।
2: इनके साथ अथवा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं रहता, फलतः वो दूसरों के हितों के संवर्धन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके सामने जाति पात और अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं रहता।
1: साधु अपनी ग्रहण की हुई अक्षय निधि में से दूसरों को प्रदान करता है। राजनीतिज्ञ का अहम उसके आडंबर में से आंकता है और

0: साहित्यकार जलते दीप में से प्रकट होने वाले काजल की तरह अहम मन्यता तक जाता है, लेकिन साधक का साधु का अहम साधना में विलीन हो जाने में व्यक्त होता है।
1: कभी कभी कवि के मुख से साधु अथवा साधक की इसी अप्रतिम महिमा का लक्ष्य करते हुए ऐसी भी वाणी निकल पड़ती है, आबरूली कलम उठाने ने, लाए की जान ली जमाने ने, थी खामोशी बयान से अच्छी, बात खोदी जबां हिलाने ने।
0: महात्मा साधु की अतुलित महिमा को किसी एक साधुवर में चरितार्थ होता देखना हो तो चीन में पैदा हुए संत श्रेष्ठ कन्फ्यूशियस में सहज ही देखी जा सकती है।
1: आइए इन्हीं कन्फ्यूशियस से संबंधित एक कहानी सुने और जाने कि इस युग संत ने समय के श्वेत पृष्ठ पर अपने कृतित्व की कैसी और कितनी अमिट छाप छोड़ी है।
0: संत कन्फ्यूशियस के अंतर को ठीक ठीक जानने समझने के पूर्व उनके बाह्य स्वरूप से साक्षात्कार कर लेना उपयोगी होगा।
1: उनका बाह्य स्वरूप अधिक भव्य और आकर्षक नहीं था।
0: लोग उन्हें जो खाने को देते वे खा लेते, जो पहनने को देते पहन लेते।
1: वो सबके लिए सम्मानीय थे,
0: वो सभी के लिए पूजनीय और अनुकरणीय थे।
1: गरीबी तथा अमीरी की इसी मानवीय धारणा की रेखाओं को मिटा डालने के लिए कन्फ्यूशियस घूमते रहते थे। वो उनकी जीभ थे, जिन्हें देश में बोलना नहीं आता था या जो बोलने का साहस नहीं कर पाते थे।
0: वो उनकी भुजा थे, जो या तो उठना नहीं जानती थी या उठने पर किसी युग का भाग्य नहीं लिख सकते थे।
1: संत कन्फ्यूशियस जहां भी ग्राम्यांचल में पहुंचते थे, लोग जय जयकार करते हुए उनके दर्शन पाने को दौड़ पड़ते।
2: महान संत कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: महान संत कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
3: जय।
4: अरे गांव वालों, सब अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक पद पर एकत्रित हो जाना। अरे भाई, क्योंकि महान संत कन्फ्यूशियस कल हमारे गांव पधार रहे हैं।
5: अरे वाह,
6: अच्छी बात है।
7: अरे क्या कह रहे हो धनिया भाई, संत कन्फ्यूशियस हमारे गांव पधार रहे हैं?
4: हाँ भैया हीरा, ये बात सच है, वो कल हमारे गांव आ रहे हैं।
7: भैया तब तो पहले हम उन्हें अपने गरीबों की बस्ती में लाएंगे।
4: हाँ,
7: वे हमारे गरीब परवर हैं, उनके मन में हम गरीबों के प्रति अपार प्रेम और संवेदनाएं हैं। ठीक है ना मित्र बंसी?
4: हाँ ठीक है, बिल्कुल।
8: हाँ सच कहा तो हीरा भैया, वे बड़े कृपालु हैं, उनकी झोली में हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। देखो अब वे हमारे गाँव की सीमा से कुछ ही दूर है, तुम तो देख कर आए हो ना भैया गेंदा?
9: हाँ हाँ भैया, मैंने देखा है, उनके साथ बहुत से लोग हैं।
8: अच्छा।
9: कल तुम सभी लोग सार्वजनिक पद पर पहुंच जाना।
4: हाँ,
9: समझे?
4: हाँ, भैया देर मत करना, ऐसा सो अवसर जाने ना पाए फिर।
9: हाँ।
7: अरे कल को हमको अपने सारे पुण्यों का प्रतिफल मिलने वाला है भैया।
9: हाँ।
8: हमारे गांव की माटी का कण कण पवित्र हो जाएगा।
9: हाँ, हाँ।
8: हमारे भाग्य जाग उठेंगे भैया।
4: हाँ, जाग उठेंगे, भाग जाग उठेंगे भैया।
1: संत के आने का समाचार गांव के लोगों को बहुत उत्साहित कर रहा था। गांव के पुरुषों के साथ स्त्रियां भी उनके आगमन को लेकर भाव विभोर हो रही थीं।
0: आधी रात हो चली थी, परंतु गांव वालों की आंखों में

0: ठीक कहा है जमुना जी जी, वो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए उन्हें गरीबों की बस्ती में आना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, और क्या।
2: हाँ, मैंने तो उन्हें पहनाने के लिए माला भी बनाई है।
1: अच्छा।
3: हाँ हाँ मुलिया बहन, हम सभी ने मालाएं बनाई हैं।
1: हाँ। अरे हम इन मालाओं को अपने पति को देंगी।
2: बिल्कुल।
1: और वो संत जी को गांव में प्रवेश करते ही पहनाएंगे। हाँ।
0: ए जसोदा बहन, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमने आज अपने घरों को गोबर से लीप पोत के साफ किया है।
2: गलती हो गई रज्जो दीदी। हम सब तो रोज ही घरों को, चौबारों को गोबर से साफ करते हैं और खुद ही करते हैं, पर कोई कहता नहीं है। रज्जो दीदी, ये अमीर लोग ही हैं जो अपनी बस्ती को आज ही साफ सुथरा कर रहे हैं।
1: अरे मुनिया बहन, संत जी तो अंतर्यामी हैं। हाँ। और वो सब समझ जाएंगे कि कौन मन से सम्मान कर रहा है और कौन दिखावा।
2: बिल्कुल ठीक कह रही हो।
0: जमुना जी जी, हम तो उनका हृदय से स्वागत करेंगे।
1: हाँ
3: हाँ रज्जो दीदी, इतने बड़े संत हैं, पर सुना है वो बहुत सीधे साधे तरीके से रहते हैं।
1: हाँ।
3: अगर कोई परिचय नहीं दे तो कोई पहचाने ही नहीं।
1: क्या ये गलत सुना है तुमने? अरे हमने तो सुना है संत कन्फ्यूशियस के श्रीमुख पर दिव्य तेज का आभा मंडल है।
0: हाँ?
1: और जो उन्हें देखता है वो अलौकिक संसार में खो जाता है।
2: अच्छा, तो ऐसे महात्मा के दर्शन करके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
1: सच, हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा।
3: हाँ जी जी, हमने पिछले जन्म में जरूर पुण्य किए होंगे जो हमें ये सु अवसर मिल रहा है कि हम संत श्री के दर्शन करने जा रहे हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: मैं तो उनकी चरण धूली माथे पर लगाऊंगी।
3: हाँ।
1: रज्जो दीदी, वो किसी को पैर नहीं छूने देते।
0: क्या?
1: पता है, वो कहते हैं सभी व्यक्ति परम पिता परमात्मा की संतान है।
0: अच्छा?
1: तो कोई क्यों किसी के पैर छुए।
3: अच्छा,
0: कितने अच्छे विचार हैं।
1: हाँ,
0: अरे तभी तो सभी उनकी जय जयकार करते हैं।
1: हाँ।
4: संत नियत समय गांव पहुंचते हैं।
5: श्रीमान, मैं ग्राम सेठ हूं, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हमारे अहो भाग्य कि चीन के महान फकीर हमारे गांव का पुण्य बढ़ाने पधार रहे हैं। मेरी प्रार्थना है महात्मा कि पहले आप धनिकों की बस्ती में पधारें। हम लोग आपका स्वागत करने के लिए हर प्रकार से समर्थ हैं। आप जैसा चाहेंगे हम आपका वैसा सम्मान करेंगे। हम धनिक लोग फकीरों के खास मुरीद हैं महाराज। गांव के गरीब बस्ती के लोग भी एकत्र हो चुके हैं, आप बाद में उनके यहाँ चले जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
6: गरीब बस्ती के पुरुष और स्त्रियां, वो लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। वो लोग संत कन्फ्यूशियस की जय जयकार के नारे लगाते हैं।
7: कन्फ्यूशियस की
8: जय,
7: महान संत कन्फ्यूशियस की
8: जय,
7: गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की
8: जय,
7: गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की
8: जय,
7: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
8: जय,
7: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
8: जय,
7: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
8: जय।
9: आइए, हम गरीबों की बस्ती में पधारिए महाराज।
10: हाँ हाँ महाराज,
1: सारी बस्ती आपके दर्शन के लिए एकत्र है, बड़ा उत्साह है हम सब लोगों में।
9: हाँ
2: हाँ, हाँ महाराज,
11: कई वर्षों की प्रार्थना के बाद आप यहाँ पधारे हैं महाराज।
10: हाँ महाराज।
0: महात्मा, हर व्यक्ति आज आपके दर्शनों से अपनी पूरी प्यास बुझा लेना चाहता है।
11: आपका एक एक पल हमारे लिए मूल्यवान है महाराज, अब तनिक भी देर ना कीजिए, आइए पधारिए महाराज,
1: पधारिए महाराज। स्त्री पुरुष बच्चे सब आपके दर्शन के वास्ते उतावले हो रहे हैं, चलिए महाराज।
2: हाँ हाँ महाराज।
12: महाराज, हम गांव के मुखिया हैं महाराज, आपकी अगवानी करते हैं, पधारिए महाराज।
3: हाँ पधारिए महात्मा, पधारिए। हाँ, आपका स्वागत है।
2: स्वागत
5: नहीं महाराज, पहले आपको धनिकों की बस्ती में चलना होगा। मैंने वहाँ के लिए आपको पहले ही आमंत्रित किया है। वैसे भी हमारी समाज व्यवस्था में इन गरीबों की तुलना में हमारा स्थान ऊंचा है। राज दरबार और शासन व्यवस्था में भी

0: हमारा औहदा काफी ऊंचा माना गया है।
1: संत जी, ये नगर सेठ आपको गलत बता रहे हैं।
2: नगर सेठ के वचन ठीक नहीं है महात्मा।
3: गरीबों को सदाई संतों महात्माओं ने आश्रय दिया है महाराज।
4: हमारी संत श्री से प्रार्थना है कि आप नगर सेठ की बात पर ध्यान दिए बिना हमारी बस्ती में पधारने का कष्ट करें महाराज।
5: अरे ये संत के दर्शन लाभ के मामले में गरीब अमीर की पाखंड लीला कहाँ से आ गई ग्राम से?
1: ठीक कहते हो भैया।
6: सेठ जी, संत श्रेष्ठ को तो इस संसारी कीचड़ से मुक्त रखिए।
4: हाँ महाराज।
0: हाँ, जिस तरह भगवान के दर्शन गरीब और अमीर सबको समान रूप से मिलते हैं, उसी प्रकार संत श्रेष्ठ के दर्शन के मामले भी संसारी भेदभाव का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए।
4: महाराज,
7: संत श्री महान हैं, वो जानते हैं कि गरीबों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है। जो उनके मन में होता है वही देखता है।
0: संत श्री, तुम लोगों की बस्ती के बाद हमारी बस्ती में पधारेंगे तो ये हमें अपना अपमान सा महसूस होगा। जो व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही है वही चले, मैं तो यही चाहता हूँ।
8: ये व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
9: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भक्त जनों, मैंने तुम सबकी बातें ठीक से सुन ली हैं। सत्य तो यह है कि ईश्वर ने गरीबी तथा अमीरी की इस मानवीय धारणा की रेखाओं को मिटाने के लिए ही मुझे इस संसार में मानव रूप में भेजा है। मैं ईश्वर के निर्देशानुसार गांव गांव पैदल घूम घूम कर उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए कृत संकल्प हूँ। मैं गरीबी और अमीरी के भेदभाव को और बाहर और भीतर दोनों धरातलों से मिटाने के अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ। मैं कतई नहीं मानता कि धनिकों और गरीबों की दो अलग अलग दुनिया होती है। मैं तो एक ही दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करता हूँ और वो है इंसानी दुनिया।
1: महाराज की
8: जय हो!
1: महाराज की
8: जय हो!
1: महाराज की
8: जय हो!
0: तो क्या हमारे अमीरों की बस्ती के लोग आज आपके पावन दर्शन से वंचित रह जाएंगे महाराज?
5: क्या महाराज, गरीबों की बस्ती के लोग भी आपके दर्शन से वंचित रह जाएंगे?
4: महाराज,
9: कोई भी सच्चा साधु संत अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। मैं भी आज तुम सबको निराश नहीं करूंगा। भक्त जनों, तुम ऐसा करो, गांव के सभी लोगों को एक साथ इसी स्थल पर बुलवा लो। यह स्थल ना तो धनिकों की बस्ती का हिस्सा है और ना ही गरीबों की बस्ती का। और हाँ, भविष्य में मैं इस गांव में तभी पैर रखूंगा जब आप लोग गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर स्वयं को केवल इंसान मानने लगोगे।
10: महान संत कन्फ्यूशियस की महान संत कन्फ्यूशियस की गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की।
11: कन्फ्यूशियस का काल ईसा के 511 वर्ष पहले माना जाता है। उस समय के जगत के शास्त्रों ने एशिया में और जगत में चाहे जो कहा हो, जगत के इतिहास ने इतिहास ग्रंथों के रूप में आँख ही खोली थी। कहते हैं वे ईसा के 478 वर्ष पहले तक जीवित रहे, यानी कि वे भारत के स्वामी राम तीर्थ की तरह बहुत थोड़े दिन रहे, लगभग 33 वर्ष।
12: कन्फ्यूशियस अपने युग के धर्मवक्ता और सामंत दोनों थे।
11: जिस समय वे चीन देश के सत्ताधारी कहलाए, तब उन्होंने देश में कथनी और करनी को ऐसे ऊंचे तरीके से गूंथ दिया कि चीन में उस समय के शासन को खोजने पर एक भी गुनहगार का मिलना कठिन हो गया था। जब गुनाह होते ही नहीं तो गुनहगार आखिर मिलता भी कहां से?
12: जेलें उस समय केवल खाली खाली रहने वाले मकान बनकर रह गई थीं। जेलों के सींचे निकम्मे लोह दंड मात्र रह गए थे। संत कन्फ्यूशियस की लोक कल्याणकारी पदयात्राएं बिना रुके बिना थके ग्रामांचलों और शहरी क्षेत्रों में सतत चलती रहती थीं। शिष्यों की टोली

0: सदा उनके साथ रहती थी।
1: एक दिन संत कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को लेकर पैदल ही जंगल में चले जा रहे थे। काफी दूरी पर स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। इस कारुणिक आर्तनाद पर संत के शिष्य आनंद और प्रभात आश्चर्य से कहते हैं,
2: महात्मन, अचानक आपके पैर थम क्यों गए? क्या पैरों में किसी प्रकार की पीड़ा है?
3: तुम ठीक कहते हो भ्राता आनंद, संत श्री के चरण अकारण ही नहीं थमे हैं।
4: नहीं, कोई पीड़ा नहीं है प्रिय आनंद।
2: गुरुजी।
4: प्रिय प्रभात।
2: गुरुदेव।
4: तुम लोग रुको मत, आगे बढ़ो।
2: फिर भी गुरुजी, यूं आपका यकायक सचेष्ट चौकन्ना और संवेदनशील हो उठना बिना प्रयोजन के तो नहीं हो सकता। मैं आपका सबसे पुराना शिष्य हूँ, आपके अव्यक्त भावों के अर्थ को कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेने की क्षमता अब मुझ में आ गई है।
3: गुरुदेव, कृपया कारण स्पष्ट करने का कष्ट करें।
4: शिष्य प्रभात, शिष्य आनंद,
2: गुरुजी,
4: जरा ध्यान लगाकर सुनो। पश्चिम दिशा की ओर से किसी नारी के विलाप करने की ध्वनि आ रही है।
2: हाँ श्रीमान, कोई दुखियारी स्त्री उधर रो रही है।
3: गुरुदेव, हम इस आवास की दिशा में जाकर वस्तु स्थिति क्या है वो मालूम कर आपको उससे शीघ्र अवगत कराते हैं। आज्ञा हो तो जाएं गुरुदेव।
4: हाँ, कोई स्त्री संकट में है, हम सब उसके पास चलते हैं। हो सकता है हमें तत्काल उसकी मदद में संबद्ध होना पड़े। चलो, जल्दी चलो।
0: नारी अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी असहायता के प्रति, उस पर हुए अत्याचार के प्रति जब अपने को व्यक्त करने लगती है तो बरबस रो पड़ती है।
1: रुदन तो एक संदेश है, बच्चों का भी, जवानों का भी, बूढ़ों का भी, नर का भी, नारी का भी।
2: लीजिए गुरुजी, हम लोग पहाड़ की तलेटी में उस झोपड़ी तक पहुंच गए हैं। वहां वो स्त्री रो रही है गुरुजी।
3: आइए गुरुदेव, झोपड़ी के द्वार पर चलते हैं।
4: बेटी, हम तुम्हारे मददगार हैं, तुम्हारे दुख से दुखी हैं। यदि छुपाने योग्य ना हो और तुम बता सको तो बताओ कि तुम इतनी देर से और यूं हबस हबस कर क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे ऊपर कौन सी बड़ी आपदा आन पड़ी है? निसंकोच होकर बताओ बेटी।
5: क्या बताऊं बाबा, मेरा सुहाग लुट गया है, झोपड़ी खाली हो गई है, अब मैं अकेली हूँ बाबा, और साथ में है केवल मेरी जवानी। हम दोनों का जो मालिक था वो सदा के लिए हम दोनों के जीवन से चला गया है महाराज। मुझ गरीब पर तो आफत के कई पहाड़ गिर पड़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं।
4: बेटी, तुम जवानी को अपने से अलग क्यों मान रही हो?
5: बाबा, जब ये बदनसीब जोर से चढ़ती है ना, तब औरत से अलग हो जाती है और अपनी अलग सुहानी दुनिया गढ़ लेती है। उसको मिलने वाले अभिशाप तो अभिशाप है ही, वरदान भी अभिशाप बनकर जहरीले सांप की तरह पल पल उसको टसने लगती है बाबा। औरत तब अपनी ही जवानी के सामने बेबस हो जाती है, बेबस।
3: इसका क्या अर्थ है बेटी?
2: और तब अपनी ही जवानी के सामने बेबस हो जाती है, अर्थात?
5: अर्थात क्या, जो जुल्म करता है वो तो जुल्मी है ही, किंतु जो आशिक होता है वो भी उसी के लिए जुल्मी ही सिद्ध होता है। माँ बनने वाली अपने आनंद का कष्ट खुद ही उठाती है, और आनंद छूट जाए तो रोती है ना बाबा।
4: बेटी, तुम्हारी सिसकियां अभी भी नहीं मिट रही हैं। बताओ, तुम्हारा सुहाग कैसे लुट गया?
5: मेरे जवान पति को शेर खा गया बाबा।
3: ओ, बेटी, इसका मतलब ये हुआ कि घर को चलाने का सारा भार अब तुम्हारे ससुर पर आ गया है।
5: नहीं बाबा, बताते हैं कि उन्हें तो बरसों पहले शेर खा गया। मुझे मेरे मंगेतर ने उपहार के रूप में सबसे पहले यही खबर दी थी। हमारी गृहस्थी का श्री गणेश ही बर्बादी की अमंगल सूचना से हुआ था बाबा।
2: बेटी, ये तो और भी बुरा हुआ। यही तो नियति का खेल है। उसके उस खेल के नियम वही जानता है।
3: तुम्हारे पास वो जमीन जायदाद तो होगी ही, जो तुम्हारे ससुर ने और तुम्हारे पिता ने कमाकर बनाई होगी।
5: ससुर एक खेतीहर मजदूर थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। जमीन जायदाद बनाना तो उनके लिए जिंदगी भर बस एक सपना ही बनी रही। और मेरे पिताजी के पास भी कोई ऐसी जमीन जायदाद नहीं थी बाबा। लोग कहते हैं जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरे पिताजी को भी जंगल में शेर कहा गया था।
4: वर्तमान से इतिहास तक सबको शेर खा गया। क्या इस जंगल में इतने शेर हो गए कि मनुष्य का यहाँ रहना सर्वथा असुरक्षित हो गया है?
5: हाँ पापा, यहाँ इंसान और शेर के बीच झड़प तो होती ही रहती है, और वो होती ही है, क्योंकि वो पुरुष ही क्या जिसकी खतरों से झड़प ना हो। मेरे पति और शेर की भी ऐसी ही एक झड़प हुई थी। मेरा पति भी शेर से कम बहादुर नहीं था। उसने शेर का खूब सामना किया, लेकिन शेर तो ठहरा शेर, जीत गया और मेरे पति को खा गया। वो झड़प आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है।
4: बेटी बेटी, विलाप ना करो। तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, यूं रोना बंद करो और मेरी एक बात का जवाब दो कि यदि यह जंगल इतना भयानक है तो तुम किसी नजदीक के गांव या शहर में जाकर सुरक्षित जीवन जियो। इस तरह बार बार शेर का निवाला बनने में कोई समझदारी नहीं है बेटी।
5: नहीं बाबा, हम न किसी गांव जाएंगे न किसी शहर। तीन पीढ़ियां तो क्या, 100 पीढ़ियों को भी शेर खा जाए ना, तो भी हम ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। हम इन वृक्षों, इन बेलों, इन नदियों, इन सरोवरों को दगा नहीं देंगे बाबा। इनके साथ हमारा जन जन्मांतर का अटूट रिश्ता है। ये रिश्ता सूत के कच्चे धागों सा नहीं, हृदय के मजबूत धागों से बंधा हुआ है। सदियां गुजर गई, लेकिन प्रकृति के साथ हमारा विश्वास का ये रिश्ता न टूटा है और न भविष्य में कभी टूटेगा।
0: साधु कन्फ्यूशियस, उनका शिष्य मंडल और आसपास के वृक्ष उस तरुण वनवासिनी के चेहरे पर उभर आए दृढ़ता के प्रखर भावों को देखकर अचंभित भी थे और आनंदित भी।
1: वे ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अपने पति की अकाल मृत्यु पर सिसक सिसक कर लगातार रोने वाली स्त्री में ये चट्टान सी दृढ़ता और हिमालय सी प्रतिज्ञा कहां से आ गई।
5: बड़ा उपकार किया आपने यहाँ आकर बाबा। आपके आगमन से कमजोर पड़ता मेरा विश्वास पुनः जाग उठा है। मेरा आपसे वादा है कि शेर फिर गांव में आया तो उसकी अगली झड़प मुझसे होगी।
2: जय हो देवी, जय हो। तुम तो साक्षात शक्ति की

0: अवतार हो।
1: देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी भावनाओं की जय हो।
2: विश्व के यही मानव मानवी है जिनके लिए वृक्ष हरे भरे और फूले फले हैं। यह प्रकृति और ऐसे नरनारी केवल हमारे आशीर्वाद की अभिलाषी नहीं है, ये तो हमारे प्रणाम के पात्र हैं।

0: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। डीजे सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान उज्जैन और भोपाल सहित प्रदेश को दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच लैब से जुड़ी कई सौगातें मिलेंगी। इस कार्यक्रम में 11 जिलों के 35,000 से ज़्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत शहरी स्वच्छता, सैनिटेशन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में देश के चयनित 50 शहरों को मॉडल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत शुरू की गई प्रगति 50 पहल में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को शामिल किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 अक्टूबर से सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया जाएगा। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, पौधरोपण सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत जारी गतिविधियों की कड़ी में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु, 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति कलश यात्रा और 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर बना हुआ है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।
2: सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम महिला सभा में। स्वीकार कीजिए वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हिंदू धर्म में दिवंगत पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने की एक महत्वपूर्ण अवधि है जिसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। भादो की पूर्णमासी से क्वार की अमावस्या तक 16 दिन का ये विशेष समय माना जाता है। श्राद्ध शब्द ही हमारी श्रद्धा से जुड़ा है। इन 16 तिथियों में हम हमारे उन प्रिय जनों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दान, पुण्य, तर्पण आदि विभिन्न विधियों के माध्यम से उन आत्माओं को तृप्त करने का प्रयास किया जाता है जो भौतिक शरीर को छोड़कर जा चुकी हैं। या कह सकते हैं कि ये एक सांकेतिक तरीका है आभार व्यक्त करने का, अपने पूर्वजों का और अपने माता पिता का। यूं तो उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते, बस कुछ विधियों द्वारा हम प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। किसी को जरूरत की कोई चीज प्रदान करके भी

उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। पंच बलि भोग श्राद्ध पक्ष की एक जरूरी विधि है, जिसमें पूरी साफ सफाई से शुद्ध सात्विक भोजन पकाया जाता है, फिर पांच जगह थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है। गाय को, चींटी को, कौवे को और कुत्ते को खिलाया जाता है। इसके साथ ही एक भाग देवताओं को अर्पित किया जाता है। इससे हमारा विश्वास और मजबूत होता है कि हर जीव में, हर आत्मा में परमात्मा का ही वास है। सखियों, ये सही है कि किसी को भोजन कराना पुण्य कार्य है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आयोजनों में जरूरत से अधिक भोजन सामग्री पकाई जाती है और जब वो बच जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। यानी हम कितना अन्न बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, ऐसा करके क्या हम पाप के भागी नहीं बन रहे? सखियों, आस्था और कृतज्ञता के श्राद्ध पक्ष में दिखावे से बचने की कोशिश करें। साथ ही हमारा प्रयास हो कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। यकीनन हमारे पूर्वज भी हमसे तभी खुश रहेंगे जब हम नेक कार्य करते रहेंगे। अपनी हर सफलता के लिए उन्हें धन्यवाद करेंगे, उनके त्याग और समर्पण को याद रखेंगे। हमारे ईश्वर तुल्य पूर्वजों को हमारा शत शत नमन।

0: बहनों, हर साल आज के दिन यानी 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अनुवाद वो माध्यम है जिससे हम उन दूसरी भाषाओं का साहित्य भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी आज अनुवाद क्षेत्र, प्रांत, राष्ट्र की सरहदों से आगे जाकर जन जन को जोड़ने का सशक्त माध्यम बन चुका है। बहनों, आज हम आपको सुनवाते हैं हिंदी कहानी दाल का तड़का। कहानीकार है डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी।
1: मैं पदोन्नति के बाद एक छोटे से कस्बे में जा पहुंचा था, जहां हिंदी फिल्मों वाला कस्बे का परिवेश मेल नहीं खाता था। ना वहां अपनी पायलों की झनकार बजाती गांव की गोरियां थी और ना ही बहुचर्चित फिल्म शोले के जैसे रसूख वाले कोई ठाकुर साहब थे। लेकिन हाँ, इतना अवश्य था कि एक छोटा सा बस स्टैंड और दो चार चाय समोसे बेचने वाले होटल थे, कुछ पान ठेले भी थे। मैं वहाँ हाल ही में उन्नत हायर सेकेंडरी विद्यालय का प्राचार्य बनकर पहुँचा था। उस छोटे से कस्बे में विद्यालय की नवनिर्मित इमारत ठीक वैसे ही सुशोभित हो रही थी जैसे घने अंधेरे में चमकता चांद। विद्यालय का समस्त स्टाफ राज्य परिवहन की बस के साथ ही आता और बस के साथ ही लौट जाता। यह बात मेरी समझ से परे थी कि एकमात्र बस सर्विस की सेटिंग स्टाफ के साथ थी अथवा स्टाफ ही बस के आवक जावक से सेट हो गया था। मेरी मजबूरी थी, मुझे कस्बे में ही अभिन्न अंग बनकर रहना था, जिसका मुख्य कारण मेरे परिवार से लगभग

200 किलोमीटर की दूरी थी। कस्बे में पहुंचते ही दावानल की तरह खबर फैल गई थी कि प्रिंसिपल सर आ गए। विगत कई वर्षों से विद्यालय दत्तक पुत्रों यानी प्रभारियों के सहारे ही फल फूल रहा था। संभवतः इसीलिए मेरी पूछ परख कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंतित कोई था तो निश्चित ही मेरा विद्यालय परिवार। उन्होंने घंटे भर में ही एक रिटायर्ड फौजी के घर में मेरे रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी। एक छोटे से गांव में 2-4 ही पक्के मकान थे और वो भी माइनवर्टर थे। अब सबसे मिलने के बाद मेरी मुलाकात अपने मकान मालिक से हुई। वो हर समय अपनी दुनानी राइफल रखने में अपनी शान समझते और अपनी गौरव गाथाओं के अंतहीन किस्से गाहे बगाहे सभी को सुनाया करते। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती जब रात में दिन का कोलाहल सो जाता और रात का सन्नाटा जाग जाता, तब खुली छत पर देर रात तक मुझ एकमात्र श्रोता को वो सारे वीरता के किस्से सुनने ही पड़ते। इन्हीं किस्सों में एक किस्सा उनकी धर्मपत्नी का भी होता, विशेषकर जब हम खाना खाने बैठते। वो अपनी पत्नी की पाक कला के जबरदस्त प्रशंसक थे। वास्तव में चूल्हे की मद्दी माच में जब करारी रोटियों पे घर से बने घी में डुबो कर परोसा जाता तो पल भर के लिए मैं अपने परिवार से दूर रहने का असह्य दुख भी भूल जाता। उस दिन भी दोपहर का समय था और विद्यालय में निरीक्षण पर संभागीय मुख्यालय से 2 अधिकारी भी आ गए। मैंने संकोच करते हुए मकान मालिक से पूछवाया, क्या हमारे अधिकारियों के लिए भोजन का प्रबंध हो पाएगा? मैंने केवल जानना चाहा था, लेकिन वह इतने आनंदित हो गए कि स्वयं विद्यालय आविराजे और मुझे एकांत में बुलाकर भोजन का मीनू भी बयां कर दिया। आप कतई ना संकोच करो, आज ही घर में मत के मक्खन निकाला है और खेतों से हरी मटर भी टूट कर आई है। आज हमारे घर की तड़के वाली दाल आलू मटर की तरकारी संग जब साहब लोग देसी घी लगी रोटियां खाएंगे तब देखियो साहब कैसो आनंद आएगो। उन्होंने पुनश्च जोड़ा, साहब हमारी बिन्नू की माँ का दाल का तड़का जब भी लगता है तो पड़ोस तक उसके हींग जीरे की बघार की खुशबू फैल जाती है। उस दिन वास्तव में भाभी जी ने अपने सादगीपूर्ण आतिथ्य सत्कार से सभी का मन जीत लिया था। महानगर में रहने वाले लोगों के लिए यह सात्विक भोजन किसी 56 भोग से कम नहीं था। भाभी जी अपने लंबे घूंघट की आड़ से ही अपने नौकर द्वारा भोजन परोसवा रही थी। आज हमारे फौजी भाई साहब भी प्रसन्नता से भोजन करवाने में महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे। सहसा हमारे रिटायर्ड फौजी साहब का हाथ एकाएक अपनी दुनानी बंदूक पर चला गया था और उन्होंने हमारे सामने ही रोष में पूछा था, काय बिन्नू की माँ, आज दाल में तड़का नहीं लगाया क्या? अंदर से आवाज आई, हमने तो लगाया है तड़का जी, आप खुद ही देख लो। नहीं नहीं, ये तड़का वैसा नहीं है जैसा बिन्नू की माँ तुम लगाया करती थी। मैंने बचाव करते कुछ कहना चाहा था, बल्कि मेरे दोनों अधिकारी भी जो इस सात्विक भोजन से आकंड तृप्त हो चले थे, उन्होंने भी कहा, फौजी भाई सचमुच भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। लेकिन वह अब अपनी मर्यादा का बंधन तोड़ सीधे रसोई घर में जा पहुंचा। दाल का निरीक्षण परीक्षण किया, उसमें तड़का होने का स्पष्ट प्रमाण था। लेकिन उसने आखिरकार ढूंढ ही लिया कि तड़के वाली दाल में किस तत्व की कमी थी। पत्नी ने अस्फुट स्वरों में कहा, हाँ जी, घर में जीरा बहुत थोड़ा सा था, हमने जितना भी था वो सब डाल दिया था जब दाल में तड़का लगाया। अब तो हमारे ही सामने वो किसी फनफनाते नाक की तरह घर से निकल गया और यह भी शंखनाद कर गया, अब घर में तब्बे रोटी खाएंगे जब जीरा लेकर आएंगे। मनपसंद भोजन की दीवानगी की मैंने कहानियां तो बहुत सुनी थी, लेकिन आतिथ्य सत्कार के सर्वस्व त्याग की कहानियां भी आज इस प्रसंग के आगे फीकी पड़ गई थी। मैं इस तरह का वाक्या पहली बार चश्मदीद गवाह बनकर देख रहा था। अंदर से पत्नी का हृदय ग्राही विलाप मेरे संवेदनशील मन को झकझोरने के लिए काफी था। खैर, जैसे तैसे अधिकारियों से विदाई हुई। विद्यालय से लौटने पर पता चला अभी तक हमारे फौजी साहब घर नहीं पहुंचे। मुझे भी चिंता हुई कि आखिर भाई साहब गए कहाँ। अपने ही गांव के 2-4 छात्रों के साथ मैं उन्हें ढूंढने निकला। गांव था ही कितना बड़ा, थोड़ी ही देर में सारे गांव की छानबीन हो गई। इस छानबीन से पता चला साहू किराने वाले की दुकान पर वो आए थे और जीरा खरीदना चाहते थे, लेकिन वो जितना चाहते थे उतना नहीं था।

0: इसलिए शाम वाली बस में बैठकर शायद समीप के तहसील में गए हैं। अब निरुपाय बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। मैं भी उस घड़ी को कोस रहा था कि नायक ही अतिथियों के भोजन का निवेदन कर दिया। वो बेचारी अन्नपूर्णा जैसी देवी भाभी आज मेरी वजह से इतनी अपमानित हुई, और भलमनसाहत के कारण बेचारे फौजी साहब जाने कहाँ चल दिए। राम राम करके रात आंखों से गुजरी। सुबह भी अभी ठीक से नहीं हुई थी कि एक मोटाडोर वाहन की आवाज़ से मैं ही नहीं क्या पूरा पास पड़ोस भी जाग गया। बाहर आकर देखा तो लोडर वाहन से एक बड़ी बोरी उतारी जा रही थी और वह बोरी हवेली के अंदर पहुंचाई गई। वाहन चालक को उन्होंने भोजन करके ही जाने का निवेदन किया। मुझे देखते ही चिरपरिचित मुस्कान चेहरे पर आग राजी। अब वो अंदर की ओर बड़ी प्रसन्नता से कह रहे थे, बिन्नू की माँ, कल हम नाहक ही तुम पर क्रोध कर बैठे। जब पूरे गांव में ही जीरा नहीं था तो भला तुम तत्काल कहाँ से मंगवाती। इसलिए कल ही तहसील की हाट से जीरा लाने चल दिए। हम बहुत दिन से अपनी रामश्री बुआ से मिले भी नहीं थे, सो उनके ही घर रात में रुक गए। अब आज फिर से बनाओ तड़के वाली दाल, और हाँ जीरा आप कंजूसी से मत डालना, पूरे 50 किलो जीरा मोल लाया हूँ। उनकी उद्घोषणा मात्र से एकाएक घूंघट में कैद रहने वाला मुखड़ा पल भर में ही घूंघट का बंधन भूल खुला रह गया था, और हम सब हक्के बक्के होकर फौजी के असीम आनंद भरे चेहरे को देख रहे थे।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी कहानी दाल का तड़का। कहानीकार थी डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी। बहनों, कहते हैं ना कि अन्न दान महादान। हम सभी जानते हैं कि अन्न का हर एक दाना अनमोल है। ये ना सिर्फ किसी की भूख मिटाता है बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान भी लाता है। बहनों, जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अनेक प्रकार के व्यंजनों की बर्बादी होती है विभिन्न प्रकार के आयोजनों में। शादी, पार्टी, जन्मदिवस के अवसर पर भी अक्सर बहुत सारा खाना बच जाता है, तो इसे व्यर्थ जाने से बचाएं। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सार्थक कदम साबित हो सकते हैं। जैसे बचे हुए भोजन को हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें। स्लम एरिया, सरकारी अस्पताल, रेड लाइट या फुटपाथ पर बैठे हुए ऐसे कितने ही व्यक्ति हैं जिन्हें दो वक्त का भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। हम ये खाना उन्हें बांट सकते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो फूड बैंक चलाती हैं, यानी भोजन इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाती हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हम उनसे संपर्क करके भोजन की बर्बादी को रोक सकते हैं और उनकी दुआएं भी ले सकते हैं। घर में बची हुई अतिरिक्त राशन सामग्री भी हम ऐसी संस्थाओं को दे सकते हैं। बहुत प्रचलित कहावत है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो बस सही नाम तक खाना पहुंचाने की जहमत ज़रूर करें, ना कि उसे डस्टबिन में डालें। अपने चाहने वालों से पूछकर ही खाना बनाएं और उन्हें प्यार से खिलाएं।

0: तकना तकना आओगे।
1: सखियों, खूबसूरत दिखना और खूबसूरती को बरकरार रखना तो हर कोई चाहता है, तभी तो हम एक्सरसाइज और योगा को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, साथ ही पौष्टिक भोजन खाते हैं और कभी कभार ब्यूटी पार्लर भी चले जाते हैं। आज हम चलते हैं हमारे पर्सनल ब्यूटी पार्लर में, यानी किचन की ओर। देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या क्या है जिसे हम अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर यूज कर सकते हैं। रसोई में मौजूद चीज़ों से त्वचा की देखभाल करना प्राकृतिक, असरदार और सुरक्षित तरीका है, साथ ही ये किफ़ायती भी है। हर रसोई में कुछ बेसिक चीज़ें तो होती ही हैं, इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे, जैसे हल्दी, बेसन और मलाई को मिलाकर इसका उबटन बना सकते हैं। मसूर की बिना छिलके वाली दाल को दूध में भिगो दें और फिर उसे पीस लें, इससे बहुत अच्छा स्क्रब तैयार होता है। कॉफ़ी, दही और शक्कर को मिलाकर फेस पैक बना सकते हैं। इसी प्रकार चावल का आटा भी अच्छा फेस पैक साबित होता है। आलू, चुकंदर, नींबू, कई ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी त्वचा के लिए फ़ायदा करते हैं। बस पहले हमें ये समझना होगा कि आपका स्किन टाइप कैसा है, ऑयली, ड्राई या नॉर्मल। उसी के अनुसार हम इन घरेलू चीज़ों का उबटन या पैक बनाकर प्रयोग करते हैं। सखियों, कच्चा दूध एक ऐसा विकल्प है जिसे हर कोई क्लेंजर के तौर पर प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार सन टैनिंग को कम करने के लिए कच्चे आलू का प्रयोग भी सही रहता है। खीरा आंखों को ठंडक देता है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। किचन में जाइए और अपनी त्वचा की ज़रूरत के अनुसार उसकी देखभाल कीजिए। अगर आप कार्यक्रम सुनते सुनते ही ये काम करेंगे तो बोर भी नहीं होंगे। तो सखियों, रखिए अपनी खूबसूरती का ख्याल और अब समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का, तो अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला सभा, ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीत।

मेहरबान सिंह कुशवाहा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे प्रियंका शर्मा के गाए भजन।

प्रियंका शर्मा के गाए भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक

0: यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी भोपाल।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है इज्जत फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा लेकिन फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, गीत गुलजार का और संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: लता मंगेशकर के गायस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि मृतकों, डुप्लीकेट और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। श्री चौहान ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा।
1: इंडी गठबंधन तो बैठक के पहले ही बिखर गया, डीएम के बैठक में नहीं आ रहे, अखिलेश जी कहीं और व्यस्त, आपने पहले ही मना कर दिया, उद्धव जी फिजिकली नहीं वर्चुअली जुड़े, ये इसलिए कि इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी को नेता मानने को तैयार ही नहीं, कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ, खुद वोटर लिस्ट लोकतंत्र की आत्मा है, और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाए। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, जीवित नहीं बचा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए, कहीं डुप्लीकेट गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: प्रदेश में नर्सिंग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। परिणाम जारी होने से उनकी आगे की पढ़ाई, उच्च कक्षाओं में प्रवेश और करियर से जुड़ी बाधाएं दूर हुई हैं। विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतिनिधियों ने आज भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर उनका आभार जताया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के हित और उनके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने जनसेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। प्रदेश में पहली बार गुना पुलिस ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और प्रदर्शन की डिजिटल निगरानी के लिए 3 नए एप्लीकेशन शुरू किए हैं। इनमें ई प्रबंध ऐप से ड्यूटी का ऑनलाइन आवंटन और रिकॉर्ड, जबकि कवच ऐप से पुलिस की गश्त की निगरानी की जाएगी। ड्यूटी के दौरान निर्धारित मानकों के आधार पर पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर उन्हें ग्रेड भी दिए जाएंगे। वहीं क्वार्टर मैनेजमेंट ऐप से सरकारी आवासों का डिजिटल आवंटन होगा। इन एप्लीकेशन को DIG डॉ. असित यादव ने लॉन्च किया। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से धान, ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। और अब खबर एशियाई खेलों से, जिसमें भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। उधर ज्योति सुरेखा विन्नम और चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अब पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में 35 MP बटालियन NCC के 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में एक दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम अभ्युदय 2026 का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में जनपद सदस्य उपचुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की तबियत बिगड़ने पर ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक ने तत्काल CPR देकर उनकी जान बचाई। और आगरमालवा जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सोयतकला में कल 3 आंगनवाड़ी केंद्रों के संयुक्त तत्वावधान में आंगन का मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आगरमालवा के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को मलेरिया, HIV/AIDS, नशामुक्ति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर जानकारी प्रदान की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना कमांडर्स सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर

0: जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में है। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। SIT से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
3: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह के कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र

0: आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
2: अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदावते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
3: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग से गेस्ट ये सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
2: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50 मिनट रह गया है। दैनिक यात्री अनुपानंद कहते हैं कि इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच रोजाना यात्रा पहले की तुलना में तेज, सुगम और सुविधाजनक हो गई है।
4: मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने में काफी ज्यादा समय लगता था, खासकर पीक आवर में। अटल सेतु शुरू होने के बाद सफर काफी बेहतर हो गया है। अब मेरे जैसे रोज ट्रैवल करने वाले लोगों का समय काफी बचता है और मुंबई से नवी मुंबई आना जाना अब पहले के मुकाबले काफी सुविधाजनक हो गया है।
2: अटल सेतु से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलार और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और काइनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स

0: टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुँच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की महिलाओं के सराहनीय कार्यों का उल्लेख किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 343 अंक बढ़कर 72,872 जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश है हमराज फिल्म के इस नगमे की, जिसे आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने, साहिर का गीत और रवि का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, तिबरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता, मनीषा, सुरेंद्र और मोहन सिंह, सहद्रीबाई, मंजू, मानसी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये नगमा।

ज़िला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर एवं समस्त परिवार। ग्राम पचौनिया ज़िला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तान्या ने।

कभी कभी। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में साहिर का गीत और खयाम का संगीत। इस गीत को पसंद किया है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, प्रमिलागंज आलोड़ जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेराज जहां, ग्राम सनोतिया जिला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद अशोक, राजकुमार हिमांशु, कवाई सालापुरा जिला पारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव ने।

खट्टा मीठा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, गुलजार का गीत और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं सरोचो कमरावती से कमरुल्ला, नसीम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शुएब खान और मुस्तफ़ा खान। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुरा से खरगोन से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समर राज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा। पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। साथ ही दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता वर्मा, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि मृतकों, डुप्लीकेट और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। प्रदेश में नर्सिंग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। परिणाम जारी होने से उनकी आगे की पढ़ाई, उच्च कक्षाओं में प्रवेश और करियर से जुड़ी बाधाएं दूर हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि माधवराव सिंधिया ने जनसेवा और जन कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित

0: समेत कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रदेश में पहली बार गुना जिले की पुलिस ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और प्रदर्शन की डिजिटल निगरानी के लिए 3 नए एप्लीकेशन शुरू किए हैं, जिनमें ई प्रबंध एप्लीकेशन से ड्यूटी का ऑनलाइन आवंटन और रिकॉर्ड, जबकि कवच ऐप से पुलिस की गश्त की निगरानी की जाएगी। और प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से धान, ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथी GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30, 8:35 और रात 10:20 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर शनि कुमार से ली गई भेंटवार्ता, जिसका विषय है आधुनिक विधि से जैविक एवं अवशेष मुक्त सब्जी उत्पादन। विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा आप सुन सकेंगे रात 8:00। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स हम आपको सुनवाएंगे रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से, और चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 रिले किया जाएगा। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित गिरिराज का सितार पर बजाया राग राकेश्री। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव 188.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। DTH पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आप सुनेंगे महेंद्र सिंह कुशवाहा के गाए लोकगीत।

महेंद्र सिंह कुशवाहा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में सुनिए प्रियंका शर्मा के गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

0: प्रियंका शर्मा के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूर।

0: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ आकाशवाणी।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। पहला गीत हमने लिया है अखियों के झरोखों से, फिल्म से। हेमलता की आवाज़ है, रविंद्र गीत संगीत रविंद्र जैन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुनिए अभिमान फिल्म का ये नगमा, मसरूर सुल्तानपुरी का गीत और एस डी वर्मन का संगीत।

सरस्वती चंद्रा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की, इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: इसके साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। 3:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद के लिए 5,547.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतदाता सूची को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि मृतकों, डुप्लीकेट और अपात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। प्रदेश में नर्सिंग विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। परिणाम जारी होने से उनकी आगे की पढ़ाई, उच्च कक्षाओं में प्रवेश और करियर से जुड़ी बाधाएं दूर हुई हैं। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत किसानों से धान, ज्वार और बाजरा का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन जारी है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। और भोपाल में मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में कल 1 अक्टूबर को राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन का गायन किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए उर्दू प्रोग्राम कहकशां। आज का ये कार्यक्रम गजलों पर आधारित कार्यक्रम है, आवशारी गजल।

दोस्तों, अभी आप सविता सेठी की आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। अंजुम रुमानी की शायरी में ज़िंदगी का ये एहसास सिर्फ ज़ाती तन्हाई या दाखली कैफियत तक महदूद नहीं रहता, ये अपने इर्द गिर्द की दुनिया तक फैल जाता है। वो अपने अहद के हालात, माशरती रवैयों और बदलते हुए माहौल को भी एक हसास शायर की निगाह से देखते हैं। उनके यहाँ मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहता, हवा सिर्फ हवा नहीं रहती, ये सब इंसानी तजर्बे और फिक्र की अलामतें बन जाते हैं। इसलिए उनकी शायरी पढ़ते हुए महसूस होता है कि शायर अपने जमाने से आंखें नहीं चुराता, बल्कि उसे देखता, परखता और अपने मखसूस शायरी अंदाज में हमारे सामने रखता है। उनकी एक गजल में मौसम और हवा के इस्तियारे के जरिए जिंदगी की इसी कैफियत को कुछ उन्होंने इस तरह समेटा है। मौसम का आह नाला से अंदाजा कीजिए, ताज़ा हवा पे बनना दरवाज़ा कीजिए। कितनी खूबसूरत बात है कि ताज़ा हवा के लिए दरवाज़ा खुला रखने की बात करते हुए शायर जिंदगी के इम्कानात को भी खुला रखने का एहसास पैदा कर

देता है। अंजुम रुमानी के यहाँ यही शेरी अंदाज बार बार सामने आता है कि एक मामूली सा मंजर फिक्री वसत इख्तियार कर लेता है और अपने अहद की परेशानियों से भी वाकिफ है, मगर उनकी शायरी सिर्फ शिकवे पर खत्म नहीं होती, उसमें बिखरी हुई

रोमानी के शहरी सफर की एक खूबसूरत चहत है। सामीन, इस प्रोग्राम की अगली पेशकश गुलुकारा चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज में और कलाम है रईस अख्तर का। समाप्त कीजिए।

दोस्तों, अभी आप गुलकारा चित्रा सिंह की खूबसूरत आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे और कलाम था रईस अख्तर का। अपने मौजू पर हम वापस आते हैं और बात करते हैं अंजुम रोमानी की। उनके यहाँ फिक्र-ओ-फ़न का दायरा यहाँ आकर और वसी हो जाता है, जब शायर होना सिर्फ अपने एहसासात को लफ्ज़ देने का काम नहीं रहता, बल्कि अपने ज़माने के बदलते हुए चेहरों को देखना और उनके अंदर छिपी तब्दीली को महसूस करना भी शामिल हो जाता है। मुआशरा बदलता है तो इंसान के रवैये बदलते हैं, जिंदगी के अंदाज भी बदलते हैं और तरजीहात भी बदल जाती हैं। अंजुम रोमानी ने अपने अहद की इस तब्दीली को भी अपनी शायरी में महसूस किया। उनके यहाँ जमाना महज एक तारीखी मरहला नहीं, बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जिसमें इंसान के रवैये, चाल ढाल और जिंदगी के तरीके तक तब्दील होते दिखाई देते हैं। जैसा कि उनका ये शेर, नई जिंदगी के नए मकरोफन, नए आदमी की नई चाल ढाल। यही बदलती हुई जिंदगी शायर को अपने जमाने के साथ मुकालमा करने पर मजबूर करती है। अंजुम रोमानी अपने माहौल से बेखबर नहीं है, तब्दीली को देखते हैं और इसके असरात को महसूस भी करते हैं। उनकी शायरी में सिर्फ मुशाहिदा नहीं, एक दाखिली सवाल भी मौजूद है। बदलती हुई दुनिया में इंसान खुद कहाँ खड़ा है, उसके असूल, उसकी जिम्मेदारियाँ और उसके अमल की अहमियत क्या रह जाती है, यही सवाल उनके लहजे को महज बयान से फिक्र की तरफ ले जाता है। वो अपने जमाने के रवैयों को देखते हुए अमल की जरूरत की तरफ भी इशारा करते हैं और अपने शेर में कहते हैं, जरूरत थी कि जो मैदान में निकले सर बकफ निकले, मगर हम हैं कि निकले भी तो लेकर चंगो दफ निकले। अंजुम रोमानी के यहाँ इस तरह के अशार उनकी शेरी मिजाज की एक अहम जहत सामने लाते हैं। वो अपने अहद को सिर्फ बाहर से नहीं देखते, उसमें मौजूद इंसान को भी सवाल के दायरे में लाते हैं। यही वजह है कि उनकी शायरी में फिक्र एक खुश्क फलसफियाना बहस नहीं बनती, वो जिंदगी के तजर्बे से पैदा होती है और शेर के रास्ते से हमारे सामने आती है। अंजुम रोमानी की शायरी का हुस्न यही है कि वो हमें किसी एक नतीजे तक पहुंचाने की बजाय सोचने की जगह फराहम करती है। उनके यहाँ रिवायत भी है, जदीद हसियत भी है, ज़ाती एहसास भी है और इज्तिमाही शऊर भी, और यही इम्तिजाज उनके फन को एक ऐसी अदबी शनाख्त देता है जिसमें शायर अपने अहद का गवाह भी है और इससे सवाल करने वाला भी। सामईन, अब इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश गुलकार तलत अजीज और पीनाज मसानी की आवाज में और कलाम है प्रभा माथुर का। ये खूबसूरत गजल समात फरमाइए।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार तलत अजीज और पीनाज मसानी की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था प्रभा माथुर का। अंजुम रोमानी।

अप्रैल 2001 को लाहौर में इंतकाल कर गए। अंजुम रमानी को याद करना दरअसल उर्दू शायरी की उस रिवायत को याद करना है जहां शेर जिंदगी से अलग नहीं जिंदगी की ही एक गहरी आवाज बन जाता है। अंजुम रमानी की शायरी के सफर को समेटते हुए ये कहना बेजा न होगा कि उनके फिक्र फन में जिंदगी का मुशाहिदा, इंसानी एहसास, अहद की आगाही और जबान का शेरी हुस्न एक साथ दिखाई देता है। वो उन शायरों में शामिल है जिनके यहाँ शेर सिर्फ कैफियत बयान नहीं करता बल्कि अपने अंदर एक सवाल भी रखता है। उनकी शायरी हमें अपने अंदर झांकने के साथ अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखने का सलीका भी देती है। शायद यही वजह है कि अंजुम रमानी का कलाम अपने जमाने की हदों से निकलकर आज भी कारी और सामे से रिश्ता कायम कर सकता है। हमें उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय और तजावीज हमें जरूर अरसाल करें क्योंकि आपकी आवाज कहकशा की रोशनी है। हमारा पता नोट फरमाइए, उर्दू प्रोग्राम कहकशा, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड है 462002। उर्दू प्रोग्राम कहकशा को बरोज मंगल रात 9:30 बजे सुनना ना भूले। अब अपनी दोस्त शीरीन खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति क्रम में भाग 12, दगा नहीं देंगे।

0: कन्फ्यूशियस की, गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की, सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की।
1: दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां साधु संत और महापुरुषों ने जन्म न लिया हो। समाज के सामाजिक विनियमन और आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए धरती पर इनका अवतरित होना उसी की तरह अनिवार्य है जिस तरह जीवन के लिए प्रकाश, हवा और पानी।
2: व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में परिष्कार एवं परिमार्जन की प्रक्रिया को सतत जारी रखने के लिए साधु संतों की शीतल छांव की सदैव आवश्यकता रहती है।
1: ईश्वरीय शक्तियों को धारण करने वालों में साधु संत जहां एक ओर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को उसका सही लक्ष्य बताते हैं, वहीं दूसरी ओर उस लक्ष्य तक पहुंचाने का पर्याप्त ज्ञान तथा बल भी प्रदान करते हैं।
2: इनके साथ अथवा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं रहता, फलतः वो दूसरों के हितों के संवर्धन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके सामने जाति पात और अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं रहता।
1: साधु अपनी ग्रहण की हुई अक्षय निधि में से दूसरों को प्रदान करता है। राजनीतिज्ञ का अहम उसके आडंबर में से आंकता है और साहित्यकार जलते दीप में से प्रकट होने वाले काजल की तरह अहम मन्यता तक जाता है। लेकिन साधक का साधु का अहम साधना में विलीन हो जाने में व्यक्त होता है।
2: कभी कभी कवि के मुख से साधु अथवा साधक की इसी अप्रतिम महिमा का लक्ष्य करते हुए ऐसी भी वाणी निकल पड़ती है। आबरूली कलम उठाने ने, लायक की जान ली जमाने ने, थी खामोशी बयान से अच्छी बात खोदी जबां हिलाने ने।
1: महात्मा साधु की अतुलित महिमा को किसी एक साधुवर में चरितार्थ होता देखना हो तो चीन में पैदा हुए संत श्रेष्ठ कन्फ्यूशियस में सहज ही देखी जा सकती है।
2: आइए इन्हीं कन्फ्यूशियस से संबंधित एक कहानी सुने और जाने कि इस युग संत ने समय के श्वेत पृष्ठ पर अपने कृतित्व की कैसी और कितनी अमिट छाप छोड़ी है।
1: संत कन्फ्यूशियस के अंतर को ठीक ठीक जानने समझने के पूर्व उनके बाह्य स्वरूप से साक्षात्कार कर लेना उपयोगी होगा।
2: उनका बाह्य स्वरूप अधिक भव्य और आकर्षक नहीं था।
1: लोग उन्हें जो खाने को देते वे खा लेते, जो पहनने को देते पहन लेते।
2: वो सबके लिए सम्मानीय थे,
1: वो सभी के लिए पूजनीय और अनुकरणीय थे।
2: गरीबी तथा अमीरी की इसी मानवीय धारणा की रेखाओं को मिटा डालने के लिए कन्फ्यूशियस घूमते रहते थे। वो उनकी जीभ थे, जिन्हें देश में बोलना नहीं आता था या जो बोलने का साहस नहीं कर पाते थे।
1: वो उनकी भुजा थे, जो या तो उठना नहीं जानती थी या उठने पर किसी युग का भाग्य नहीं लिख सकती थी।
2: संत कन्फ्यूशियस जहां भी ग्राम्यांचल में पहुंचते थे, लोग जय जयकार करते हुए उनके दर्शन पाने को दौड़ पड़ते।
0: महान संत कन्फ्यूशियस की, महान संत कन्फ्यूशियस की, गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की, गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की, सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की, सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की।
3: अरे गांव वालों, सब अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक पद पर एकत्रित हो जाना। अरे भाई, क्योंकि महान संत कन्फ्यूशियस कल हमारे गांव पधार रहे हैं।
4: अरे वाह, अच्छी बात है। अरे क्या कह रहे हो धनिया भाई, संत कन्फ्यूशियस हमारे गांव पधार रहे हैं?
3: हाँ भैया हीरा, ये बात सच है, वो कल हमारे गांव आ रहे हैं।
4: भैया तब तो पहले हम उन्हें अपने गरीबों की बस्ती में लाएंगे।
3: हाँ।
4: वे हमारे गरीब परवर हैं, उनके मन में हम गरीबों के प्रति अपार प्रेम और संवेदनाएं हैं। ठीक है ना मित्र बंसी?
3: हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
5: हाँ सच कहत हो हीरा भैया, वे बड़े कृपालु हैं, उनकी झोली में हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। देखो अब वे हमारे गाँव की सीमा से कुछ ही दूर हैं, तुम तो देख कर आए हो ना भैया गेंदा?
6: हाँ हाँ भैया, मैंने देखा है, उनके साथ बहुत से लोग हैं। अच्छा। कल तुम सभी लोग सार्वजनिक पद

0: पर पहुंच जाना,
1: समझे? हाँ भैया, देर मत करना, ऐसा सो अवसर जाने ना पाए फिर।
0: हाँ
2: अरे कल को हमको अपने सारे पुण्यों का प्रतिफल मिलने वाला है भैया।
0: भैया
1: हमारे गांव की माटी का कण कण पवित्र हो जाएगा, हमारे भाग्य जाग उठेंगे भैया।
3: जाग उठेंगे भाग, जाग उठेंगे भैया।
4: संत के आने का समाचार गांव के लोगों को बहुत उत्साहित कर रहा था। गांव के पुरुषों के साथ स्त्रियां भी उनके आगमन को लेकर भाव विभोर हो रही थीं।
5: आधी रात हो चली थी, परंतु गांव वालों की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें रह रहकर एक ही चिंता सता रही थी,
4: वो ये कि कहीं संत को नगर से धनिकों की बस्ती में ना ले जाएं। इस विचार विमर्श में गांव की ग्रामीण स्त्रियां भी भाग ले रही हैं।
6: ए क्यों बहन मुलिया, क्या संत जी अमीरों की बस्ती नहीं पधारेंगे? क्या वो हमारी बस्ती में नहीं आएंगे?
7: क्या कह सकते हैं रज्जू दीदी, नगर सेठ ने धनकों की बस्ती को खूब सजाया है, जगह जगह तोरण द्वार बनाए हैं, है ना?
8: हाँ खूब सजाया है तो क्या मुलिया बहन, हमने भी तो गरीबों की बस्ती को लीप पोत कर साफ सुथरा बना लिया
9: है। अरे जसोदा बहन, मुझे तो सच में विश्वास है कि वो जरूरी हमारी बस्ती में पहले पधारेंगे।
7: बिल्कुल
6: तुमने ठीक कहा है जमुना जीत जी, वो गरीबों के मसीहा हैं, इसलिए उन्हें गरीबों की बस्ती में आना ही चाहिए।
9: हाँ बिल्कुल, और क्या।
7: मैंने तो उन्हें पहनाने के लिए माला भी बनाई है।
9: अच्छा
8: हाँ मुलिया बहन, हम सभी ने मालाएं बनाई हैं।
9: अरे हम इन मालाओं को अपने पति को देंगी।
7: बिल्कुल,
9: और वो संत जी को गांव में प्रवेश करते ही पहनाएंगे।
6: ए जसोदा बहन, तुमने ऐसा क्यों कहा कि हमने आज अपने घरों को गोबर से लीप पोत के साफ किया है?
8: गलती हो गई रज्जू दीदी, हम सब तो रोज ही घरों को चौबारों को गोबर से साफ करते हैं और खुद ही करते हैं, पर कोई कहता नहीं है।
7: रज्जो दीदी, ये अमीर लोग ही हैं जो अपनी बस्ती को आज ही साफ सुथरा कर रहे हैं।
9: अरे मुनिया बहन, संत जी तो अंतर्यामी हैं।
7: हाँ।
9: और वो सब समझ जाएंगे कि कौन मन से सम्मान कर रहा है और कौन दिखावा।
7: बिल्कुल ठीक कह रही हो
6: जमुना जीत जी, हम तो उनका हृदय से स्वागत करेंगे।
9: हाँ
8: हाँ रज्जो दीदी, इतने बड़े संत हैं, पर सुना है वो बहुत सीधे साधे तरीके से रहते हैं।
9: हाँ।
8: अगर कोई परिचय नहीं दे तो कोई पहचाने ही नहीं।
9: क्या ये गलत सुना है तुमने? अरे हमने तो सुना है संत कन्फ्यूशियस के श्रीमुख पर दिव्य तेज का आभा मंडल है।
6: हाँ?
9: और जो उन्हें देखता है वो अलौकिक संसार में खो जाता है।
7: अच्छा, तो ऐसे महात्मा के दर्शन करके तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा।
9: सच, हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा।
8: हाँ जीजी, हमने पिछले जन्म में जरूर पुण्य किए होंगे जो हमें ये सुअवसर मिल रहा है कि हम संत श्री के दर्शन करने जा रहे हैं।
9: हाँ, हाँ, हाँ।
6: मैं तो उनकी चरण धूली माथे पर लगाऊंगी।
8: हाँ।
9: रज्जू दीदी, वो किसी को पैर नहीं छूने देते।
6: क्या?
9: पता है वो कहते हैं सभी व्यक्ति परम पिता परमात्मा की संतान है, तो कोई क्यों किसी के पैर छुए।
6: अच्छा, कितने अच्छे विचार हैं।
9: हाँ,
6: अरे तभी तो सभी उनकी जय जयकार करते हैं।
9: हाँ
5: संत नियत समय गांव पहुंचते हैं।
10: श्रीमान, मैं ग्राम सेठ हूं।

0: के खास मुरीद हैं महाराज। गांव के गरीब बस्ती के लोग भी एकत्र हो चुके हैं, आप बाद में उनके यहाँ चले जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है।
1: गरीब बस्ती के पुरुष और स्त्रियां, वो लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। वो लोग संत कन्फ्यूशियस की जय जयकार के नारे लगाते हैं।
2: महान संत कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: महान संत कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
3: जय,
2: सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
3: जय।
4: आइए, हम गरीबों की बस्ती में पधारिए महाराज।
5: हाँ हाँ महाराज,
6: सारी बस्ती आपके दर्शन के लिए एकत्र है, बड़ा उत्साह है हम सब लोगों में।
4: हाँ
6: हाँ महाराज,
7: कई वर्षों की प्रार्थना के बाद आप यहाँ पधारे हैं महाराज।
4: हाँ महाराज।
6: महात्मा, हर व्यक्ति आज आपके दर्शनों से अपनी पूरी प्यास बुझा लेना चाहता है।
4: आपका एक एक पल हमारे लिए मूल्यवान है महाराज, अब तनिक भी देर ना कीजिए, आइए पधारिए महाराज,
6: पधारिए महाराज। स्त्री पुरुष बच्चे सब आपके दर्शन के वास्ते उतावले हो रहे हैं, चलिए महाराज।
8: हाँ हाँ महाराज।
9: महाराज, हम गांव के मुखिया हैं महाराज, आपकी अगवानी करते हैं, पधारिए महाराज।
8: हाँ पधारिए महात्मा, पधारिए। हाँ, आपका स्वागत है। स्वागत
0: नहीं महाराज, पहले आपको धनिकों की बस्ती में चलना होगा, मैंने वहाँ के लिए आपको पहले ही आमंत्रित किया है। वैसे भी हमारी समाज व्यवस्था में इन गरीबों की तुलना में हमारा स्थान ऊंचा है, राज दरबार और शासन व्यवस्था में भी हमारा ओहदा काफी ऊंचा माना गया है।
9: संत जी, ये नगर सेठ आपको गलत बता रहे हैं।
2: नगर सेठ के वचन ठीक नहीं है महात्मा।
9: गरीबों को सदाई संतों महात्माओं ने आश्रय दिया है महाराज।
8: हमारी संत श्री से प्रार्थना है कि आप नगर सेठ की बात पर ध्यान दिए बिना हमारी बस्ती में पधारने का कष्ट करें महाराज।
10: अरे ये संत के दर्शन लाभ के मामले में गरीब अमीर की पाखंड लीला कहाँ से आ गई ग्राम सेठ?
9: ठीक कहता हूँ भैया।
8: सेठ जी, संत श्रेष्ठ को तो इस संसारी कीचड़ से मुक्त रखिए।
6: हाँ महाराज।
9: हाँ, जिस तरह भगवान के दर्शन गरीब और अमीर सबको समान रूप से मिलते हैं, उसी प्रकार संत श्रेष्ठ के दर्शन के मामले भी संसारी भेदभाव का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए।
6: संत श्री महान है, वो जानते हैं कि गरीबों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है, जो उनके मन में होता है वही देखता है।
0: संत श्री, तुम लोगों की बस्ती के बाद हमारी बस्ती में पधारेंगे तो ये हमें अपना अपमान सा महसूस होगा। जो व्यवस्था सनातन काल से चली आ रही है वही चले, मैं तो यही चाहता हूँ।
3: ये व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
11: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भक्त जनों, मैंने तुम सबकी बातें ठीक से सुन ली हैं। सत्य तो यह है कि ईश्वर ने गरीबी तथा अमीरी की इस मानवीय धारणा की रेखाओं को मिटाने के लिए ही मुझे इस संसार में मानव रूप में भेजा है। मैं ईश्वर के निर्देशानुसार गांव गांव पैदल घूम घूम कर उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए कृत संकल्प हूँ। मैं गरीबी और अमीरी के भेदभाव को और बाहर और भीतर दोनों धरातलों से मिटाने के अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ। मैं कतई नहीं मानता कि धनिकों और गरीबों की दो अलग अलग दुनिया होती है। मैं तो एक ही दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं और वो है इंसानी दुनिया।
9: महाराज की
3: जय हो,
9: महाराज की
3: जय हो,
9: महाराज की
3: जय हो।
0: तो क्या हमारे अमीरों की बस्ती के लोग आज आपके पावन दर्शन से वंचित रह जाएंगे महाराज?
4: क्या महाराज, गरीबों की बस्ती के लोग भी आपके दर्शन से वंचित रह जाएंगे?
8: हाँ महाराज।
11: कोई भी सच्चा साधु संत अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता, मैं भी आज तुम सबको निराश नहीं करूंगा। भक्त जनों, तुम ऐसा करो, गांव के सभी लोगों को एक साथ इसी स्थल पर बुलवा लो। यह स्थल ना तो धनिकों की बस्ती का हिस्सा है और ना ही गरीबों की।

0: बस्ती का। और हां, भविष्य में मैं इस गांव में तभी पैर रखूंगा जब आप लोग गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर स्वयं को केवल इंसान मानने लगोगे।
1: महान संत कन्फ्यूशियस की जय। महान संत कन्फ्यूशियस की जय। गरीबों के सहायक कन्फ्यूशियस की जय। सबके मार्गदर्शक कन्फ्यूशियस की
2: जय। कन्फ्यूशियस का काल ईसा के 511 वर्ष पहले माना जाता है। उस समय के जगत के शास्त्रों ने एशिया में और जगत में चाहे जो कहा हो, जगत के इतिहास ने इतिहास ग्रंथों के रूप में आंख ही खोली थी। कहते हैं वे ईसा के 478 वर्ष पहले तक जीवित रहे, यानी कि वे भारत के स्वामी राम तीर्थ की तरह बहुत थोड़े दिन रहे, लगभग 33 वर्ष।
3: कन्फ्यूशियस अपने युग के धर्मवक्ता और सामंत दोनों थे।
2: जिस समय वे चीन देश के सत्ताधारी कहलाए, तब उन्होंने देश में कथनी और करनी को ऐसे ऊंचे तरीके से गूंद दिया कि चीन में उस समय के शासन को खोजने पर एक भी गुनहगार का मिलना कठिन हो गया था। जब गुनाह होते ही नहीं तो गुनहगार आखिर मिलता भी कहां से।
3: जेलें उस समय केवल खाली खाली रहने वाले मकान बनकर रह गई थीं। जेलों के सींचे निकम्मे लोह दंड मात्र रह गए थे। संत कन्फ्यूशियस की लोक कल्याणकारी पदयात्राएं बिना रुके बिना थके ग्रामांचलों और शहरी क्षेत्रों में सतत चलती रहती थीं। शिष्यों की टोली सदा उनके साथ रहती थी।
2: एक दिन संत कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को लेकर पैदल ही जंगल में चले जा रहे थे। काफी दूरी पर स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। इस कारुणिक आर्तनाद पर संत के शिष्य आनंद और प्रभात आश्चर्य से कहते हैं,
4: महात्मन, अचानक आपके पैर थम क्यों गए? क्या पैरों में किसी प्रकार की पीड़ा है?
5: तुम ठीक कहते हो भ्राता आनंद, संत श्री के चरण अकारण ही नहीं थमे हैं।
0: नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। प्रिय आनंद,
4: गुरुजी,
0: प्रिय प्रभात,
4: गुरुदेव,
0: तुम लोग रुको मत, आगे बढ़ो।
4: फिर भी गुरुजी, यूं आपका यकायक सचेष्ट चौकन्ना और संवेदनशील हो उठना बिना प्रयोजन के तो नहीं हो सकता। मैं आपका सबसे पुराना शिष्य हूँ। आपके अव्यक्त भावों के अर्थ को कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेने की क्षमता अब मुझ में आ गई है।
5: गुरुदेव, कृपया कारण स्पष्ट करने का कष्ट करें।
0: शिष्य प्रभात, शिष्य आनंद,
4: गुरुजी,
0: जरा ध्यान लगाकर सुनो। पश्चिम दिशा की ओर से किसी नारी के विलाप करने की ध्वनि आ रही है।
4: हाँ श्रीमान, कोई दुखियारी स्त्री उधर रो रही है।
5: गुरुदेव, हम इस आवास की दिशा में जाकर वस्तु स्थिति क्या है वो मालूम कर आपको उससे शीघ्र अवगत कराते हैं। आज्ञा हो तो जाएं गुरुदेव।
0: हाँ, कोई स्त्री संकट में है, हम सब उसके पास चलते हैं। हो सकता है हमें तत्काल उसकी मदद में संबद्ध होना पड़े। चलो, जल्दी चलो।
3: नारी अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी असहायता के प्रति, उस पर हुए अत्याचार के प्रति जब अपने को व्यक्त करने लगती है तो बरबस रो पड़ती है।
2: रुदन तो एक संदेश है, बच्चों का भी, जवानों का भी, बूढ़ों का भी, नर का भी, नारी का भी।
4: लीजिए गुरुजी, हम लोग पहाड़ की तलेटी में उस झोपड़ी तक पहुंच गए हैं। वहां वो स्त्री रो रही है गुरुजी।
5: आइए गुरुदेव, झोपड़ी के द्वार पर चलते हैं।
0: बेटी, हम तुम्हारे मददगार हैं, तुम्हारे दुख से दुखी हैं। यदि छुपाने योग्य ना हो और तुम बता सको तो बताओ कि तुम इतनी देर से और यूं हबस हबस कर क्यों रो रही हो।

0: आखिर तुम्हारे ऊपर कौन सी बड़ी आपदा आन पड़ी है? निसंकोच होकर बताओ बेटी।
1: क्या बताऊं बाबा, मेरा सुहाग लुट गया है, झोपड़ी खाली हो गई है, अब मैं अकेली हूं बाबा, और साथ में है केवल मेरी जवानी। हम दोनों का जो मालिक था वो सदा के लिए हम दोनों के जीवन से चला गया है महाराज। मुझ गरीब पर तो आफत के कई पहाड़ गिर पड़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं।
0: बेटी, तुम जवानी को अपने से अलग क्यों मान रही हो?
1: बाबा, जब ये बदनसीब जोर से चढ़ती है ना, तब औरत से अलग हो जाती है और अपनी अलग सुहानी दुनिया गढ़ लेती है। उसको मिलने वाले अभिशाप तो अभिशाप है ही, वरदान भी अभिशाप बनकर जहरीले सांप की तरह पल पल उसको डसने लगती है बाबा। औरत तब अपनी ही जवानी के सामने बेबस हो जाती है, बेबस।
2: इसका क्या अर्थ है बेटी?
3: और तब अपनी ही जवानी के सामने बेबस हो जाती है, अर्थात?
1: अर्थात क्या, जो जुल्म करता है वो तो जुल्मी है ही, किंतु जो आशिक होता है वो भी उसी के लिए जुल्मी ही सिद्ध होता है। माँ बनने वाली अपने आनंद का कष्ट खुद ही उठाती है, और आनंद छूट जाए तो रोती है ना बाबा।
0: बेटी, तुम्हारी सिसकियां अभी भी नहीं मिट रही हैं। बताओ, तुम्हारा सुहाग कैसे लुट गया?
1: मेरे जवान पति को शेर खा गया बाबा।
2: ओह बेटी, इसका मतलब ये हुआ कि घर को चलाने का सारा भार अब तुम्हारे ससुर पर आ गया है?
1: नहीं बाबा, बताते हैं कि उन्हें तो बरसों पहले शेर खा गया। मुझे मेरे मंगेतर ने उपहार के रूप में सबसे पहले यही खबर दी थी। हमारी गृहस्थी का श्री गणेश ही बर्बादी की अमंगल सूचना से हुआ था बाबा।
3: बेटी, ये तो और भी बुरा हुआ। यही तो नियति का खेल है, उसके उस खेल के नियम वही जानता है।
2: तुम्हारे पास वो जमीन जायदाद तो होगी ही, जो तुम्हारे ससुर ने और तुम्हारे पिता ने कमाकर बनाई होगी।
1: ससुर एक खेतीहर मजदूर थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। जमीन जायदाद बनाना तो उनके लिए जिंदगी भर बस एक सपना ही बनी रही, और मेरे पिताजी के पास भी कोई ऐसी जमीन जायदाद नहीं थी बाबा। लोग कहते हैं जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरे पिताजी को भी जंगल में शेर कहा गया था।
0: वर्तमान से इतिहास तक सबको शेर खा गया। क्या इस जंगल में इतने शेर हो गए कि मनुष्य का यहाँ रहना सर्वथा असुरक्षित हो गया है?
1: हाँ बाबा, यहाँ इंसान और शेर के बीच झड़प तो होती ही रहती है, और वो होती ही है, क्योंकि वो पुरुष ही क्या जिसकी खतरों से झड़प ना हो। मेरे पति और शेर की भी ऐसी ही एक झड़प हुई थी। मेरा पति भी शेर से कम बहादुर नहीं था, उसने शेर का खूब सामना किया, लेकिन शेर तो ठहरा शेर, जीत गया और मेरे पति को खा गया। वो चड़प आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है।
0: बेटी बेटी, विलाप ना करो। तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, यूं रोना बंद करो और मेरी एक बात का जवाब दो कि यदि यह जंगल इतना भयानक है तो तुम किसी नजदीक के गांव या शहर में जाकर सुरक्षित जीवन जियो। इस तरह बार बार शेर का निवाला बनने में कोई समझदारी नहीं है बेटी।
1: नहीं बाबा, हम न किसी

0: गांव जाएंगे ना किसी शहर, तीन पीढ़ियां तो क्या, 100 पीढ़ियों को भी शेर खा जाए ना तो भी हम ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। हम इन वृक्षों, इन बेलों, इन नदियों, इन सरोवरों को दगा नहीं देंगे बाबा। इनके साथ हमारा जन जन्मांतर का अटूट रिश्ता है। ये रिश्ता सूत के कच्चे धागों सा नहीं, हृदय के मजबूत धागों से बंधा हुआ है। सदियां गुजर गई लेकिन प्रकृति के साथ हमारा विश्वास का ये रिश्ता न टूटा है और न भविष्य में कभी टूटेगा।
1: साधु कन्फ्यूशियस, उनका शिष्य मंडल और आसपास के वृक्ष उस तरुण वनवासिनी के चेहरे पर उभर आए दृढ़ता के प्रखर भावों को देखकर अचंभित भी थे और आनंदित भी।
2: वे ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अपने पति की अकाल मृत्यु पर सिसक सिसक कर लगातार रोने वाली स्त्री में ये चट्टान सी दृढ़ता और हिमालय सी प्रतिज्ञा कहां से आ गई।
0: बड़ा उपकार किया आपने यहाँ आकर बाबा। आपके आगमन से कमजोर पड़ता मेरा विश्वास पुनः जाग उठा है। मेरा आपसे वादा है कि शेर फिर गांव में आया तो उसकी अगली झड़प मुझसे होगी।
3: जय हो देवी, जय हो। तुम तो साक्षात शक्ति की अवतार हो।
4: देवी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी भावनाओं की जय हो।
5: विश्व के यही मानव मानवी है जिनके लिए वृक्ष हरे भरे और फूले फले हैं। यह प्रकृति और ऐसे नर नारी केवल हमारे आशीर्वाद के अभिलाषी नहीं है, ये तो हमारे प्रणाम के पात्र हैं।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानी की रेडियो प्रस्तुति की 12वीं कड़ी। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। यह फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में सुबह 10:30 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में 500 से अधिक वरिष्ठ जन शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में प्रमुख दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद के लिए 5,547.99 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी और प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को तनिष्का श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर युवा के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है, और वह है करियर। दोस्तों, बचपन से हम सबसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनोगे। पहले सवाल का जवाब चुनना थोड़ा आसान था, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स या कोई सरकारी नौकरी। लेकिन आज के दौर में ये सवाल थोड़ा और पेचीदा हो गया है। आज हर युवा के मन में एक और सवाल है कि क्या जो करियर मैं चुन रहा हूँ उसमें आने वाले सालों में AI मेरी जगह तो नहीं ले लेगा। दोस्तों, आज का समय तेज़ी से बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, काम करने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं और नए करियर ऑप्शंस भी युवाओं के सामने आ रहे हैं। इसलिए सिर्फ डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है, अपनी फील्ड के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और लगातार सीखने की आदत भी विकसित करना ज़रूरी है। आज AI हमारी पढ़ाई, हमारे दफ्तर और हमारे मोबाइल तक में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम इसी बदलाव को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस दौर में हम अपने लिए सही राह कैसे चुन सकते हैं। आज के दौर में करियर चुनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला है, लेकिन इस डर की वजह से आपको अपने सपनों की उड़ान रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी बात पर सुनते हैं लता जी का गाया हुआ ये खूबसूरत गीत, आज फिर जीने की तमन्ना है।

दोस्तों, इसी गीत की तरह हम जैसे कई युवाओं के मन में भी उलझन चल रही होगी कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए इसी उलझन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं युवाओं के करियर की। करियर को लेकर कंफ्यूजन होना कोई असामान्य बात नहीं है, खासकर आज के समय में जब हमारे सामने पहले से कई ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एनिमेशंस, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन जैसे कई नए और बदलते हुए क्षेत्रों में भी काम के अवसर बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी रुचि किस में है, आपको क्या काम पसंद है और आप किस में बेहतर कर सकते हैं। केवल ट्रेंड देखकर नहीं, जानकारी और अनुभव के आधार पर करना ज़्यादा व्यवहारिक है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अभी करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए। एक नोटबुक लीजिए और 3 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए मेरी रुचि, दूसरे में मेरी स्किल्स और तीसरे में मुझे क्या सीखना है। अगर आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है तो कम्युनिकेशन एक ताकत हो सकती है, और आपको नंबर्स और लॉजिक अच्छे लगते हैं तो डेटा रिलेटेड फील्ड्स आप देख सकते हैं। अगर आपको चीज़ें डिज़ाइन करना पसंद है तो डिज़ाइन से जुड़े हुए ऑप्शंस आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपका पहला काम करियर चुनना नहीं है, आपका पहला काम करियर ऑप्शंस को समझना है। दोस्तों, करियर प्लानिंग में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्किल गैप। इसका अर्थ है कि जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए और आपके पास अभी उनमें से कौन सी स्किल्स हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं तो केवल अच्छा लिखना ही पर्याप्त नहीं हो सकता, आपको रिसर्च करना आना चाहिए, बेसिक डिजिटल टूल समझने आने चाहिए, इन्फॉर्मेशन पढ़ना आना चाहिए और अपने काम का पोर्टफोलियो बनाना भी आना चाहिए।

चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ डिज़ाइन देखकर प्रभावित होना पर्याप्त नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक बहुत आसान तरीका अपनाइए, सीखें, अभ्यास करें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। पहले कुछ सीखिए, फिर उसका अभ्यास कीजिए और अंत में अपने काम का एक छोटा सा नमूना तैयार कीजिए। इसे ही आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जब आप नौकरी या इंटर्नशिप के लिए आवेदन करें तो केवल ये ना कहें मुझे ये काम आता है, बल्कि आप ये कह सकें कि ये मेरा काम है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, यही छोटी सी बात आपकी तैयारी को व्यवहारिक बना सकती है। और अब बात आती है सोशल मीडिया की, लेकिन करियर से इसका संबंध बहुत सीधा है। आज बहुत सी कंपनियां और प्रोफेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नेटवर्किंग, सीखने और करियर के अवसरों के लिए किया जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर अपना पूरा दिन बिताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल आपके करियर के लिए उपयोगी हो सकता है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उस क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को फॉलो कीजिए, उनकी पोस्ट पढ़िए, देखिए कि इंडस्ट्री में किस तरह की स्किल्स की बात हो रही है। इंटर्नशिप और नौकरी के अवसरों के लिए विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों की आधिकारिकता वेबसाइट चेक कीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सावधानी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर करियर सलाह सही नहीं होती। अगर कोई कहता है ये कोर्स कर लो और गारंटेड जॉब मिलेगी, या ये स्किल सीख कर 3 महीने में लाखों कमाइए, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। कोर्स लेने से पहले उसका सिलेबस देखिए, ट्रेनिंग देने वाले संस्थान की विश्वसनीयता जांचिए, कोर्स के बाद मिलने वाली सर्टिफिकेशन को समझिए। अगर आपको लगता है प्लेसमेंट का दावा किया जा रहा है तो उसके नियम और शर्तें ध्यान से पढ़िए, और जहां संभव हो आधिकारिकता स्रोत से जानकारी की पुष्टि कीजिए, क्योंकि करियर में जल्दबाजी में लिया गया फैसला समय और पैसा दोनों खर्च कर सकता है। भारत में युवाओं के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब भी एक महत्वपूर्ण सरकारी प्लेटफॉर्म है। इसे 2023 में शुरू किया गया था। यहाँ युवाओं को प्रशिक्षण, परीक्षा, प्रमाण पत्र, नौकरी और अपना काम शुरू करने से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिलती हैं। इसलिए अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो कोई भी विज्ञापन देखकर शुरुआत करने के बजाय पहले आप उसकी वेबसाइट को चेक करिए। आज के इस AI जनरेटेड दौर में एक कदम और आगे रहने के लिए आप AI को अपने लर्निंग असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उससे सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन मांगिए। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो AI के इंटरव्यू के सवाल बनाकर खुद जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन बेहतर करनी है तो AI के साथ बातचीत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, AI से मिली जानकारी को समझना और ज़रूरी तथ्यों को विश्वसनीय सोर्सेज से जांच लेना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी आपकी तैयारी को आसान बना सकती है, लेकिन आपकी जगह तैयारी नहीं कर सकती। और यही बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है।

दोस्तों, हमें कोई नई स्किल सीखने की शुरुआत करने के लिए किसी परफेक्ट दिन का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्यों ना आज से ही एक छोटी सी शुरुआत की जाए, क्योंकि हर बड़े सफ़र की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है, और इन्हीं छोटे छोटे कदमों में छिपी होती हैं बड़ी बड़ी आशाएँ। आशाएँ तो बहुत हैं, अब ज़रूरत है उन्हें सही दिशा देने की और उस दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ाने की, और इस सफ़र में किताबों और कक्षा से बाहर निकलकर लोगों से जुड़ना और उनके अनुभवों से सीखना भी उतना ही ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो अगले 30 दिन के लिए रोज़ 30 मिनट तय कर लीजिए, सिर्फ 30 मिनट। एक दिन में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस रोज़ थोड़ा सा काम कीजिए। पहला दिन बेसिक्स, फिर प्रैक्टिस, फिर छोटा सा प्रोजेक्ट, और फिर अपने काम को चेक कीजिए और 30 दिन बाद देखिए कि आपने शुरुआत से अब तक कितना सीखा है। दोस्तों, इस साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम थी स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। यूनाइटेड नेशंस ने इस वर्ष ये बात सामने रखी कि बदलती दुनिया में युवाओं को टेक्निकल और डिजिटल स्किल्स के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और अन्य ह्यूमन स्किल्स की भी ज़रूरत है। करियर प्लानिंग का एक और बड़ा हिस्सा है नेटवर्किंग, यानी सही लोगों से जुड़ना। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े लोगों से पहचान बनाना नहीं है। आप अपने शिक्षकों से बात कर सकते हैं, अपने वरिष्ठों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप कैसे ढूंढी या अपने क्षेत्र में शुरुआत कैसे की। किसी प्रोफेशनल से उसके क्षेत्र के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, करियर से जुड़े कार्यक्रम, सेमिनार या वर्कशॉप में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर कोई सीनियर आपकी मदद करता है तो बाद में उसे ये बताना ना भूलें कि उसकी सलाह आपके कितने काम आई। कई बार एक छोटी सी पहचान भी आगे चलकर बहुत बड़ा काम करती है। लेकिन नेटवर्किंग करते समय एक बात याद रखिए, किसी से सिर्फ नौकरी मांगने के बजाय पहले उस क्षेत्र को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पूछ सकते हैं, इस क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए कौन सी स्किल ज़रूरी है, शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन सा प्रोजेक्ट कर सकता है, इंटर्नशिप के लिए मुझे किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। इस तरह की बातचीत से आपको ऐसी प्रैक्टिकल बातें पता चल सकती हैं जो शायद सिर्फ किताबों से सीखना मुश्किल है। और करियर की तैयारी में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, यानी काम करते हुए सीखने का अनुभव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कक्षा में पढ़ना और असली काम की जगह पर काम करना, दोनों का अनुभव अलग होता है। भारत में अप्रेंटिसशिप को भी स्किल डेवलपमेंट और काम करते हुए सीखने से जोड़ा गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के जरिए इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है। अब दोस्तों, नेटवर्किंग का असली फ़ायदा क्या है? सबसे पहले आपको यही जानकारी मिलती है कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सी स्किल सीखनी है और इंटर्नशिप या काम के मौके कहाँ मिल सकते हैं। दूसरा, आप दूसरों के अनुभव से सीखते हैं और उनकी गलतियों से बच सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, आपको उस क्षेत्र की असली तस्वीर समझ आती है। किताबों में जो पढ़ते हैं उसके बाहर काम वास्तव में कैसा होता है। तो नेटवर्किंग सिर्फ पहचान बनाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, सही जानकारी पाने और नए अवसरों तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो दोस्तों, आज हमने करियर को लेकर बहुत सारी बातें की। अपनी रुचि को समझना, अपनी स्किल्स पर काम करना, नए क्षेत्रों को जानना, AI का सही इस्तेमाल करना, लोगों से जुड़ना और असली काम करके सीखना। लेकिन इस सब के बीच शायद सबसे ज़रूरी बात यही है कि करियर का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी को जल्दी समझ आ जाता है तो किसी को थोड़ा समय लगता है। कोई एक ही रास्ते पर चलता है तो कोई रास्ते में अपनी दिशा बदलता रहता है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आज भी आपके मन में ये सवाल है कि मैं क्या करूँ, या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, तो परेशान मत होइए। ये सवाल आना बिल्कुल सामान्य है। कई बार 30-40 साल की उम्र में भी इंसान रुककर यही सोचता है कि वह जो कर रहा है क्या वे सही है। इसलिए किसी और की ज़िंदगी देखकर अपने रास्ते का फैसला मत कीजिए। अपने मन की सुनिए, अपनी रुचि के साथ कर्म करते रहिए, सीखते रहिए, और ज़रूरत पड़े तो रास्ता बदलने से भी मत डरिए। और जब कभी लगे कि बहुत कुछ उलझ गया है तो थोड़ा रुक कर खुद से कहिए, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब सुनते हैं 3 इडियट्स फिल्म का ये कमाल का गीत।
ऑल इज़ वेल।

दोस्तों, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला। आशा है आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और जो जानकारियाँ आपको मिली उन्हें आप अपने दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे। आप सभी अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं तनिष्का लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ,

0: मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज़ में ये गीत केदारनाथ फिल्म से, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के।

अगली आवाज़ सुनिए शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और शुभादीप दास की फिल्म धुरंधर से। ये गीत लिखा है इरशाद कामिल और साहिर लुधियानवी ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश विशेष कार्यक्रम, विषय है पीएम आवास योजना।
1: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ

अभिषेक कटियार। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है।

0: हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार।
0: तो आइए जानते हैं कि पीएम आवास योजना ने कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। और मेरा सबसे पहला सवाल बजमी जी आपसे है कि पीएम आवास योजना के तहत अब तक क्या कुछ हुआ है, इसके आंकड़ों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, पीएम आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्देश्य लोगों को आशियाना मुहैया कराना है।
0: जी,
1: योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई और शुरुआत में ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी, बाद में फिर ये शहरी क्षेत्र के लिए आई। इसका मकसद था गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को छत देना, क्योंकि देश की बड़ी आबादी कच्चे मकानों में रहती थी, झोपड़पट्टी के मकान थे, झोपड़ियां थी, कुछ लोग किराए के मकान में रहते थे। सरकार की सोच ये थी कि लोगों को उनका अपना घर मिले
0: जी।
1: और वो घर ऐसा हो कि जिसमें उनको एहसास हो कि हमारा ये अपना घर है
0: जी।
1: और स्वच्छता के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। इसके चलते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। ये योजना अप्रैल 2016 से अमल में आई।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। पीएम आवास योजना को सिर्फ एक घर बनाने की योजना के तौर पर समझना कितना सही है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए और इसका उद्देश्य क्या है।
1: भाई देखिए, योजना की मंशा ये है कि परिवारों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक घर उपलब्ध कराना।
0: जी,
1: यही कारण है कि सरकार ने हर एक परिवार को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया। मैदानी इलाकों में एक घर के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी तथा कठिन दुर्गम क्षेत्रों में ये राशि बढ़ाकर 1,30,000 रुपए की सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया।
0: जी,
1: इसके अलावा शौचालय के लिए 12,000 रुपए और मनरेगा के जरिए निर्धारित मजदूरी दिवस का प्रावधान भी किया गया। यानी सरकार की कोशिश ये रही कि हर परिवार को सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि शौचालय, पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा जीवन मिले।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिर्फ एक मकान बनाने की योजना नहीं बल्कि पूरे रहन सहन के स्तर में भी सुधार की एक योजना साबित हो रही है पीएम आवास योजना। बजमी जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पीएम आवास योजना ग्रामीण का यहाँ कितना बड़ा असर दिखाई देता है?
1: देखिए, मध्य प्रदेश इस योजना के बड़े लाभार्थी राज्यों में शामिल है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश के लिए करीब 58 लाख घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। इनमें से करीब 54 लाख घर स्वीकृत किए जा चुके हैं और करीब 43,38,000 घर बनकर पूरे भी हो चुके हैं। पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश को करीब 19,000 करोड़ रुपए की राशि दी है। इन आंकड़ों को सिर्फ निर्माण की संख्या के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के गांवों में एक परिवार के लिए पक्का घर मिलने का मतलब है कि बारिश, गर्मी और दूसरी मौसम की परेशानियों से सुरक्षा बढ़ाना, बच्चों के लिए रहने पढ़ने को बेहतर जगह मिलना और परिवार के पास एक स्थायी संपत्ति होना, यानी आवास सुरक्षा, परिवार की सामाजिक स्थिति, जीवन की स्थिरता, तीनों पर इसका असर पड़ सकता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कहीं ना कहीं पीएम आवास योजना के तहत जब किसी को घर मिलता है तो सिर्फ एक मकान नहीं मिलता बल्कि उसके पूरे जीवन स्तर में भी सुधार होता है। पीएम आवास योजना से लोगों के जीवन स्तर में किस प्रकार से सुधार हुआ है, इसको थोड़ा विस्तार में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, इस योजना के तहत घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, ये जान लीजिए। अगर परिवार लंबे समय तक कच्चे या असुरक्षित घर में रहता है तो बारिश, बीमारी, साफ सफाई और बच्चों की पढ़ाई जैसी कई चीजों पर उसका असर पड़ता है। कई अध्ययनों में ये बात अलग अलग समय सामने आई है कि इस योजना से आवास सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, परिवार की आय और बचत जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखा गया। अध्ययन में बेघरपन और मजबूरी में होने वाले पलायन में कमी तथा वित्तीय समावेशन में सुधार की बात भी सामने आई है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है। अपना घर होने से परिवार को स्थायित्व और सुरक्षा का एहसास मिलता है। खास बात यह है कि इस योजना के करीब 75% स्वीकृत घर महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। इसका मतलब यह है कि आवास योजना के जरिए

0: लिए एक तरफ परिवार को संपत्ति मिल रही है तो दूसरी तरफ महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ रही है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, कहीं ना कहीं सिर्फ एक पारिवारिक संपत्ति के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती जा रही है ये पीएम आवास योजना।
2: तो आइए सुनते हैं कि किस प्रकार से पीएम आवास योजना खंडवा जिले के नर्मदा प्रसाद की जिंदगी में एक नया बदलाव लेकर आई।
3: हर किसी का सपना होता है अपना एक आशियाना, जहां सुकून हो, सुरक्षा हो और खुशियों का हो ठिकाना। जब सरकार की योजना बनी सहारा तो पक्की छत ने बदल दिया जिंदगी का नजारा। यह कहानी है खंडवा जिले के ग्राम आशापुर विकासखंड खालवा निवासी श्री नर्मदा प्रसाद की। कभी श्री नर्मदा प्रसाद कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ जीवन बिताते थे। बारिश और मौसम की चुनौतियों के बीच पक्के घर का सपना था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला तो यह सपना हुआ साकार। आज श्री नर्मदा प्रसाद के पास अपना पक्का और सुरक्षित मकान है। पक्की छत मिलने से परिवार के जीवन में सुरक्षा और खुशियों का नया अध्याय जुड़ गया है। वहीं पक्का मकान मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया।
4: पहले कच्चे मकान में इसी जर्जर स्थिति के मकान में रहता था। माननीय प्रधानमंत्री जी की दया दृष्टि से मेरे को पीएम आवास योजना का लाभ मिला। इससे मैं आज कच्चे मकान से बढ़िया पक्के मकान में रह रहा हूँ। इससे मैं और मेरा परिवार पूरा संतुष्ट है और अच्छे से पक्के मकान में निवास कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और एवं आभार व्यक्त करता हूँ।
5: मेरा पूर्व में कच्चा मकान था, प्रधानमंत्री आवास द्वारा मुझे इस योजना का लाभ मिला है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे इस लाभ की और मेरे मकान का काम चल रहा है, अभी भी मतलब कुछ कार्य बाकी है, तो मैं इस योजना के द्वारा जो भी मुझे लाभ मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ।
6: पहला मेरा कच्चा मकान था, अब मेरा पक्का मकान हो गया है। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2025 में आवास उपलब्ध हुआ। मैं अपने परिवार सहित बहुत खुश हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को भी धन्यवाद देती हूँ।
7: मेरा पहले कच्चा घर था, अब बहुत सुंदर थे, बहुत अनकरार। जब पानी बरसात का पानी आता फिर 2018 में मैं सर्वे में अपना नाम जुड़वाया, आवास मेरा नाम जुड़ गया। जुड़ने के बाद फिर उसके बाद 6 से 7-8 महीने के बाद मेरा घर आ गया पक्का आवास, जिसको बोलते प्रधानमंत्री आवास। और अब जाके कम्प्लीट हो गया, बढ़िया घर बन गया। अब हम बच्चे बीवी सब कोई मिल के वही आवास प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। और एक नंबर का मैं चुनता रोक था, मोदी जी की इतनी कृपा थी कि एक नंबर का घर दे दिए, पैसा दे दिए तो घर बनवा लिए। अब उनको हम तहे दिल से आभार और ऐसे ही बने रहे प्रधानमंत्री और हम लोगों को ऐसे जिंदगी भर।
2: वहीं प्रदेश की ये ग्रामीण महिला भी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ अन्य विकासपरक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में आए परिवर्तन को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताती हैं।
8: पूरा कच्चा था, इधर से भी दीवार टूट गई थी, इधर से भी टूट गई थी, आगे और कच्चा था। अंध तूफान जो बारिश के पहले आते हैं उसमें अपना ये छप्पर उड़ जाता, पन्नी फट जाती, टपका जगह जगह पानी गिरता। फिर उसके बाद में गरीब जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, वो देखते नहीं थे कि गरीब कैसा है, कहाँ क्या कर रहा है, ये कोई सहायता ही नहीं मिली गरीब को। पहले से बहुत परिवर्तन आ गया, आवास योजना चलाई, शौचालय बनवाए, उज्ज्वल योजना दी, गाँव की महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हित के बारे में उन्होंने बहुत तरक्की दी, महिलाओं को सम्मान दिया कि महिला आगे है और आगे ही रहना चाहिए। हम तो ये धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को कि भगवान आपको सदा सलामत रहे, अच्छा रखे, क्योंकि आपने हमको इतनी योजनाएं जो दी हैं उससे हम खुश हैं, धन्यवाद देते हैं आपको।
2: निश्चित रूप से पीएम आवास योजना ने लोगों की जिंदगी को संवारा है, उनकी पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन किया है, उन्हें एक छत ही नहीं दी बल्कि जीने का संबल प्रदान किया है। बजमी जी, अब अगर हम बात करें पीएम आवास योजना में किस प्रकार से काम होता है, इसमें आवेदन की प्रक्रिया क्या है, क्या कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: देखिए, योजना के तहत पात्रता और पहचान की एक प्रक्रिया है
2: जी,
0: सरकार ने उसके मानक तय किए हैं, इसके आधार पर ही आवंटन होता है। मसलन ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों की पहचान सेंसेक्स 2011 और आवास के आंकड़ों, आवास से जुड़ी वंचितता के मानकों और तय किए गए एक्सेलेशन क्राइटेरिया के आधार पर की जाती है
2: जी।
0: इसके बाद ग्राम सभा के स्तर पर सत्यापन और अपील की प्रक्रिया होती है
2: जी।
0: अब सरकार ने इस प्रक्रिया को और तकनीक आधारित बनाने की कोशिश की है। आवास 2024 ऐप के जरिए सर्वे आधारित EKYC फेस ऑथेंटिफिकेशन जियो टैग तस्वीरें और घर की स्थिति से जुड़ी जानकारी दर्ज की जा रही है। सरकार ने फर्जीवाड़े की संभावना खत्म करने के लिए AI आधारित तकनीक के इस्तेमाल की भी जानकारी दी है। भुगतान भी आधार आधारित DBT के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाता है। यानी अब सवाल सिर्फ किसे घर देने का नहीं है, बल्कि सही पात्र व्यक्ति की पहचान, पारदर्शिता और घर के निर्माण की निगरानी भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
1: बिल्कुल ठीक है, आपने कहीं ना कहीं एक प्रॉपर निगरानी और मॉनिटरिंग भी की जाती है कि आवास कब तक किस स्थिति में पहुंचा और कितने लोगों को आवंटित हुआ। शहरों की अगर बात की जाए तो उसकी तस्वीर थोड़ी अलग होती है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में मध्य प्रदेश के लिए क्या कुछ प्रगति हुई है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें।
0: शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना का फोकस उन परिवारों को सुरक्षित और किफायती पक्का घर उपलब्ध कराने पर है जो आर्थिक रूप से कमजोर या निम्न और मध्यम आय वर्ग में आते हैं। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को सितंबर 2024 से लागू किया गया है और इसमें अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें अपना घर बनाने, किफायती घर खरीदने, किफायती किराए के मकान और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी जैसे विकल्प शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 20 जून 2026 को 42,000 से ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत मकानों के सैंक्शन लेटर भी दे दिए गए और करीब 38,000 परिवारों ने नए पक्के घरों में गृह प्रवेश किया। उस समय तक प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10.39 लाख से ज्यादा मकान स्वीकृत हो चुके थे और 9.8 लाख मकान पूरे हो चुके थे। यानी मध्य प्रदेश में योजना का असर सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं है, शहरों में भी ये कच्चे या किराए के असुरक्षित आवास से अपने पक्के घर की तरफ बढ़ने का रास्ता बना रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई और इससे स्पष्ट है कि पीएम आवास योजना सिर्फ ईंट और गारे से चार दीवारें खड़ी करने की एक योजना नहीं, बल्कि यह देश के हर गरीब परिवार को सुरक्षा, स्वाभिमान और एक नए जीवन का एहसास कराने का माध्यम बनी है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जिस तरह से पारदर्शिता के साथ लोगों को उनके सपनों का पक्का घर मिल रहा है, वह विकसित भारत के संकल्प की ओर एक मजबूत कदम है। बजमी जी, आज हमारे साथ जुड़ने और इतने महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और श्रोताओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए आकाशवाणी।
9: अभी आप प्रादेशिक समाचार एकांश विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। विषय था पीएम आवास योजना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
10: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात 1936 से आकाशवाणी आप

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: Potata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इंसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं और अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीरू ढांडा और कायन चेनाई को एशियन गेम्स 2026 में ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि ये निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के बीच के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक बैठक के बाद लिया गया। और प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यन।

0: अगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
1: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
1: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
0: आपने लिखा है, सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
1: चरखी दादरी हरियाणा से
0: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
1: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है, नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
0: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
1: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
1: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
0: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
1: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
1: श्रोताओं, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
0: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
1: जी।
0: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
1: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
0: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
1: जी।
0: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
1: जी।
0: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
1: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
0: बिल्कुल, साथियों, उसने अपनी कक्षा में यह भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
1: जी।
0: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में पानी विस्थापित हो सकता है।
1: जी।
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी।
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहाँ मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहाँ आ पहुँची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल, श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है, क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझ कर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी।
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है।
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी कभी हमें सही बात पता होती है, लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही।
1: जी।
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, ये जरूर जाने।
0: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, और वो ये कि
1: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है।
0: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए,
1: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए।
1: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: जो अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी ना हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स स्टेशन के पास था।
0: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
1: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती, वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
0: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
0: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
1: जैसे जैसे वो बड़े होते गए, विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते, तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते, तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
3: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।

0: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
1: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
0: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
1: बंदूक भी चलाते हो?
0: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
1: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
0: हाँ।
1: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
0: जरूर पुत्र, जरूर। लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
1: जी चाचा।
2: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
3: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
2: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
3: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
2: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
3: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई के लिए रखा जाता है।
4: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
5: निर्मल सर, आप यहाँ?
4: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
5: सर ये तो हमारा काम है।
4: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
5: सर आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
4: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश देना। हाँ पॉलिश दे। अब देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
2: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
4: एक मिनट मान सिंह, तो मैनू फिट होन दे यार। एक मिनट, मैं अपने घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना।
3: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्ध हस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे।

0: जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
1: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
0: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
1: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखो ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखो हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
0: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
1: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, आपके विमान को गोली लगी है, आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
3: सर, अभी तो दुश्मन के 2-2 जहाज मेरे सामने हैं। जब तक मारूंगा नहीं, तब तक लौटूंगा नहीं। दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है, निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं, वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
2: फ्लाइंग ऑफिसर सेखो, दुश्मन के 2 और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
3: सर, अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है, उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
0: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
1: अब दुश्मन के 4 विमान बचे थे। 2 विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने बचे हुए 4 विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
3: ओए कायरो, और भागते कहां हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
0: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
1: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
3: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
0: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
1: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
0: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
4: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
5: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
4: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
5: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
5: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
4: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
4: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सुनिए आतिफ असलम की आवाज में ये गीत टाइगर जिंदा है फिल्म से।

और अब सुनिए भूल भुलैया 3 से ये गीत गाया, लिखा और संगीत दिया है आदित्य रिखारी ने, और साथ ही आवाज़ है तुलसी कुमारी की।

गब्बर इज बैक फिल्म से ये गीत सुनिए. अरिजीत सिंह, पलक मुच्छाल की आवाज़ है, मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है चिरंतन भट्ट का.

और अब अंतिम प्रस्तुति में सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म से। ये गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें हैं, वरुण ग्रोवर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है अनु मलिक का।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी देती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी चार कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज

0: जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम 8 विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। शाम 8:35 पर और रात 10:20 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण में कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात 10 एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स प्रस्तुत होगा। और रात 10:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पंडित गिरिराज से सितार वादन का आनंद लीजिएगा। राग होगा रागेश्री।

अब कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल गुरुवार यानी 1 अक्टूबर की सभा में। कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिएगा। कल सुबह 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत प्रस्तुत होगा। सुगम संगीत कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा मुकेश बंसोड़ी की आवाज में भजनों का। तबला संगीतकार होंगे अशेष उपाध्याय। कल सुबह 9:30 पर नाटक सपना और सच प्रस्तुत होगा। कल सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी और 10:05 पर विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 10:40 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल।

0: बंगाल के प्रसारण में। अब प्रमुख कार्यक्रम जो आप कल की सभा में सुबह 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुनेंगे। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। दोपहर 12 बजे और 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। कल दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 13वीं कड़ी सुनिएगा। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और कल शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये सभी कार्यक्रम होंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति में। कल शाम 5:33, 6:30, 8:35, रात 9:30 और रात 10:20 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। शाम 7:25 पर बुंदेली समाचार और कल शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी प्रस्तुत होगा। कल शाम 8 बजे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा आप सुनेंगे। कल रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स और कल रात 10:30 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी प्रस्तुत होगा, जिसमें आप आनंद लेंगे राग बिहाग में ख्याल गायन का। पेश करेंगे यशवंत दुआ जोशी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और PPE किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि
1: रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के लिए 1,789 करोड़

0: से अधिक की अनुमानित लागत वाली इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को मजबूत कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण की क्षमता विकसित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के प्रस्तावित मार्च तथा ईडी गठबंधन की बैठक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। एनआई के अनुसार श्री चौहान ने कहा कि 2 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ मार्च को वे परिवार बचाओ मार्च मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी हार के बाद आत्ममंथन करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगती है।
1: ये सेव डेमोक्रेसी मार्च नहीं है, ये सेव डायनेस्टी मार्च है, परिवार बचाओ अभियान। लेकिन जनता ने तय किया कि अब परिवारवाद की राजनीति चलने नहीं। अभी चुनाव नजदीक आते हैं, तब ये इंडी गठबंधन, राहुल जी, खड़गे साहब, ये या तो अदालतों पर या संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिकरण करने लगे। अगर कोई अदालत मन के मुताबिक फैसला ना दे तो न्यायपालिका पर सवाल उठाते, विदेशी धरती पर जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की वकालत करते हैं। ये देश की बात करेंगे, देश के लोकतंत्र की बात करेंगे? जब जनता के दिल से मोदी जी को नहीं हटा पाए, एक बार फिर अराजकता और देश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं।
0: श्री चौहान ने इंडी गठबंधन की बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि बैठक से पहले ही गठबंधन में मतभेद सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ प्रमुख दलों के नेता बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि उद्धव ठाकरे वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर नीरू ढांडा और कायन चेनाई को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भारतीय जोड़ी ने फाइनल में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए स्पर्धा में भारत के लिए पहला एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय तीरंदाजों ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एशियन गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ शुरू हुआ ये सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से रूबरू करा रहे हैं, जहां सरकार की सोच और काम ने जमीन पर बदलाव की तस्वीर सामने रखी है। तो आइए जानते हैं कि उमरिया जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला रही है।
3: उमरिया जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मध्यम एवं लघु रकबे के किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान पर उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका समृद्ध हुई है। ग्राम परसौरा निवासी किसान सूरज पाल सिंह बताते हैं कि
4: कृषि विभाग द्वारा मुझे खेती किसानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइप प्रदान की गई, जिसे मेरी सिंचाई क्षमता की गई और उसे मुझे आर्थिक लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।
3: उमरिया जिले के कृषि एवं किसान कल्याण अधिकारी संग्राम सिंह मरावी बताते हैं कि
5: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्रीय योजना है और इसमें 2025 में 69 किसानों को लाभान्वित किया गया था। 2026 में 75 किसानों को अभी लाभान्वित किया जा चुका है और इसकी प्रक्रिया सतत पंजीयन का चालू है और यह मार्च तक चलेगी।
3: आकाशवाणी भोपाल के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे। आरसीवीपी नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में सुबह 10:30 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम में 500 से अधिक वरिष्ठ जन शामिल होंगे। इस अवसर पर 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वहीं प्रदेश भर में वरिष्ठ जनों के लिए स्वास्थ्य जांच, डिजिटल प्रशिक्षण, मनोरंजन गतिविधियां और उनके अधिकारों तथा सहायता व्यवस्थाओं की जानकारी देने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल परिसर में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत करीब 10 स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया गया, कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता मित्रों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर केंद्र के क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा पी वर्धन, स्वच्छता ही सेवा अभियान के नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक देवेंद्र कुमार सक्सेना सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। किसान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार www.mpeupargan.nic.in पर पंजीयन करा सकेंगे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालयों और सहकारी संस्थाओं के केंद्रों पर पंजीयन निःशुल्क होगा, जबकि एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर तथा लोक सेवा केंद्रों पर अधिकतम ₹50 शुल्क लिया जा सकेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सरकार सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मध्य प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और सह प्रभारी रेखा वर्मा आज भोपाल पहुंचे। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ये उनका पहला महत्वपूर्ण दौरा है। कटनी, मुरैना, आगरमालवा और खंडवा जिलों में आज सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले में शासकीय आईटीआई भानपुरा में जिला रोजगार कार्यालय एवं जिला प्रशासन द्वारा युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलीराजपुर में युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए विशेष अभियान 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। झाबुआ जिले में कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरकोट और उप स्वास्थ्य केंद्र सेमलिया का निरीक्षण किया। छिंदवाड़ा में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 2,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भोपाल में वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और प्रदेश में सोयाबीन उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप? सभी कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहता है कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, क्या खेती किसानी को कामकाज हैं और वो तो घर में बैठ के होते नहीं है। और इस समय तो भैया देखो, मौसम में भी अपन को हल्को हल्को बदलाव भी देखने को मिल रहा है, क्या कि भैया देखो अब धीरे धीरे भैया जो ठंडक है वो अपनी बढ़त जा रहा है। और मौसम को देखा तो भाई अपन को अपने खान पान और पहन भी ओढ़ भी के कपड़न को विशेष ध्यान रखना है, क्या कि भैया जरा सी भी लापरवाही करी तो जा मान लो कि अपने ना तो खेती किसानी के कामकाज ना ही अपने घर गृहस्थी के कामकाज सही ढंग से और सही समय पर पूरे हो पाए। और भैया देखो, अभी बसकाओं को मौसम निकल रहा है और बसकाई के मौसम के बाद भैया सबसे बड़ी जो परेशानी अपन को होते हैं वो है भैया साफ़ सफाई की और रुके हुए पानी को हटावे की, क्या कि भैया इस समय अगर अपन ने मच्छर को प्रकोप नहीं रोको, उनको पनपने से नहीं रोको, तो जब मान लो कि मलेरिया चिकन

गुनिया और डेंगू तक अपन को हो सकते हैं। तो ई कहलाना जरूरी है कि अपने गांव देहात अपनी पंचायत के आसपास अगर कोनू जगह गंदो पानी रुको भाव है तो भैया उखो निकारवी को प्रयास करें। और घरन की छतन पे अगर अपने टायर वगैरह पड़े हैं और मटका वगैरह या डिब्बा डिबरियाँ पड़े हैं उनमें अगर पानी बरसकाय को रुक गया है तो उनमें भी अपन को जाके देखने हैं, उनको पानी भी अपन को निकालने हैं। और कोनो ऐसी जगह भैया जहाँ पानी को सही निकास नहीं हो पा रहा है तो होता है भैया अपन मिट्टी के तेल को या दवा को छिड़काव भी कर सकते हैं, ताकि मच्छर अगर पनपें तो भैया मच्छर अपने आसपास अपन को काटे भी और इससे अपन को बीमार भी हुए। तो भैया इस समय थोड़े से मच्छरों से अपने आप को बचाव रखें। और अपने अगर घर में चोनों छोटे लड़का बिटिया है तो उनको तो भैया अपन को विशेष ध्यान रखने हैं, उनको भैया फुल बाजू के जो कपड़ा है वो पहना के रखें और हो सके तो भैया मच्छरदानी को अपन को उपयोग करने हैं। क्योंकि जरा सी अपन अगर सावधानी रखें, सतर्कता रखें तो भैया अपन मौसम को भी आनंद ले सकते हैं और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो कुल मिला के जा है कि अपन खून रुके हुए पानी को रोकने हैं और साफ़ सफाई को विशेष ध्यान रखने हैं। भैया देखो बतकाओ तो हम अपने श्रोता भैया से और भी करें, लेकिन अब हम आपको सुनवा देते हैं अर्चना जाटव के स्वर में जो नोनो तो लोकगीत।

देखो अबे आपने सुनो अर्चना जाटव के स्वर में जो 900 लोकगीत। भैया देखो कार्यक्रम है, हम आपको समय समय पर वार्ता और भेंट वार्ता के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी है वो तो देते रहते हैं, संगे संगे भी अपने हम आपको मनोरंजन भी कराते हैं। तो भैया देखो आज हम आपको सुनवा रहे हैं काव्य पाठ, और काव्य पाठ कर रहे हैं मांगे।

0: कर्नल मनमिट। तो भैया सुन लेते हैं जो 900 काव्य पाठ।
1: किस्य श्यामला सुजला सुफुला, शस्य श्यामला सुजला सुफुला, सारे सुख संचारती, वंदनीय हे वीर प्रसूता, जय हिंदी माँ भारती, जय हिंदी माँ भारती। अरे सस्य श्यामला सुजला सुफुला, सस्य श्यामला सुजला सुफुला, सारे सुख संचारती, वंदनीय हे वीर प्रसूता, जय हिंदी माँ भारती, जय हिंदी माँ भारती। हेमाच्छादित शिखर सलोना, हेमांचल पहचान है, ओ कश्मीर केसर की क्यारी, कुसुम कली की शान है। हरियाली हरियाणा हर्षित, हर हल धर धनवान है, गुरु ग्रंथ नानक की वाणी, वो पंजाब महान है, वो पंजाब महान।

आरे सुख संचारती बंदनीय हे वीर प्रसूता जय हिंदी माँ भारती। हरी भरी घाटी की माटी सदा सुमन से सजती है, ओ पायल प्रकृति अधिष्ठात्री की रुनक झुनक सी बजती है। कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सकल सभ्यता पलती है, गंगा गोदावरी गंडक गह्वर सागर जो मिलती है, गह्वर सागर जो मिलती है। और भ्रम भय भागे भ्रातृ भाव से, ब्रह्म भय भागे भ्रातृ भाव से कुत्सित कटुता हारती।

लाए राजस्थानी रस लाए। तुलसी रस खान कबीरा की कविता घर घर गुंजारती। बंदनीय है वीर प्रसूता जय हिंद।

हे वीर प्रसूता, जय हिंदी माँ भारती, जय हिंदी माँ भारती, जय हिंदी माँ भारती। वंदे मातरम के हिंदी।

विज्ञान राष्ट्रभाषा हित ये अभियान विश्व में बन जाए पहचान राष्ट्रभाषा हित ये अभियान रसरंजित अति अलंकृत स्वर व्यंजन की ताल यति

अनानंद रस घोल, सूर तुलसी कबीर के बोल। देव भूमि पर प्रण करें, सत्ता से संवाद राष्ट्रीय।

0: देश जय हिंदी जय भारती की आठ आठ आंसू रोए भव्य भारती, आठ आठ आंसू रोए भव्य भारती, हिंदी आज हिंद से हिसाब मांगती, आठ आठ आंसू रोए भव्य भारती। संस्कृत शिशकति सिमटि यहाँ, देववाणी उपमा दे बेचाहे कहाँ, बोलत विदेशी बोली बाचाली वहाँ, संसद सदन सारा गौरव जहाँ, संसद सदन सारा गौरव जहाँ। हुआ ह्रास हिंदी का निदान चाहती, हिंदी आज हिंद से हिसाब मांगती, आठ आठ आंसू रोए भव्य भारती। कि दूषित विचारों से साहित्य रो गया, सद ज्ञान सागर सतह सो गया, भूगोल में भारतीय भाव खो गया, साधना स्वदेशी का सफाया हो गया, साधना स्वदेशी का सफाया हो गया। मृत प्राय मातृभाषा मुक्ति मांगती, हिंदी आज हिंद से हिसाब मांगती, आठ आठ आंसू रोए भव्य भारती। आंग्ल भाषा जिनका जीवन प्राण है, बाकपट राष्ट्र व्याधि व्याख्यान है, जिनके भरोसे युग निर्माण है, गिरवी रखा हम यहाँ स्वाभिमान है, गिरवी रखा हो जहाँ स्वाभिमान है। निज नव निर्माण माटी चाहती, हिंदी आज हिंद से हिसाब मांगती, आठ आठ आंसू रोए भव्य भारती।
1: भैया देखो, अभी आप सुन रहे थे मांगीलाल मर्मिट के स्वर में जो 999 काव्य पाठ।

0: भैया अब आपने सुनो बादाम सिंह और उनके संग साथी के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत। भैया देखो कार्यक्रम है, अपने आपको जानकारी भी देते संगे संगे हम आपको जो भी बताते रहते हैं कि भैया का काका अपन को जरूर करना है। भैया अपन देख रहे हैं कि ऊर्जा के बिना या कहते हैं कि बिजली के बिना अपनों कोनो काम काज नहीं हो सकते, ना वो अपने खेती किसानी के काम काज हों चाहे वो अपने घर गृहस्थी के काम काज हों। तो भैया हमको ऊर्जा के जो वैकल्पिक साधन हैं उनके बारे में भी विचार करने हैं, उनको भी जितना ज़्यादा हो सके अपन को उपयोग करते रहने हैं। क्योंकि जो अपने पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो भैया सीमित मात्रा में है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, अगर इनको भैया एक समय के बाद अगर जब मान लो कि अपन को मिल वो बंद हो जाए तो भैया अपना जीवन जो चक्र है वो भैया प्रभावित हो सकता है। तो ऊ के पहले भैया अपन जो ऊर्जा के वैकल्पिक जो साधन हैं स्रोत हैं उनको अगर अपन उपयोग करने लगें तो भैया इस अपना जो जीवन है वो सुखमय और अच्छा भी हो सकता है। जैसे कि भैया आजकल अपन देख रहे हैं कि अपनी छतन पर भैया जो सौर ऊर्जा के जो संयंत्र लग रहे हैं इससे अपनी जो जो लाइट है वो अपन को सूरज की रोशनी से मिल जाते हैं, तो अपने जो घर के जो उपकरण हैं जो अपने पंखा है, लाइट है, बिजली भी अपन को सुचारू रूप से चल सकते हैं। तो देखो भैया जो एक आधुनिकता के कारण भैया अपन को जो संभव हो पाओ है कि अपन कोयला से जो बिजली बनत है ऊपर जो अपना आश्रय है वो अपन कम है, और संगे संगे भैया अपन देख रहे हैं कि आजकल पेट्रोल जो गाड़ी हैं उनके अलावा जो बैटरी की गाड़ी हैं जो वो भी भैया बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं, इसे भी अपन को भैया जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको भैया जो अपनों धीरे धीरे जो निर्भरता है वो अपन अपन कम करते जा रहे हैं। तो कुल मिला के जाए कि भैया अपन को जीवन अपन अच्छा बनाने हैं तो वैकल्पिक जो स्रोत हैं उनकी तरफ अपन को रुझान करने हैं और उनको अपनी दिनचर्या में शामिल करने हैं। इसे भैया अपनों पर्यावरण भी अच्छा हुई है, और जो कहते हैं ना कि भैया पेट्रोल का उपयोग करने से जो धुआं निकलता है इससे अपन वातावरण भी दूषित होते हैं और इससे भैया अपने वो स्वास्थ्य भी ख़राब होते हैं। तो धीरे धीरे भैया अपन को इनको कम करने हैं और अपनों को वैकल्पिक स्रोतन को अपनाने हैं। तो भैया देखो बताओ तो और भी करें, कहे कि भैया आज खास भी कछु है, कहे कि हम आपको सुनवाते हैं बुधवार को आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से दी गई फ़ोन पर मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह। तो सुन लेते भैया जो मौसम की जानकारी।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों मैं सबसे पहले आपको हमेशा की तरह मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीपीएस चौहान साहब आपको किसान भाइयों को मुर्गी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों सबसे पहले आप मौसम के बारे में जानिए। पिछले सप्ताह का मौसम आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम बादल रहे तथा हवा लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 36 से 37 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 77 से 81 और शाम को 63 से 79 प्रतिशत के बीच।

0: दर्ज की गई। किसान भाई आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल रहने तथा हल्की वर्षा होने का अनुमान है एवं हवा लगभग 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण और पूर्व उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 35.2 से 35.9 और न्यूनतम तापमान 25.6 से 26.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 75 से 78 और शाम को 60 से 63 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई संभावित मौसम में हल्की वर्षा का अनुमान को देखते हुए जो कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई संभावित मौसम में हल्की वर्षा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दर्शाई गई है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार वर्षा न होने की संभावना को देखते हुए सब्जियों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही किसान भाई फसलों और सब्जियों में इस समय फसलें तो लगभग पकने की अवस्था में सब्जियों में कीट व्याधि का नियंत्रण करें और फसल की हिसाब से बात करें तो इस समय अरहर की फसल जो बहुत देरी से बोई गई है किसान भाइयों ने बाद में बोई है तो उसमें खरपतवार नियंत्रण इस समय कर सकते हैं जब उनकी फसल यह 25 से 30 दिन की अवस्था पर हो। साथ ही किसान भाई उर्द और मूंग की बात करें तो इस समय उर्द और मूंग पकने की अवस्था में है। उर्द और मूंग की पकी हुई फसल की कटाई कर मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए उन्हें सुरक्षित खलिहान पर रखें। अगर मौसम साफ दिखे तो उन्हें सुखाकर उसकी गाही करें। साथ ही किसान भाई तोरिया की बात करें तो इस समय तोरिया की वायु तो तापमान बिल्कुल अनुकूल है और इस समय पर्याप्त मात्रा में नमी भी है तो इस समय तोरिया की उन्नत किस्मों का चयन कर बुवाई कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई तिल की बात करें तो तिल में इस समय पक्षी दत्ता और काली डंडी रोग की संभावना हो सकती है तथा दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु मैन को 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई धान की बात करें तो इस समय धान की फसल जो आपकी बाली निकलने की अवस्था में है और इस समय क्योंकि हल्की बरसात का अनुमान जरूर है लेकिन वर्षा अभी कई दिन से नहीं हुई है और आगे भी संभावना कमी है तो इस समय धान की फसल को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो धान की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें जिससे आपकी बाली शीघ्रतापूर्वक निकल सके। साथ ही किसान भाई देरी से कोई भी सोयाबीन की बात करें तो उसमें इस समय चक्रभंगक और सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है तथा दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 से 800 ml दवा 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई सब्जियों की बात करें तो इस समय भिंडी फलन अवस्था में तो फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है तथा सतत निगरानी रखें तथा दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 से 3 छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई मिर्च की बात करें तो मिर्च में इस समय चूरा भूरा रोग की संभावना हो सकती है अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से इनका छिड़काव करते रहे। बैंगन की बात करें तो इस समय तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीवा क्रोन 1 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई नवरोपित फल वृक्ष जो आपने इस बरसात में लगाए हैं तो यदि उनमें आवश्यकता हो तो इस समय उन्हें सिंचाई करें। साथ ही किसान भाई पशुपालन की बात करें तो इस समय अधिकतर पशुओं जो गाय भैंस ब्याने का समय है अतः पशु के ब्याने के 1 घंटे के भीतर पैदा होने वाले शिशु को पर्याप्त मात्रा में यानी नवजात शिशु के भार का 1/10 भाग की खिलाने।
1: नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम डॉक्टर पीपी सिंह है। मैं आज आपको मुर्गियों की सीआरडी बीमारी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देने जा रहा हूँ। सर्दी की हल्की सी शुरुआत होने वाली है तो उस समय मुर्गियों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो सीआरडी बेसिकली है क्या? सीआरडी मुर्गियों के श्वसन तंत्र को धीरे धीरे प्रभावित करने वाली एक बीमारी होती है जो कि मुख्य रूप से माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु के कारण होती है। अब इस बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो उसके कारण सामान्य जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें खांसना, छींकना, नाक से पानी बहना तथा ब्रॉयलर मुर्गियों जो मांस के लिए पाली जाती है उनमें वृद्धि दर कम हो जाती है, उनका वजन सही से नहीं बढ़ता तथा लेयर मुर्गियां जो अंडा उत्पादन के लिए पाली जाती है उनमें अंडे की संख्या कम होने लगती है। सीआरडी बीमारी एक इस प्रकार की बीमारी होती है जो कि लंबे समय तक रहती है और मुर्गियों में खराब प्रबंधन तथा तनाव आदि कारक जब दिखाई देते हैं तब ये बीमारी दिखाई देने लगती है। सीआरडी बीमारी वास्तव में देखा जाए तो एक दूसरी बीमारी के साथ मिलके भी काम करती है, उसको अपन सीसीआरडी नाम से जानते हैं। सीसीआरडी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड सीआरडी बीमारी। होता क्या है, जब एक बार मुर्गी को माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्रभावित कर देता है तो मुर्गी का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो कमजोर हो जाता है और उस समय इकोलाई बैक्टीरिया का साथ में संक्रमण हो जाता है। जब ये दोनों संक्रमण मुर्गी को प्रभावित करते हैं तो अपन इस बीमारी को उस समय सीसीआरडी के नाम से जानते हैं। अब बीमारी के अगर फैलाव की बात करें तो बीमारी का जो फैलाव है हवा के द्वारा प्रभावित मुर्गी से जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनसे अगर अपन ने चूजे निकाले तो उन चूजों में पहुंच जाती है, प्रभावित मुर्गी से स्वस्थ मुर्गी में एवं प्रभावित मुर्गी के संपर्क में रखे हुए दाना, पानी के बर्तन, परिवहन के वाहन, श्रमिक इत्यादि के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। अच्छा, बीमारी के लक्षण मैंने पहले ही बताए थे कि मुर्गियों की नाक तथा आँख से पानी बहता रहता है, आँख के पास सूजन दिखाई देती है, ये एक प्रमुख लक्षण है जिसपे अपने को गौर करना चाहिए। मुर्गियों को भूख कम लगती है, सुस्त रहती है तथा शरीर भार कम हो जाता है, लेयर मुर्गी में अंडा उत्पादन कम हो जाता है और इन लक्षणों के साथ ही खांसना, छींकना, सांस लेने में कठिनाई होना तथा गले में एक विशेष प्रकार की आवाज दिखाई सुनाई देती है उसको अपन ट्रेकियल राल्स बोलते हैं। ट्रेकियल राल्स की आवाज जब सुनाई देती है तो द्वितीय संक्रमण के कारण ये ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देती है।
2: भैया देखो, अभी आपने सुनी आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से ली गई फ़ोन पर मौसम की जानकारी और जो कृषि सामयिक सलाह है और पशुपालन की जो सलाह है वो अपने दे रहे थे जानकारी डॉक्टर हरविंद सिंह और डॉक्टर पीपी सिंह चौहान। तो भैया देखो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर जो भैया अपनी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो अगर मुर्गी पालन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो जो बीमारी है उसको अपन को रोकथाम करने हैं और अपने जो मुर्गी पालन की जो अपन को व्यवसाय है उसको अपन को अच्छा करने हैं। तो भैया अब हम सुनवाते थे आपको भंवर सिंह अहिरवार के स्वर में जो उन्होंने सुलोक गीत।

भैया देखो, अब स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारों कर रही है कि हम अपनी सभी श्रोता भैयन से लेने आए विदा, तो चलते हैं सभी श्रोता भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए आईबीसी ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है, लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया? और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जनसेवा से देश सेवा, और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
2: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में ये राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के चार स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो, चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं। कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो, उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
3: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
4: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा IPC CRPC एंड एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूँ जिसकी डायरेक्ट बेरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे लिखाना है। देश की आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है, पुलिस का नाम आते ही छोड़ो इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब 0 FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है, इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
3: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहाँ पर खड़े हैं?
4: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए, इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था? जब ये कानून पुराने कानून थे उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही BPRD इंस्टीट्यूशन आता है और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि इन कानूनों को खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
3: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए, 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जनविश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है। इसने क्या किया है, उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा, क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है, तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा, तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या GST ने उसको और भी अलग कर दिया है, क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
3: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
3: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म।
3: जी,
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था। तो उससे निश्चित रूप से
3: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में। आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ है।
2: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी, क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था। दूसरी तरफ जो उसका, जिसके लिए ये बनाए गए हैं, उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और 4th जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन 4 कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी। L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन 4 कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 4 कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे, वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
3: ये जो 4 लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
4: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही, जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है, और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप 2 चीज़ों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए, 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स पे जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। आईबीसी के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी है क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूं, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी आईबीसी कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
3: बिल्कुल, और साथ ही अगर जीएसटी की बात करें, जीएसटी ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही जीएसटी परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। जीएसटी ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहां आप खड़ा पाते हैं जीएसटी पर, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं, और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी, और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है, और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है, और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर

0: जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है, और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
1: बिल्कुल।
0: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं, जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लेवल में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, और इससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
1: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप UPI पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहाँ तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक सोशल इंक्लूजन, मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और UPI की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज़ करते हैं तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गाँव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेहड़ी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना, ये बहुत बड़ा बदलाव था
1: जी।
2: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221.39 रुपया है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज़ 299 रुपीज़ क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक ज़माना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, और उस पर से भी कोटा भी है परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
1: है। और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
2: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको US में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
1: जी,
2: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था,
1: यही था,
2: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या, अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने

0: का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। दो तीन प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बड़ा है,
1: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। कार्यक्रम का विषय था व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। मर्डर 2 फिल्म से सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत, लिखा है कुमार ने और संगीत है सिद्धार्थ हल्दीपुर का।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश

0: दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बात।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों और निशानेबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित भारत के 60 पदक। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम के लिए प्रमुख दलहन और तिलहनों की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1,520

0: 9 ट्रैफिक सिग्नल्स है, ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में। ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहां पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
0: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में MNRE का रोल रहेगा, पावर ग्रिड का रोल रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का रोल रहेगा और बहुत सारा रोल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। जलंधर में आज नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान, पंजाब में उद्योगों को फिर से बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का भी आश्वासन दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है। पहले भारत रक्षा उपकरणों का बहुत बड़ा आयातक था, लेकिन आज यह एक उभरता हुआ निर्यातक बन रहा है।
3: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि आज नई दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में कई नेताओं के शामिल न होने के बाद गठबंधन को आंतरिक मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि DMK, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
4: लगातार कांग्रेस अपनी गलतियों पर माफी मांगने के बजाय भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की बैठक थी, लेकिन बैठक के पहले ही गठबंधन बिखर गया। और सच बात तो यह है कि इंडी गठबंधन राहुल को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
0: समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने उत्तर प्रदेश से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चुनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रिया घंगास और कपिल पोखरिया ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 27 ओवर में एक विकेट पर 262 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शतकीय

0: ये पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है।
1: और अब खेल जगत और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्रश्न निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में लगातार तीसरे दिन भी आज गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग सपाट कारोबार करता रहा और अंत में 49 अंक गिरकर 72,480 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 96 अंक नीचे आकर 22,620 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में तलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रिमंडल की अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा और ऊर्जा समेत आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves hike in MSP for all Rabi crops for marketing season 2027-28, clears 5,548 crore rupees procurement of major pulses and oil seeds at MSP in Uttar Pradesh, Karnataka and Telangana for current Kharif season. Prime Minister Narendra Modi says government is leaving no stone unturned to protect interests of farmers. Union Cabinet gives nod to Green Energy Corridor Phase 3 scheme to strengthen intra-state power transmission network, also approves intelligent traffic management system for Delhi. Prime Minister Modi and US President Donald Trump review bilateral cooperation in trade, defense, energy and critical technologies during their telephonic conversation. Gujarat ATS, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies arrest 5 Pakistani nationals in a joint operation, seize 526 kilograms of drugs from Iranian boat. And in Asian Games, Indian archers and shooters strike gold. India's medal tally rises to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze. Women's hockey team storms into final. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
4: रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से
5: The increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government

0: 2026 के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में कम से कम इमदादी कीमत एमएसपी पर 5,547.99 करोड़ रुपये मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वजारत ज़राअत ने कहा है कि यह फैसला किसानों को मार्केट की कीमतों में कमी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनकी पैदावार के लिए मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वज़ीर आज़म ने मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर के किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस फैसले से मुल्क भर के लाखों किसानों को अपनी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत के हुसूल को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले से मुतालिक काबीना के फैसले का भी खैर मकदम किया। वजीर आजम ने मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद मनाने के लिए गुज़श्ता बरस यकुम अक्टूबर से साल भर जारी रहने वाली सदसाला तकरीबात का आगाज किया गया था, जिसके इकदाम पर कल इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। यूपीएससी का क्याम साल 1926 में अमल में आया था। वजीर आजम मोदी इस प्रोग्राम में यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। नीज एक किताब का इजरा भी करेंगे, जिसका उन्वान है 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ये प्रोग्राम दो रोजा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका इनेकाद यूपीएससी की जानिब से आज और कल किया जा रहा है। वजीर आजम मोदी और अमरीका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तजारत, दिफा, तवानाई और अहम टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। वजीर आजम मोदी ने आज शाम अमरीकी सर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने आलमी अमन और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी कोशिशों समेत इलाकाई और बैन अक्वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खुसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
1: आत्मनिर्भर भारत एक ऐसी पहल है जिसका मकसद अंदरून मुल्क मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना, बरामदात पर इन्हिसार को कम करना और मुल्क को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पहल का आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में किया था, ताकि मुल्क को हर शोबे में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। पैदावार से मुंसलिक तरगीबात, ज़रई बुनियादी ढांचे से मुतालिक फंड, मेक इन इंडिया और बहुत छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के लिए तआवुन जैसे इकदामात का मकसद भारत की पैदावारी सलाहियत में इजाफा करना है। 79वें यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क से खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद इन्हेसारी को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है, और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है, और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आकाशवाणी से गुफ्तगू में रिटायर्ड कॉमोडोर श्रीकांत के स्नूर ने बताया कि भारत ने दिफा के शोबे में बड़ी पेशरफ्त की है और वो दिफाई साजो सामान के बड़े दरामदकार से एक उभरते हुए बरामदकार मुल्क के तौर पर उभर रहा है। आत्मनिर्भर भारत 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की खातिर मईशत को मजबूत, ज्यादा से ज्यादा बासलाहियत और मुस्तहकम बनाने का एक तवील मुद्दती विजन है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि गुजरात के इंसदाद दहशतगर्दी दस्ते ATS, भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते IGC और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरक कार्रवाई में एक

0: ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान कश्ती से 526 किलोग्राम मेथमफेटामाइन और हीरोइन जब्त की गई। ये कश्ती भारत के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने उजागर किया कि मोदी हुकूमत मुल्क के नौजवानों को मुनशियात की लानत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला ने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और ताउन की मिसाल कायम करने वाली 16 रोजा तवील कार्रवाई के दौरान एक ईरानी कश्ती भी कब्जे में ली गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2029 के आखिर तक पंजाब को मुनशियात से पाक कर दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और शिमाल मशरकी रियासतों में इंतहा पसंदी का खात्मा किया है। अब हुकूमत की तवज्जो पंजाब को मुनशियात से पाक बनाने पर मरकूज होगी।
1: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
0: पंजाब के शहीदों को जिनमें शहीद भगत सिंह और उधम सिंह भी शामिल हैं खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाब शाह ने कहा कि पंजाब कभी अपनी बहादुरी ज़राअत और खुशहाली के लिए मशहूर था लेकिन अब उसे मुनशियात के बढ़ते हुए मसले का सामना है। मरकजी वजीर दाखिला वजारत दाखिला ने कहा है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी की हलाकत जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा के नेटवर्क के लिए एक बड़ा धचका है। मूसा को बडगाम जिले के खान साहिब पुलिस स्टेशन के तहत वाक़ गुरवत कलां के इलाके में हलाक किया गया। वजारत ने कहा कि मूसा के हलाकत के साथ ही लश्कर तैयबा के वो चारों सीनियर कमांडर हलाक किए जा चुके हैं जो 2022 से जम्मू कश्मीर में सरगर्म थे। आकाशवाणी के खबरों के शोबे NSD ने अंग्रेजी जबान में आर्जी बुनियाद पर न्यूज एडिटर्स और न्यूज रीडर्स की खिदमात हासिल करने के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक अपनी दरखास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद जानकारी के लिए www.newsonair.gov.in पर रुजू कर सकते हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत के लिए आज का दिन अब तक का सबसे कामयाब दिन रहा क्योंकि आज भारत ने सोने के 4 तमगे हासिल किए। भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में हैट्रिक मुकम्मल की और खवातीन की टीम मिक्स टीम और मर्दों की टीम ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत ने निशानेबाजी में भी सोने का तमगा जीता और मिक्स ट्रैप टीम में पहली पोजीशन हासिल की। खवातीन की हॉकी में भारत ने आज शाम जनूबी कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में जुमे के रोज भारत का मुकाबला दिफाई चैंपियन चीन से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए उत्तर प्रदेश कर्नाटक और तेलंगाना में कम अज कम इमदादी कीमत पर 5548 करोड़ रुपए मालियत की दालों और तिलहन की खरीदारी की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी काबीना ने मुल्क में बिजली की बैन रियासती तरसील के निजाम को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे मरहले की स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने दिल्ली के लिए ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए इंटेलिजेंट निजाम की भी मंजूरी दी है। वजीर आजम ने मोदी और अमेरिका के सर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर तजारत दिफा तवानाई और अहम टेक्नोलॉजीज के शोबों में दो तरफा तआवुन का जायजा लिया। गुजरात ATS भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते और मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरक कार्रवाई में एक ईरानी कश्ती से 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Güzel çak abi şeyhi.
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है SIR और मतदाता सूची, प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर।

0: और चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार उमेश चतुर्वेदी।
1: इन दिनों दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। इस पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। मैं हूं उमेश चतुर्वेदी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी और चुनाव आयोग में महानिदेशक सूचना और संचार के तौर पर कार्य कर चुके वरिष्ठ अधिकारी अक्षय राउत जी। आप दोनों का चर्चा का विषय है कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहला सवाल अक्षय राउत जी से है कि राउत जी SIR की इस पूरी प्रक्रिया में जैसे कि चर्चा हो रही है कि मतदाता बहुत उहापोह में है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मतदाताओं की क्या भूमिका है? चुनाव आयोग तो जो करना है वो कर ही रहा है।
3: मतदाता ही तो चुनाव की सब कुछ है और मतदाता तो चुनाव की केंद्र है, तो मतदाता के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता के लिए वोट लिए जाते हैं, मतदाता सरकार बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो मतदाता की भूमिका तो हमेशा ही रहा है। और जब SIR की बात आपने कहा, एक चीज हम नहीं भूलना चाहिए जो कि जून 2025 एक साल से ज्यादा हो गया शुरू हुआ था बिहार में, उस टाइम तो एक अकेले स्टेट में हुआ था, उसके बाद ये नहीं भूलना चाहिए कि 20 राज्यों में हो चुका है, ऑलमोस्ट आखिरी पर्याय है, उसके बाद 2-3 स्टेट बचते हैं, तो उसका मतलब ये देश और ये लोग और इलेक्शन कमीशन का मशीनरी सब SIR की पर्पस, SIR क्यों किया जा रहा है, SIR कैसे होता है, सबको पता लग गया है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छी तरह जानकारी ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको वैधता के ऊपर जो अपना पूरा निर्णय दे चुके हैं कई बार, और बल्कि कुछ सुझाव भी दिए हैं, और उस सुझाव को नजर में रखते हुए जो चुनाव प्रबंधन है इलेक्शन कमीशन, उसने कुछ एक्शन भी लिए हैं और पिछले हफ्ते कुछ और भी एक्शन लिए हैं। तो ये बात जाहिर है, क्योंकि आप शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को खास करके शहरी क्षेत्रों में, ये बहुत विडंबना है कि गांव में लोगों को तकलीफ कम, शहर में खासकर दिल्ली जैसा शहर या NCR में मान लीजिए या महाराष्ट्र में मुंबई में, हर जगह में थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ हुआ है, और तकलीफ मतलब उनको ज्यादा जागरूकता के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल हैं, चाहे BLO हो ERO के साथ संपर्क रख के जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। और एक चीज मैं तुरंत बोल देता हूँ, एक तो है कि शहरी मुझे लग रहा है कि जो लोगों का जीवन प्रणाली है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, वोटिंग अधिकार या वोटिंग को उदासीनता के साथ देखते हैं, जो कि हमारा हर इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट शहरों से कम होता है, और इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि शहरी जो सिटीजन है उनका कोई खराब आदत है, खराब है, लेकिन गांव हिसाब से दिखा गया है कि इलेक्शन और प्रोसेस के लिए इनका उदासीनता थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसमें तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है। और ये जो बार बार जो प्रयास हो रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाया, बच गया, उनके साथ ज्यादा नाम कट गया, तो उसके लिए फिर कुछ कोर्स करेक्शन इलेक्शन कमीशन करता है, जैसे डेट शिफ्टिंग किया है अभी, और ये तो बहुत बड़ा चीज किया है कि अगर नोटिस गया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करके अगर नोटिस गया है तो उनके पास BLO जाएगा और उनके घर से अपना कागज पत्ती लेके आएगा, यहाँ तक फैसिलिटेशन किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि और पहले भी होना चाहिए, हो सकता है कि और पर्याप्त होना चाहिए, ये अलग बात है, क्योंकि ये स्पेशल समरी रिविजन या एनुअल रिविजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है, यह एक एन्यूमरेशन प्रक्रिया है, तो इसके लिए थोड़ी ज्यादा कोऑपरेशन सिटीजन से जरूरत होता है या वोटर से जरूरत होता है।
1: बिल्कुल,
3: तो
1: आपने
3: क्यों नहीं करें हम
1: कहा। और देखिए, मैं भी दिल्ली का मतदाता हूं और मेरे परिवार में 4 लोग हैं, चारों मतदाता हैं और चारों को नोटिस आया है, तो मैं बारी बारी से आया और मैं भी जब वहां गया देने के लिए या मेरे घर के लोग गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, जो डाटा मांगा गया था या जो दस्तावेज मांगा गया था हमने दिया। मैं जिस दिन गया था उस दिन भी मैंने देखा कि काफी संख्या में लोगों को नोटिस था, लेकिन कोई पैनिक नहीं दिख रहा था। लेकिन जिस तरफ से राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, ये सवाल अशोक जी से है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बड़ा पैनिक का माहौल है, तो कैसे देखते हैं आप?
2: देखिए, इससे पहले मैं थोड़ा चुनाव आयोग के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत में पहले एक सदस्यीय चुनाव आयोग होता था
1: जी।
2: तो तब भी चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते थे, फिर 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाया गया, फिर भी उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठते थे। जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था देश में तो बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा होती थी, बहुत लोग मरते थे, गोलियां चलती थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं इसको

0: हमने जो मतदाता पेटी से हटकर जो है ईवीएम लाया गया उससे चुनाव करना शुरू किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई दल चुनाव हारता है तो उसकी सबसे पहली शिकायत चुनाव आयोग के प्रति होती है। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूं, जब बलराज मदोप उस समय की जनसंघ के अध्यक्ष थे और जनसंघ 1971 का चुनाव हार गई तो उन्होंने कहा था कि ये कोई रशियन इंक आई है और जिसकी वजह से ये चुनाव जो है इसको मैनिपुलेट किया गया है। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू से लगते आए हैं और राजनीति इसमें होती है। देखिए, जब जब कोई भी दल चुनाव जीतता है तो वो ये कहता है ये हम अपने दम पर जीते हैं, लेकिन जब जब वो कोई दल विपक्षी दल खासतौर से जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम पिछले काफी दशकों से देखते आ रहे हैं। विशेष तौर से जब से हमने देखा कि ईवीएम मशीन आई तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, उसके बारे में कई तरह के सवाल उठे, बहुत से लोगों ने उसमें कहा कि हम करके दिखाएंगे, जो हमारी उंगली पर स्याही लगती है उस पर सवाल उठते रहे। तो ये लगातार प्रक्रिया चलती आ रही है। लेकिन उमेश जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो भारत के चुनाव आयोग की तरफ देखते हैं और भारत सरकार को वो एक तरह से सहायता मांगते हैं कि हमारे देश में आकर भी चुनाव प्रक्रिया को आप करवाइए, और इसके दर्जनों उदाहरण मिलते हैं। तो दुनिया में हमारे चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है वो इतनी अच्छी है, लेकिन अपने देश में मैं देखता हूँ कि चुनाव आयोग जो है, जिसको कहते हैं कि वो जिसको भी पीटना हो तो सबसे पहले वो चुनाव आयोग को पीटते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में अगर हम बात करें, जो अब चल के ये समस्या खड़ी हुई है, क्योंकि किसी एक अखबार ने लिख दिया कि कई मामलों में दो चुनाव आयुक्त जो थे उनकी टिप्पणी थी, इसका मतलब हुआ कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने धांधली की, उन्होंने मनमानी की, और इसलिए जो हैं ये चुनाव हारे। अब सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आ गई हैं कि मेरा तो पूरा का पूरा चुनाव ही जो था मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसमें गड़बड़ की। जब बांकीपुर का उपचुनाव हुआ तो उसमें आप देखिए कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा छोड़ी हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है
1: जी।
0: तो कहा गया नहीं नहीं ये तो इन्होंने जानबूझकर हारे हैं ताकि उसकी विश्वसनीयता बने। यदि कभी भी तुझ भी मेरी पट भी मेरी, तो विपक्षी दलों की जो भूमिका है, विशेष तौर से अभी 12 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि मोदी जी तो जैसे हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो इस तरह के आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोर हैं। तो कई चुनाव ऐसे हुए जो ये ज्ञानेश कुमार से पहले हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस हारी थी।
1: बिल्कुल।
0: तो कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, तो मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि इस विषय पर जो समाचार पत्र में छपा उसके बाद फिर से राजनीति गरमा रही है, वो इसलिए है कि इसमें दो कारण है। एक तो जो जो दल हारे हैं वो अपनी इसमें से किसानी बिल्ली चूहा नोचे वाली बात कर रहे हैं, और दूसरी कुछ लोग इसमें विपक्षी एकता किस मुद्दे पर हो सकती है उसका एक ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा आज ही एक मीटिंग हुई है, उसमें विपक्षी एकता का प्रयास किया गया, क्योंकि मुद्दा जो था चुनाव में तथाकथित धांधली, उसमें भी सभी विपक्षी दल नहीं आए हैं। यानी विपक्षी एकता इस मुद्दे पर भी नहीं हो रही है, लेकिन इसकी लकीर पीटना ये कुछ दलों का एक तरह से एजेंडा बन गया है। तो मैं समझता हूँ देश की जनता का हमारे चुनाव आयोग में पूरा विश्वास है, और समय समय पर सरकारें बदली हैं और हमने देखा कि जो दल इसके बारे में ज्यादा बोलते हैं वो भी कई राज्यों में चुनाव जीते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो कभी भी चुनाव आयोग की तारीफ नहीं करते हैं। जो मुद्दा है उस पर अक्षय जी बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल रहे हैं, लेकिन मैंने आपका ध्यान इसलिए दिलाया कि राजनीति चुनाव आयोग के बारे में करना एक तरह का फैशन बन गया है, और हारने के बाद चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना ये एक तरह से कुछ दलों की जो है वो लगातार एक अभियान जैसा बन गया है। कई दल तो कह रहे हैं वापस मतदाता पेटी की तरफ चलो। अगर मतदाता पेटी की तरफ जाएंगे तो फिर बूथ कैप्चरिंग होगी। अभी आप देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, कम से कम 3 लोकसभा के और कई राज्यों के चुनाव में सबसे कम हिंसा हुई है, और इतनी कम हिंसा कभी पहले दशकों में नहीं हुई थी, इसकी कोई तारीफ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जनता का जो विश्वास हमारे चुनाव आयोग में है वो बरकरार है, और उसको डिगाना इतना आसान नहीं है, ये मैं एक राजनीतिक पक्ष के बारे में ये कहना चाहता था।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से ये एसआईआर वाला मुद्दा गर्म हुआ है उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें से तो तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य रहे जहां जो विपक्ष उसका विरोध करता है उन्हीं की सरकारें बनी हैं या उनके समर्थित दलों की सरकारें बनी है। अक्षय जी, आजकल एक आरोप ये लग रहा है खासतौर पर कि जो पहले मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने या संशोधित करने का अधिकार बीएलओ को था, जो बीएलओ करके जो बिल्कुल प्राथमिक जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं चुनाव आयोग के, उसको एक तरह से अधिग्रहित कर लिया गया और ईसीआई नेट नाम का जो सॉफ्टवेयर आया है उसके जरिए चुनाव आयोग ने अपने हाथ में केंद्रीय भूमिका में कर लिया ये सुधारना और हटाना और जोड़ना और घटाना। इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में, चूंकि आप चुनाव आयोग में काम कर चुके हैं और चुनाव आयोग को बिल्कुल गहराई से नजदीक से जानते देखते हैं, मुझे लगता है कि आपका विचार और आपकी राय बहुत अहमियत रखती है।
2: मैं इतना ही बताऊंगा फैक्चुअली, उसके बाद मैं अशोक जी की कुछ चीजें अच्छा चीज बताए मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपकी बात का एक साफ जवाब देता हूँ कि बीएलओ नहीं, एईआरओ असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, इन लोगों का काम है कि पंजीकरण में नाम दाखला और नाम को सही तरह से जोड़ना, ड्राफ्ट में हो या फाइनल रोल में। डेफिनेटली हमेशा बोलता है कि इलेक्शन कमीशन, अरे आप हमें क्यों पूछ रहे हैं, आप एआरओ एआरओ को पूछिए, क्योंकि जो टोटल उसका कागज है, उसका जो दाखला करने की जो उपाय है, तरीके है और कानूनन अधिकार है उन लोगों के पास है, वो सीईओ के पास भी नहीं होता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया के कोई डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर डीजी या कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर के पास नहीं होता है। ये एलिगेशन था कि उनको अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उसके बारे में अपना स्पष्टीकरण जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज इशू करके अभी 4-5 दिन पहले, जब ये बातों की जिक्र अशोक जी कर रहे थे कि ये इस तरह का कुछ एलिगेशन आया, उनका स्पष्टीकरण दिया है। बल्कि वहां तक नहीं, अगर उनका मशीन का जो मशीन सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर से वो अगर कर रहे हैं जो एलिगेशन, उसका भी ऑडिट करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाया है। मुझे लग रहा है कि इससे शायद नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो चेक्स एंड बैलेंसेस है और उसके लिए जो परीक्षण या जो ऑडिट की जो एक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ले चुका है, फिर दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देश भर ऐसे जो फील्ड में कोई अगर कोई कारण से, कहां तकनीकी कारण से हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, कि कोई इलेक्ट्रल रोल ऑफिसर या इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को उसमें एक्सेस नहीं मिला तो वो अलग बात है, वो तो एक जांच करने की बात है, वो जांच करके देख लेंगे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया भी है उसके बारे में, ये एक बात हो गया
1: जी।
2: दूसरी बात है, राजनीति इस साइड में नहीं जाऊंगा, उन्होंने कुछ राजनीतिक बात कहा, लेकिन मैं उसमें से 2-3 बड़े अच्छे मुद्दे भी उन्होंने बताया कि हमारा जो इलेक्शन का हमारा जो एक नेशनल हेरिटेज है, मैं इलेक्शन प्रोसेस जो कि

0: जो मैं कभी कभी ओमिशन भी हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसको मजबूत करके सुदृढ़ करके रखना, मुझे लग रहा है कि इवन कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत अच्छे कुछ, ऐसे नहीं कि कोई प्रेस्टीज पॉइंट बना के बैठ गए, ऐसे तो नहीं किए हैं, काफी सारे कोर्स करेक्शन हो रहा है। जैसे बार बार जानते हैं कि लोगों को अगर दिक्कत हुआ डेट एक्सटेंड करो, और भी समय दो, बीएलओ को फिर घर भेजो, अच्छा डॉक्यूमेंट्स में तकलीफ हो रहा है डॉक्यूमेंट्स को बदल दो, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपैंड कर दो, या चलो डॉक्यूमेंट्स बिना दे के भी पहले दे देते हैं फिर जाके देख के आते हैं। कई सारे जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एड्रेस करने के स्टेप्स लिए गए हैं, और भी शायद लेना आवश्यक है तो लेंगे, और लेना भी चाहिए। तो हमारा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, हम इसको अगर रिजेक्ट करें और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको, मेरे को लगता है कि एक तरह के हम प्रोटेक्ट करके नर्चर करके रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ाना है। बाकी बातचीत होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए, और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, फैसिलिटेशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि अभी जो थोड़ी दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाला उसमें 4-5 आम नागरिक आम वोटर को फैसिलिटेशन करने के लिए, उनका तकलीफ दूर करने के लिए ठोस स्टेप भी लिया है, और ऐसे भी लेना चाहिए, बहुत नहीं कि ये उनका दायित्व है।
1: अच्छा जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया में जितने भी सुधार हुए हैं वो सुधार या तो न्यायपालिका के पहल पर हुए हैं या चुनाव आयोग ने खुद किए हैं। जैसे चुनाव लड़ने वाले लोगों को अपना बैकग्राउंड देना, अपने खिलाफ केसेस जो मामले चल रहे हैं उसकी जानकारी देना, या फिर उनके पूरे सेट्स की जानकारी देना, ये सब काम चुनाव आयोग ने ही किए हैं, किसी राजनीतिक दल ने या संसदीय प्रक्रिया के तहत नहीं शुरू किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कहना बिल्कुल सही और अशोक जी भी इसमें सहमत हैं कि चुनाव आयोग ने आजादी के 80 साल में जो एक साख हासिल की है, अर्जित की है, उस साख पर बट्टा लगाना भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसका विषय है SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारी अक्षय राउत। अशोक जी, अक्षय राउत जी ने बहुत सारे सवाल उठाए और बहुत सारी जानकारियां दी, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि बार बार चुनाव आयोग को और खासतौर पर पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा निशाने पर लिया जा रहा है?
2: देखिए, लोकतंत्र में ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव प्रक्रिया में शुचिता पर बारीकी से नजर रखे और उसमें जो भी उनको त्रुटियां दिखे उसको वो उजागर करे और समय के रहते जनता के सामने मिलाए। और ये प्रक्रिया मैं समझता हूँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद, जैसे अभी अक्षय जी बता रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो चुनाव आयोग है वो सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाता है, उनको विश्वास में लेकर सभी नियम तय होते हैं और जो भी एक तरह से प्रक्रिया बनती है उस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी होती है। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल चुनाव करवाते हैं शांतिपूर्वक, उनकी भी कभी तारीफ विपक्ष नहीं करता। तो मेरा मानना है कि सुरक्षा बलों की बहुत भूमिका रहती है और इसीलिए हम देख रहे हैं बड़े लंबे समय से चुनाव में हिंसा लगभग ना के बराबर हो रही है। तो इसका मतलब चुनाव प्रक्रिया तो ठीक है। अब क्या हो गया है कि आजकल कुछ एग्जिट पोल आने लगे हैं। अब एग्जिट पोल अगर गलत सिद्ध होते हैं तो हारने वाला दल बोलता है कि देखिए एग्जिट पोल ने तो कहा था कि हम जीत रहे हैं लेकिन अभी हमको सीट कम मिली है, तो ये चुनाव आयोग ने धांधली की है, ये जो है सरकार मैनिपुलेट करती है। तो ये जो आरोप लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बार बार चुनाव आयोग के प्रति संदेह उत्पन्न करने से ये हम लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई चीज ठोस बात है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ठोस प्रमाण जब तक नहीं हो, सबूत नहीं हो, और अगर हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवानी चाहिए। देखिए चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र हैं और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरल में सरकार बदली, तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है

0: उसका जो ठीक रहा चुनाव आयोग पर फोड़े, मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें, लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम
1: जी।
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें। तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते, या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, न कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए। तो कई और राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए, मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए और किसका नाम दो जगह में भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोले, आज SIR नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिविजन होता था उसमें भी करना के आवश्यक है, लेकिन थोड़ा SIR जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मानो एक दवाई है ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बेस फिर से शुरू होता है, अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है और SIR में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है अभी, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था, ये SIR का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा। इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं, हम और SIR के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे अपने।

0: मुकुट का जिक्र अभी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी, शायद पिछले ही हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं।
0: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को, जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए। और शायद आपने जैसे कहा, उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें SIR में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप SIR को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है और SIR के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को, आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार SIR करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है। उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं, तो आप DO के पास जा सकते हैं, CO के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है। अगर एक जो वैध आदमी, जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बनके और हर तरह से क्वालिफाई करता है, उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे। और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में इसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
2: मैं ऐसे जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है, हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आग रहता है, चाहे 10 साल से 20 साल से 50 साल से, लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
1: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
2: नहीं, मैं समझता हूँ कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूँ उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा, कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन
1: बिल्कुल।
2: जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है, ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी।

0: जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
1: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी।
7: खेलों का इतिहास पुराना है, लेकिन कुछ खेलों का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। उनका प्रादुर्भाव मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे दौड़कूद, कुश्ती, तीरंदाजी आदि। और अब ये खेल पूरा व्यवस्थित रूप लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मेलों की शान बनते रहे हैं। आज इन्हीं में से एक में 20वें एशियाई खेलों में भारतीयों ने देश की शान बढ़ा दी। आईची नगोया एशियन गेम्स में आज की स्पर्धाओं पर हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं हम। मेरा नाम है अनुपम पाठक, स्वागत है आपका। पहले हेडलाइंस। आर्चरी में आज के सभी 3 स्वर्ण पदकों पर भारतीयों का निशाना। शूटिंग में मिश्रित ट्रैप में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई ने किया कमाल, स्वर्ण पदक पाया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची, 2 मुक्केबाजों को कांस्य पदक मिले। महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया। तीरंदाजी में भारत ने पिछली बार 5 स्वर्ण पदक पाए थे। इन खेलों में इस बार हमने कई बार ऐसा देखा है कि जिन स्पर्धाओं में पिछली बार स्वर्ण पदक थे उनमें इस बार सोना अक्सर नहीं भी आया, लेकिन आज कंपाउंड की 3 स्पर्धाओं में भारत ने अचूक निशाने लगाए, परफेक्ट 10 बारंबार स्कोर किया और जब मैदान में उतरे जीत कर आए, स्वर्ण पदक के साथ आए। 3 स्वर्ण पदकों की सुनहरी दास्तान सुना रहे हैं रोहित भारद्वाज।
8: भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक पूरी की। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तानीपार्थी और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद चिकिता तानीपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय मिक्स्ड कंपाउंड जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को शूट ऑफ में हराया। मुकाबला 157-157 की बराबर पर समाप्त हुआ और शूट ऑफ में भारत ने 20-19 से जीत दर्ज कर गोल्ड हासिल किया। पुरुषों की कंपाउंड टीम कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने चीन को 238-237 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस तरह कंपाउंड की 3 टीमों ने भारत को 3 अलग अलग गोल्ड मेडल जिताए। चिकिता और ज्योति सुरेखा साई के सोनीपत सेंटर में ट्रेन करती हैं और साइकिलिंग पे खेल मंत्रालय ने 22.19 करोड़ रुपए खर्च किए पिछले वर्ष, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल कोचिंग कैंप्स शामिल थे।
7: कल नीरू ढांडा ने ट्रैप में सोना जीता था, नया रिकॉर्ड बनाया था। अपने जबरदस्त फॉर्म को उन्होंने आज भी बनाए रखा। अपनी जोड़ी बनाई कायनन चेनाई के साथ। मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा दूसरी और तीसरी सीरीज में उन्होंने 10 में 10 निशाने लगा दिए, नया एशियाई रिकॉर्ड और आज का 4th स्वर्ण पदक। हमारी रिपोर्ट पर यह निशाना है मुदिता का।
9: शूटिंग में आज एक और स्वर्ण पदक के साथ भारत ने शानदार सफलता हासिल की। मिक्स टीम ट्रैप इवेंट में नीरू ढांडा और कायनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में कड़ी टक्कर दी और 34 हिट लगाकर फाइनल स्टैंडिंग में कतर और चीन को पीछे छोड़ दिया। ट्रैप शूटिंग में यह भारत का 3रा मेडल है। इससे पहले महिलाओं के टीम इवेंट में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने सिल्वर और महिलाओं के इंडिविजुअल इवेंट में नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही भारत का ये सफल ट्रैप कैंप आज खत्म हो गया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मेंस इंडिविजुअल के क्वालिफिकेशन राउंड में अनीश भानवाला 290 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रहे।
7: हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कायनन चेनाई

0: के पिता भी ट्रैप के राष्ट्रीय चैंपियन शूटर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चेनाई ने 10 साल की उम्र में ही गन थाम ली थी। एशियाई खेलों में जाने से पहले आकाशवाणी ने खास तौर पर उनसे मुलाकात की थी, आइए उस मुलाकात को ताजा करते हैं।
1: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं, इस बार चाइना नहीं जा रहे, और कंडीशन डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा। ये मेरा तीसरा गेम्स है, व्हाट आई हैव सीन एटलीस्ट इन द कैंप and in the preparation to the games that everybody is putting their best foot forward, बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा।
0: पुरुषों की तरह महिला हॉकी में भी भारतीय टीम गोलों की बौछार करते हुए सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी और आज सेमीफाइनल्स में उनके मुकाबले थी दक्षिण कोरिया की मजबूत टीम। गोल्स की झड़ी तो नहीं लगी, लेकिन लड़कियों ने मैदान पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और 2-0 से कोरिया को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले दोनों क्वार्टर्स मैच में गोल रहित रहे। भारत ने इस दौरान दबाव बनाया, 9 पेनल्टी कॉर्नर्स भी कमाए, लेकिन गोल नहीं कर सके। कोरियाई खिलाड़ी बेहतरीन रक्षण के साथ हमलों को नाकाम करते रहे और मौका मिलते ही प्रत्याक्रमण के मूव भी बनाते रहे। तीसरे क्वार्टर के समाप्त होने के ठीक पहले मिले एक पेनल्टी कॉर्नर पर भारत ने एक नया वेरिएशन ट्राई किया। दीपिका सहरावत ने शॉट लेने के बजाय इंचिका की ओर गेंद को पुश कर दिया, जिसने झपाक के साथ गोलकीपर को चकमा देकर गोल पोस्ट को खड़का दिया पहला गोल। इसके ठीक 4 मिनट बाद ही कप्तान सलीमा टेटे ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, बहुत तेजी के साथ सर्किल में घुसी और वहीं से तेज झरनाटेदार शॉट लगाया, जो डिफेंडर से स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होता हुआ गोल पोस्ट में समा गया। भारत 2-0 से आगे हो गया और यही अंतिम स्कोर भी रहा। ये मैच खासा संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन कभी भी दक्षिण कोरिया भारतीय गोल पोस्ट के लिए खतरा नहीं नजर आया। अगर कुल मिलाकर मैच के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 61% गेंद भारतीय नियंत्रण में रही और कोरिया सिर्फ 39% अपने पास गेंद को कब्जे में रख पाया। पेनल्टी कॉर्नर्स भारत ने 12 कमाए जबकि कोरिया को सिर्फ 3 मिले और अब फाइनल में भारत का मुकाबला होगा चीन के साथ, जिसने आज जापान को जो मैच हुआ उसमें गोल रहित मैच खेला। उसके बाद मामला गया पेनल्टी शूटआउट में, जहां पर चीन ने जापान को 4-2 से परास्त किया। स्वर्ण पदक के लिए भारतीय लड़कियां 2 अक्टूबर को मैदान में उतरेगी और एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास, क्योंकि पिछली बार चीन के साथ सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ था जिसमें चीन ने भारतीय लड़कियों को 4-0 से परास्त किया था। यानी इस बार भारतीय लड़कियों के पास मौका है इसका बदला लेने का और साथ ही साथ स्वर्ण पदक जीतने का। जरूर निगाह रखिएगा इस मैच पर। एशियाई खेलों में मुक्केबाजी भारत के लिए पदक कमाने वाला खेल रहा है। कुल पदकों के मामले में देखें तो 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है एथलेटिक्स, शूटिंग और कुश्ती के बाद। पिछली बार 4 मेडल आए थे, 1 रजत और 3 कांस्य, तो भाई इस बार स्वर्ण की उम्मीद करें? जी बिल्कुल करें, क्यों करें ये जानते हैं मुदिता से।
2: बॉक्सिंग में भारत ने आज 2 कांस्य पदक हासिल किए, प्रिया घनघस ने महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में, वहीं कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल में प्रिया चीन की यांग चेंगयू से 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार गयी, वहीं कपिल को उज्बेकिस्तान के तुराबे खबीब बुल्लायेव से हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के गोल्ड मेडल बाउट में पहुंच गई हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नतालिया बोगदानोवा को 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हराया। परवीन हुड्डा महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में और पुरुषों में अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और 16 साल में पहली बार एशियन गेम्स के फाइनल में भारत के 1 से ज्यादा बॉक्सर्स होंगे।
0: स्क्वाश उन खेलों में है जिनमें भारत अपनी पहचान बना चुका है। सौरव घोषाल, हरिंदरपाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल की विरासत नई पौज ने बखूबी संभाल ली है और ज्योत्सना चिनप्पा का अनुभव तो अभी भी साथ है। महिला और पुरुष दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। मुदिता बता रही हैं स्क्वैश के सितारों की कहानी।
2: पुरुषों और महिलाओं की स्क्वैश टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मेडल भी पक्का हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन पुरुष टीम ने कुवैत को 2-0 से हराया, वीर चोटरानी ने 3-1 से जीत कर अच्छी शुरुआत दिलाई और अभय सिंह ने सीधे गेम में जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम किया। पुरुष टीम का अगला मुकाबला मलेशिया से होगा। इसके पहले महिला टीम ने सिंगापुर को 2-0 से हराया। तन्वी खन्ना ने 3-1 और अनाहत सिंह ने 3-0 से भारत को जीत दिलाई। सेमीफाइनल में महिला टीम का मुकाबला हांगकांग से होगा।
0: टेनिस में आज उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले का। सेकेंड राउंड मैच में चाइनीज ताइपे की जोड़ी सू वी सी और चुन सिंह सेंग के विरुद्ध। दिन के अंतिम मुकाबले में उन्होंने सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। ऋतुजा भोसले पिछले खेलों में रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी बनाकर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यूकी आज इसके पहले भी कोर्ट में उतरे थे पुरुष युगल में दक्षिणेश्वर सुरेश के साथ। उनके सामने थे चाइनीज ताइपे के चेन जुई हो और यू सिया सू। यहाँ पर पहला सेट बहुत संघर्षपूर्ण रहा 6-6 की बराबरी पर, उसके बाद टाई ब्रेकर और जिसमें 5-7 अंकों से वो हार गए। लेकिन दूसरे सेट में तो बिल्कुल रिदम ही खो बैठे। चौथे गेम में उनकी सर्विस ब्रेक की ताइपे की जोड़ी ने और 4-1 की बढ़त ले ली। भारतीय जोड़ी 3-6 से सेट और मैच हार बैठी। दक्षिणेश्वर सुरेश एकल में ताइपे के चुन सिन से हार गए थे 3-6, 4-6 से। लेकिन सुमित नांगल ने अपना विजय अभियान तीसरे राउंड में भी जारी रखा। उन्होंने उज्बेकिस्तान के सरगई फोमिन को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से परास्त किया। यानी टेनिस में इन दोनों पदकों की आस जीवित रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 28 साल में पहली बार ऐसा होगा कि पुरुष डबल्स में भारत को पदक नहीं मिला है। पिछले खेलों में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक और पुरुष युगल में रजत पदक भारत के हिस्से में आया था। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो गईं और भारतीय उम्मीदें भी जवान हो उठी। पहला पदक भी आ गया पहले ही दिन, लेकिन कांस्य पदक था। कितनी बाउट्स लड़के ये कांस्य पदक आया, आइए जानते हैं मुदिता से।
2: मेंस ग्रेको रोमन कुश्ती में सुनील कुमार ने पुरुषों के 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने ब्रॉन्ज मेडल बाउट में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन को 9-0 से हराया। भारतीय पहलवान के लिए ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले हांगझो में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था और इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रेको रोमन रेसलर बन गए हैं। महिलाओं में 68 किलोग्राम भार वर्ग में निशा दहिया रेपेशाज में दक्षिण कोरिया की ह्यून योंग पार्क से हार गई।
0: आज ही जूडो की स्पर्धाएं शुरू हुई। 3 दिन की स्पर्धा, 3 भारतीय खिलाड़ी, जिनमें से पहली आज मैट पर उतरी। विवरण के साथ मुदिता।
2: जूडो में 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे अपना ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गईं। जूडो में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यामिनी मौर्य और 70 किलोग्राम भार वर्ग में ताखी लाम्बम इनून गानबी के मुकाबले अभी बाकी हैं।
0: गोल्फ बड़ा संभ्रांत खेल माना जाता है। भारतीय उपस्थिति इसमें लगातार मजबूत होती जा रही है। कुल 6 गोल्फर हैं भारतीय दल में। आज महिला और पुरुष दोनों मुकाबले थे। इस क्यू के साथ रोहित भारद्वाज।
3: एशियन गेम्स 2026 में गोल्फ से भारत के लिए डे 14 पर अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। विमेन्स टीम इवेंट में भारत ने पहले राउंड के बाद 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 6ठा स्थान हासिल किया। प्रणवी शरत उर्स ने 4 अंडर 66 का शानदार स्कोर बनाया, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने 1 अंडर 71 का कार्ड खेला। विमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में प्रणवी उर्स ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि अदिति अशोक और दीक्षा डागर ने संयुक्त 18वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं मेंस टीम इवेंट में भारत 3 अंडर पार 137 के स्कोर के साथ संयुक्त 5वें स्थान पर है। जापान 9 अंडर पार 131 के साथ शीर्ष पर है। मेंस इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले में सप्तक तलवार ने 4 अंडर पार 66 के स्कोर के साथ संयुक्त 3रा स्थान हासिल किया। वहीं वीर अहलावत और युवराज संधु 71 के स्कोर के साथ संयुक्त 23वें स्थान पर है। कल गोल्फ का दूसरा राउंड खेला जाएगा। 4 राउंड के बाद टीम और पुरुष और महिला स्पर्धाओं के इंडिविजुअल स्कोर के आधार पर मेडल डिसाइड होंगे।
0: और अब बारी से पक टाकरों की। पुरुषों ने मायूस किया, महिलाओं ने मुस्कान वापस लाई। पूरी कहानी रोहित भारद्वाज से।
3: पुरुषों के क्वाड्रेंट मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस को 2-0 से हराया। भारतीय टीम में अरुण, आकाश युमनाम, बॉबी कुमार, लोखन सिंह, राम कुमार शर्मा और माले मंगबा सिंह शामिल हैं। वहीं महिला क्वाड्रेंट मुकाबले में भारत का सामना वियतनाम से हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेपक टकराव एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी रैकेट के बिना पैरों, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों से गेंद को नेट के ऊपर से खेलते हैं। यही इसकी सबसे खास पहचान है। आज पुरुष टीम की जीत भारत के लिए महत्वपूर्ण परिणाम रही, जबकि महिला टीम ने भी कड़ी चुनौती पेश की।
0: 14 साइकिल सवार अपनी साइकिलों के साथ जापान पहुंचे हैं पैडल भांचने के लिए। ट्रैक स्पर्धाओं में उनकी साइकिलें कितना तेज भाग पाई बता रहे।

0: हैं अभिनव कुमार झा।
1: एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम, एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी। सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ पांचवें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं। दोनों उसके बाद रेपेचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ तीसरे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ चौथा स्थान हासिल किया। पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की। रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया। दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए।
0: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में अपेक्षाकृत नया खेल है। 2018 में जकार्ता पालेमबंग खेलों से इसकी शुरुआत हुई। स्पीड रेस की स्पर्धा में 15 मीटर की दीवार पर खड़ी चढ़ाई करनी होती है कम से कम समय लेते हुए। इन खेलों में पदार्पण कर रहे दीपू मल्लेश पुरुषों की स्पीड 4 में आज क्वालिफिकेशन में उतरे। 4 प्रयास में उन्होंने कई बार अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा और 5.09 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रहे और क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कल इसी प्रतियोगिता में लड़कियों में जोगा पूर्ति ने क्वालिफाई किया था। आज वो क्वार्टर फाइनल में उतरी, तीसरे स्थान पर रही, लेकिन फॉल के कारण क्वालिफाई नहीं कर पाई। केनो में पानी के बहाव के बीच चप्पू खेलने और संतुलन साधने में भारतीय नाविक आज क्या कर गुजरे, आइए जानते हैं रोहित भारद्वाज से।
2: पुरुषों के कयाक सिंगल में भारत के प्रद्युम्न सिंह राठौड़ और हितेश केवट ने सेमीफाइनल में हिस्सा लिया। प्रद्युम्न सिंह राठौड़ ने 137.74 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि हितेश केवट 184.89 सेकंड के समय के साथ क्वालिफाई नहीं कर सके। फाइनल में प्रद्युम्न ने 125.21 सेकंड का समय दर्ज करते हुए छठा स्थान हासिल किया। महिला कनो सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने चुनौती पेश की। पल्लवी ने 211.77 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बनाई, जबकि रीना 269.99 सेकंड के साथ फाइनल में नहीं पहुंच सकी। फाइनल में पल्लवी जगताप को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा। कैनो स्लैलोम में भारतीय खिलाड़ियों ने चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में अपना प्रदर्शन आज दर्ज कराया।
0: अगर आप भी मोबाइल गेम्स के शौकीन हैं, तो लीग ऑफ लीजेंड्स ये नाम नया नहीं होगा आपके लिए। यहाँ ई स्पोर्ट्स की स्पर्धा में आज इसी खेल की स्पर्धा थी। भारतीय प्रदर्शन का आकलन रोहित भारद्वाज से।
2: एशियन गेम्स 2026 में लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप बी मुकाबलों में भारतीय टीम ने चुनौती पेश की। भारत को हांगकांग चाइना के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को एक बार फिर 0-1 से हार मिली। भारतीय टीम में आकाश शांडिल्या, अहमद शाहिर इसरार, मिहिर रंजन, अक्षय शेनॉय, सानिध्या मलिक और राहुल बिश शामिल हैं। लीग ऑफ लीजेंड्स के ग्रुप स्टेज मुकाबले सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेले जा रहे हैं और टीमों का लक्ष्य अगले चरण में जगह बनाना है। इस स्पोर्ट्स में तेज फैसले, रणनीति और टीम वर्क सबसे अहम होते हैं और भारतीय खिलाड़ी इस बड़े एशियाई मंच पर अपने अनुभव को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: मुदिता बता रही हैं पदक तालिका की ताजा स्थिति।
3: कल के मुकाबले खत्म होने के बाद भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर था, लेकिन आज 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल के बाद भारत 7वें स्थान पर आ गया है। 10 गोल्ड, 21 सिल्वर और 29 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत के कुल 60 पदक हो गए हैं। मेडल टैली में चीन पहले, जापान दूसरे और रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे स्थान पर है।
0: और अब कल के खेलों का आकलन शाहनवाज खान से।
4: एशियाई खेलों में कल का दिन भारतीय फैंस के लिए सुपर थर्सडे होने वाला है, जहां क्रिकेट और हॉकी के 2 बड़े मुकाबले होंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अपना सेमीफाइनल मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत का ये पहला वास्तविक मैच होगा, क्योंकि सभी 4 क्वार्टर फाइनल्स बारिश के कारण रद्द हो गए थे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल होगी। भारतीय टीम इस एशियाई खेलों में अब तक अनडिफीटेड रही है। भारतीय टीम 2016 के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं हारी है। कंपाउंड तीरंदाजी में पुरुष एकल वर्ग में गणेश मणिरत्नम, जबकि महिला एकल वर्ग में चिकिता तनिपार्थी गोल्ड मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगे। दोनों वर्गों में भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम हांगकांग से, जबकि पुरुष टीम मलेशिया से भिड़ेगी। वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में भारत के पुरुषों की टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। कुश्ती में 4 सोने के तमगे दांव पर होंगे, सुमित दलाल, अमन और नितेश कुमार ग्रीको रोमन वर्ग, जबकि

0: मानसी अहलावत महिला कुश्ती में भारत की चुनौती पेश करेंगी। साइकिलिंग, निशानेबाजी और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दौड़ में होंगे।
1: तो ये बताते हुए कि 20वें एशियाई खेलों पर कल भी आकाशवाणी की कवरेज जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से अपडेट्स सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा और रात 10 बजे ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो अब मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। वो कौन थी फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर को। गीत को लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और संगीत है मदन मोहन का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए राग रागेश्री में सितार वादन का। पेश कर रहे हैं पंडित गिरिराज।

अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आनंद ले रहे थे सितार वादन का पंडित गिरिराज से। राग था रागेश्री। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं की कीमत में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा है कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 GW गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।

मीडियम वेव न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। अब हमारी सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आकाशवाणी प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।